सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज बुधवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार सन 2026 के जून महीने की 3 तारीख। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हम उपस्थित हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सबका स्वागत है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्य मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बतख पालन लाभकारी व्यवसाय। वाचन अनीता तिर्की का है।
4: बतख पालन का व्यवसाय सदियों पुराना है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में यह व्यवसाय काफी लोकप्रिय है। यदि हम छोटा नागपुर और संथाल परगना की भौगोलिक स्थिति पर विचार करें, जहां की अधिकतर भूमि काफी उबड़ खाबड़ और असिंचित है, तो इसे यह प्रतीत होता है कि यहां के किसान भाई बतख पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। बतख पालन को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उन्नत नस्ल, संतुलित आहार, आवास की उचित व्यवस्था, रोग नियंत्रण की उचित व्यवस्था, रख रखाव के आधुनिक तरीके और बाजार व्यवस्था। बत्तख में भी मुर्गियों की तरह अनेक नस्ल है, जिनमें कुछ नस्ल मुख्य हैं, जैसे अंडा देने वाली जाति में इंडियन रनर और खाकी कैंपबेल, मांस देने वाली प्रजाति में पेकिन, एलिसबरी, मास्कोवी राउंड। कुछ बत्तखों की जातियां सिर्फ शोभादायक है, जैसे ईस्ट इंडिया और काल मंडरेन। बत्तखों के लिए आवास की व्यवस्था भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बत्तखों की मुक्त परिसर प्रणाली, अर्ध सघन प्रणाली और सघन प्रणाली तीनों में पाला जा सकता है, लेकिन बत्तख ज्यादातर जगहों पर प्रांगण में बंद कर दिया जाता है और घर को चारों तरफ से जाली से घेर दिया जाता है, जिससे बत्तख हाथे से बाहर नहीं निकल सके और बाहर से कुत्ते, बिल्ली और अन्य जंगली जानवर आसानी से प्रांगण में प्रवेश ना कर सके। अच्छे शारीरिक वृद्धि और उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें बत्तखों की शारीरिक वृद्धि और उत्पादन हेतु सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में विद्यमान रहें। बत्तख पालन मिश्रित आहार या तैयार आहार भी खरीद सकते हैं। बत्तखों को सूखा आहार मिश्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूखा आहार मिश्रण निगलने में इन्हें कठिनाई होती है और बत्तखों को गीला आहार मिश्रण देना चाहिए। बत्तखों में मुर्गियों की अपेक्षा रोग कम लगते हैं, लेकिन अनेक संक्रामक और असंक्रामक रोगों के प्रति बत्तख अत्यधिक संवेदनशील होती है। इसमें कुछ रोगों में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। बत्तखों में रोग प्रतिरोधक क्षमता मुर्गियों की अपेक्षा अधिक है। बत्तखों में कुछ मुख्य विषाणुजन्य रोग हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस। यह बत्तखों का बहुत ही घातक रोग है। यह बीमारी चूजों में होता है। इस बीमारी में मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। इस रोग के मुख्य लक्षण हैं, बत्तख आंख बंद करके टखनों पर बैठ जाती है, इसके बाद एक तरफ गिर जाती है, सिर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस रोग से बचाने के लिए बत्तखों को डक हेपेटाइटिस का टीका लगाना चाहिए। एक दिन के बच्चे के पंजे में टीकाकरण किया जा सकता है। अन्य बीमारी जो बत्तखों के लिए बहुत ही खतरनाक है, वह है बत्तख का प्लेग। यह भी एक छुआछूत का रोग है। यह भी विषाणु द्वारा होता है। यह वयस्क बत्तखों में होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण है बत्तख को प्यास अधिक लगती है। आंख और नाक से लगातार पानी बहता है। आंखों में सूजन तथा कीचड़, हरा सफेद दस्त होना, खड़े होने में कठिनाई होना, ये प्रमुख लक्षण है। इस रोग के लिए भी किसान भाई 6 सप्ताह में और दूसरा टीका 26 सप्ताह में लगा सकते हैं। बत्तखों में जीवाणु से भी रोग होते हैं। उनमें प्रमुख है डक कॉलरा, जिसे पस्टुलेरोसिस कहते हैं। यह रोग बत्तखों में 4

0: सप्ताह से अधिक आयु में होता है। इसके लक्षण हैं तेज गाढ़ा दस्त, जो नाद में पतला हो जाता है, पैरों में कमजोरी हो जाती है और मलद्वार पर मल चिपका रहता है। इसके उपचार के लिए सल्फामेजादिन या सल्फाक्विनोलॉक्सिन 30 से 60 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में 7 दिनों तक दिया जाए तो अच्छा परिणाम मिलता है।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे। बतख पालन लाभकारी व्यवसाय और इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का है।

0: इंसान की मौलिक इच्छाओं से पहली इच्छा भोजन की होती है। भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे एक ऐसा रसायन बनता है जो प्राण ऊर्जा बनकर संपूर्ण शरीर तंत्र का संचालन करता है। हमारे भोजन से ही प्राण शक्ति पैदा होती है जो शक्ति केंद्र को संचालित करती है। इसलिए भोजन का महत्व है और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन जहां मन को शुद्ध करता है, वहीं तामसिक और राजसिक भोजन मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसलिए आहार शास्त्र में सात्विक भोजन की सिफारिश की गई है और तामसिक तथा राजसिक भोजन से बचने का आग्रह किया गया है। एक दिन पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने उपवास की उपयोगिता पर कहा कि भगवान महावीर ने जितने दिन खाया उससे अधिक दिन नहीं खाया, तभी वे अपनी साधना में सफल हो सके। भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि जो भोजन का संयम नहीं करता वो सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा। जो आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता वो आत्मनियंत्रण कैसे कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं। यदि हम उन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो इन इच्छाओं के आधार पर चलने वाली दूसरी जटिल इच्छाओं को भी कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीने की कामना, भोजन की कामना, ये मौलिक इच्छाएं हैं। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो इनके आधार पर चलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले अपनी मौलिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे। भोजन का संयम ना हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भोजन में कम खाने का महत्व है। कहा गया है कि जितने आदमी भूख से मरते हैं उससे अधिक ज्यादा खाने से मरते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

देशभक्ति गीत के बाद आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं। भक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं। जहां भगवान की भक्ति है वहां सुकून है। भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं।

भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ आस्था और भक्ति है। जो भक्ति में डूब जाता है उसे दुनिया का डर नहीं होता। भक्ति एक ऐसा दीपक है जो अंधेरों को मिटा देता है।

भगवान के लिए श्रद्धा और भक्ति ही जीवन का सत्य है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की।

पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है।

हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं, इसलिए अपना मस्तक सदैव उनके आगे झुका कर रहिए।

इसी के साथ ही भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना अब यही संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको हम आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:55 पर संस्कृत और 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मुंह का कैंसर और सावधानियां। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर स्नेहा और इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। सुबह सुरीली में आप सुनते हैं फिल्मी नगमे 7:15 पर। 7:45 का वक्त है कार्यक्रम खुला आकाश का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता शांति में भारत का निवेश, यूएन पीस कीपिंग में हमारा ऐतिहासिक योगदान। वार्ताकार हैं संतोष कुमार। समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज सुनते हैं आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। लोक रंग के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मुंडारी लोकगीत 8:45 पर। कलाकार हैं लक्खीदास मुंडा और साथी। रसरंजन के अंतर्गत फिल्मी गीत आप सुनेंगे 9 बजे और 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। कलाकार हैं मोर मुकुट, पंडित मोर मुकुट केड़िया। 10 बजे कार्यक्रम होगा बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन की ओर एक प्रेरक यात्रा। भेंट वार्ताकार हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सिल्ली से लाभुक श्रीमती मीना देवी और भेंट करता है कमलेश कुमार मिश्रा। प्रस्तुति है प्रभु शरण की। जोहार रांची कार्यक्रम आप सुनते हैं 10:30 पर। अपनी पसंद के गीत आप सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में 11:30 पर और 12 बजे आप सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वास्थ्य बनाए पर्यावरण बचाए। भेंट वार्ता भी आज आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण का सरल उपाय। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार 1:10 पर। अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे गिरजा देवी से राग देव गंधार में गायन। समय रहेगा 1:20। सुगम संगीत 1:45 पर आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंद गजलें। 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जय भारती 2:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 2:55 पर। 3 बजे का वक्त होता है कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। रांची मेलोडीज के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ खूबसूरत गीत 3:30 पर। 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 4:02 पर बढ़ते कदम कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा। सांझ सरगम के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्मी नगमे 4:35 पर। 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 5:02 पर युवाणी। श्रमिक लोक ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी 3 जून का वह फैसला जिसने देश को बदल दिया। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। 6:02 पर खेती बारी और 6:32 पर कार्यक्रम होगा हमारी दुनिया। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले हमारे कुछ खास कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता है मुंह का कैंसर और सावधानियां। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर स्नेहा और इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है हमारा मुंह का कैंसर। क्या वजह है कि लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित हो जा रहे हैं और इसका हम बचाव कैसे करें और लक्षण पहचानने की आवश्यकता है कि जब हमें इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाना है और चिकित्सीय परामर्श लेना शुरू कर देना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: मुंह के कैंसर की बात करें तो अपने भारत में क्या तस्वीर है इसकी?
2: इंडिया में लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, खास करके गांव के इलाकों में या छोटे छोटे शहर में तो। और बट उसके लिए उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो किसी को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वजह से मरते हैं। और ये सेकंड मोस्ट हाईली कारण है कैंसर, सबसे मोस्ट सेकंड कॉमन कैंसर है हमारे इंडिया में।
1: तो ये ज़्यादातर जो पान बीड़ी गुटखा सिगरेट का सेवन करते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क में आ जाते हैं।
2: हाँ
1: जी। तो कितने तरह के मुंह का कैंसर हो जाता है लोगों को?
2: इसका तो बहुत सारा टाइप्स है, जैसे लिम्फोमा होता है या फिर हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका कैंसर हो जाता है, फिर सार्कोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, ये सारे कुछ प्रकार हैं जो बहुत कॉमन है इंडिया में।
1: तो स्नेहा जी, जो इसका लक्षण है कैंसर का, ताकि हम सतर्क हो जाएं और इलाज कराना शुरू कर दें।
2: सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इंडिकेशन होता है कि कुछ भी अगर हम स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर कुछ भी नमक वाला चीज़ खाते हैं तो उसकी वजह से पूरे ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा जलन होता है। फिर अगर पानी भी पी रहे हैं या खाना भी खा रहे हैं तो वो स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ देखा जाता है कि एक अल्सर के जैसा हो गया, कोई ऐसा घाव हो गया मुंह में या कोई ऐसा लंप बन गया जो 2 वीक से ज़्यादा रह रहा है, और लोग उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, नॉर्मल अल्सर देख के छोड़ देते हैं जो बाद में बड़ा रूप ले लेता है और बहुत घातक हो जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन इसका पॉइंट है टंग के नीचे या फिर लिप्स में भी होता है, और वो पहले धीरे धीरे वो एक नॉर्मल अल्सर की जैसा दिखता है जो बाद में जाकर बड़ा होते जाता है।
1: जी।
2: कैंसर का जो अल्सर होता है उसमें रेडनेस बहुत ज्यादा होता है और उसमें जलन भी बाकी नॉर्मल कैंसर जो हमारे अल्सर होते हैं उससे ज्यादा होता है। अगर 2 वीक से ज्यादा कोई सा भी ओरल कैविटी में किसी भी तरीके का अगर आपको घाव है या फिर अल्सर है तो ज़रूर जाके डॉक्टर को एक बार चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जनरल जो अल्सर्स रहते हैं वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं।
1: अमूमन लोगों को दांतों में छाले हो जाते हैं और ठीक भी हो जाता है समय के रहते रहते, लेकिन कुछ कुछ जो दांतों के आसपास जीभ के आसपास चकत्ते दिखाई पड़ते हैं तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है।
2: कैंसर से पहले भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे आपको अपने मुंह में जो कि अगर आप उसको रब करो या स्क्रेप करो तो वो नहीं हटेगा, तो उस समय में अलर्ट हो जाना चाहिए और अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखे तो तुरंत अपने किसी भी डेंटिस्ट को जाकर ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरी बात कि मुंह का खुलना कम हो जाता है, अगर आप कुछ चबा रहे हो ठीक से आप प्रॉपरली चबा नहीं पाओगे, दांत जो है वो थोड़े लूज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे कुछ लक्षण जो स्टार्टिंग में दिखते हैं और अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा दिखता है या ऐसा डाउट होता है तो डेंटिस्ट को जरूर जाके दिखाना चाहिए।
1: इस तरह के जो प्रारंभिक लक्षण हमें दिखलाई पड़ते हैं तो हमें सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है। अमूमन हम इग्नोर कर जाते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं लेकिन मुंह के अंदर क्या हलचल हो रहा है इससे हम अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो बचाव का क्या तरीका है डॉक्टर साहब, और ये जो मुंह का कैंसर है इसका इलाज का क्या तरीका है, कितना वक्त लग जाता है और इसकी तरीका क्या है?
2: देखिए, पहले ही बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम शुरू से ही ये मेक श्योर करना चाहिए, जैसे अगर तंबाकू खा रहे हैं तो उसका तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट बीड़ी गुटखा पान मसाला जो भी, गुटखा वगैरह में जो एक रहता है कसैली जिसको अरेका नट भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है जिसके वजह से कैंसर होता है, तो पहले हमें उसको प्रिवेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ लक्षण दिखता है, इन केस आपको बहुत ज़्यादा तंबाकू वगैरह का सेवन करने का आदत है, तो तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और प्रॉपर हर 6 महीने मंथ्स में डेंटिस्ट को जाकर आप चेकअप करवाइए।
1: जी। और इलाज का क्या तरीका है?
2: इलाज का स्टार्टिंग लेवल में अगर शुरुआत में पता चल जाता है तो मेडिकेशंस देकर भी प्रिवेंट होता है। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी देते हैं, फोटोन बीम थेरेपी देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फैला नहीं है तो फिर हम लोग एक्साइज करके भी निकाल सकते हैं, सर्जिकली भी रिमूव हो सकता है
1: जी।
2: उसके अलावा ये थेरेपी 3 महीने, 6 महीने, साल भर और फॉलो अप लेते रहते हैं हम लोग बीच बीच में, ताकि वो रीअकर ना करे
1: जी। ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करता है, ना पान खाता है, ना बीड़ी पीता है, ना तंबाकू का सेवन करता है, फिर भी इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित होता हुआ दिखलाई पड़ जाता है, क्या कारण है इसके पीछे?
2: उसका कारण है कि आपकी या तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है किसी रीज़न से। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी किसी को कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से भी माउथ और नेक का कैंसर होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको, फिर एक सबसे मोस्ट कॉमन होता है चीक बाइटिंग। चीक बाइटिंग अगर हम लोग इग्नोर करते हैं इनिशियल स्टेज में, चीक बाइटिंग मतलब दांत के बीच में अगर आपका गाल फंसता है, अगर उसको आप इनिशियल स्टेज में अगर मतलब वो तो आपको पता चल जाता है, जैसे आप खा रहे हो बार बार आपका जो चीक है वो बाइट दांत के बीच में आ रहा है, बाइट हो जा रहा है, वाइट सा लाइन आ जा रहा है, अगर उसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेस होते होते वो भी एक बार कभी कैंसर का रूप ले लेता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं या कुछ मतलब उस तरह का कोई फैक्टर है, तो वैसे उस तरह से भी फैलता है, मतलब वो कैंसर हो जाता है
1: जी। अपने शरीर के अन्य अंगों की देखभाल करते हैं, वैसे हमें दांतों की भी देखभाल करने की ज़रूरत है। ये जो इलाज चलता है बहुत लंबा चलता है, इसमें पैसे भी काफ़ी लगते हैं और मानसिक तनाव से भी हमें गुजरना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जब स्थिति विकराल हो जाती है तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है, तो हमें सजग, सतर्क, सावधान होने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को कि इस तरह की चीज़ों से दूरियाँ बनाएँ, खान पान में आप अच्छी चीज़ों का सेवन करें, स्वस्थ भोजन खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें और आपके दांतें मजबूत रहें।
2: जी हाँ, पहले तो अगर किन्हीं को भी तंबाकू या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करने की आदत है तो वो चीज़ में सुधार करना चाहिए। दूसरी बात कि आपको अपना डाइट बहुत अच्छा रखना चाहिए, विटामिन सी वगैरह अच्छे से खाओ, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लेना चाहिए, जो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, और अगर आपको कोई सा भी कैंसर का लक्षण दिखता है तो तुरंत से तुरंत आपको अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टेज 1-2 में फिर भी क्योरेबल होता है, जैसे प्रोग्रेस हो जाता है बहुत लोगों की जान भी चली जाती है, तो इनिशियल स्टेज में दिखाना मस्ट है।
1: अपने जिले की हम बात करें, यहाँ क्या स्थिति है इलाज का?
2: सर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे क्लिनिक में, कहीं पे भी ये इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इसका क्या होता है कि जैसे कि अगर कैंसर प्रोग्रेस हो गया है और अगर हमें बहुत बार ऐसा होता है कि जबड़े को काट के निकालना पड़ा या फिर टंग को निकालना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक ट्रीटमेंट सर्जरी भी करते हैं जिससे हम लोग फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं।
1: घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी आदतें डालिए
2: जी हाँ।
1: खान पान में आप सुधार कीजिए और फल फूल और अनाज का सेवन कीजिए, बाहर की चीज़ों से आप जितना दूरियां बनाएंगे आप उतना ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खान पान का संबंध आपके दांतों से भी जुड़ा हुआ है। दांतें स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की बीमारी आपके दांतों के अंदर नहीं रहेगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, हंसते रहेंगे, और जब हंसेंगे तो आपकी मोती जैसे दांत आपके चमकते रहेंगे और एक आत्मविश्वास भी आप में जागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेहा, दंत रोग विशेषज्ञ, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी मुंह के कैंसर के बारे में, लक्षण क्या है और कैसे हम इससे बचाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, अगले दिन एक नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी ले रहे थे मुंह का कैंसर और सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर स्नेहा और इनसे बातचीत की थी संजीव कुमार लाल ने। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

0: सुबह सुरीली।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: सुबह सुरीली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका कार्यक्रम लेकर और आपकी सुबह को भी सुरीली बनाने के लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर। आहिस्ता आहिस्ता याद आ गया कोई, मेरी हर एक सांस को महका गया कोई, कैसे शुक्रिया अदा करूं उस अजनबी का, इस नाचीज को इश्क करना सिखा गया कोई।

जी हाँ दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ही जो है प्यार दस्तक देता है हमारे जीवन में। और जब प्यार होता है तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। इसमें आप एक दूसरे के दिल की बातें भी सुनते हैं, और जब प्यार पहली बार हो तो उसके तो क्या ही कहने। दिल की बात समझ लो, यही तुमसे कहना है। चाहे जितने मर्जी सितम कर लो, हर पल संग तेरे रहना है।

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुरीली। जी हाँ, प्यार होता ही ऐसा है कि इसमें हर व्यक्ति हर सितम सहने को तैयार होता है, और ये एक ऐसा एहसास है कि बिना कुछ कहे ही आप एक दूसरे के दिल की बातें समझ लेते हैं। मदहोश आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी पलकें झुका लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

जी हाँ दोस्तों, प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने साथी के चेहरे पर हंसी देखने के लिए कुछ भी करते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को याद करते हैं और उसे खुश करने की कोशिश भी करते हैं। मैं दिल हूँ और तुम सांसें हो मेरी, मैं जिस्म हूँ और तुम जान हो मेरी, मैं चाहत हूँ तुम इबादत हो मेरी, मैं नशा हूँ और तुम आदत हो मेरी।

इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सुरीली अब यहीं संपन्न होता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और अपने रिश्ते में इस एहसास को बनाए रखें। सच्ची मोहब्बत मिलना भी एक तकदीर होती है और बहुत कम लोगों के हाथों में ही ये लकीर होती है। तो अगर आपको भी सच्ची मोहब्बत मिली है तो उसे संजो कर रखें।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सुरीली। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता शांति में भारत का निवेश, यूएन पीस कीपिंग में हमारा ऐतिहासिक योगदान। वार्ताकार है संतोष कुमार।
1: वैश्विक शांति, सुरक्षा और निस्वार्थ मानवीय सेवा के आधुनिक इतिहास में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान सबसे गौरवशाली, व्यापक और अटूट अध्याय रहा है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे

पहले शांति स्थापना मिशन की शुरुआत से लेकर आज तक भारत इस बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। भारत के लिए वैश्विक शांति में यह निवेश केवल एक भू राजनीतिक या सैन्य दायित्व नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, मानवाधिकारों की रक्षा और वसुधैव कुटुंबकम के दार्शनिक विचार के प्रति देश की ऐतिहासिक और नैतिक नीतिगत प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के साथ भारत का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं इन मिशनों और संयुक्त राष्ट्र का इतिहास। जब वैश्विक समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उभरकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण कर रहा था, तब भारत ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर शांति स्थापना का बीड़ा उठाया। भारत का सबसे पहला और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोरियाई प्रायद्वीप में देखा गया। भीषण युद्ध की परिस्थितियों के बीच भारत ने अपनी सुप्रसिद्ध 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस इकाई को मैदानी मोर्चे पर तैनात किया। इस अद्वितीय चिकित्सा दल में 17 सैन्य अधिकारी और 309 अन्य रैंकों के जाबाज चिकित्सा कर्मी शामिल थे। इस दल ने युद्ध के मैदान में बिना किसी भेदभाव के मित्र राष्ट्रों के सैनिकों, स्थानीय नागरिकों और यहाँ तक कि युद्ध बंदियों का भी इलाज किया। इस निस्वार्थ सेवा ने भारतीय सेना की निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को पहली बार वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। इसके अतिरिक्त कोरियाई युद्ध के समापन पर युद्ध बंदियों की अदला बदली की अत्यंत जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया को संभालने के लिए गठित तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता भी भारत को सौंपी गई थी, जिसका कुशल नेतृत्व जनरल केस थिमैया ने किया था। स्वेज नहर संकट के बाद मिस्र और इजराइल के बीच शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले बड़े सैन्य बल का गठन किया। इस मिशन में भारतीय सेना की 11 पैदल सेना बटालियनों ने अपनी सेवाएं दी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिस्र के क्षेत्र से विदेशी सेनाओं की वापसी की बारीकी से निगरानी करना और गाजा पट्टी तथा सिनाई प्रायद्वीप में बफर जोन बनाकर शांति बनाए रखना था। इस मिशन ने साबित किया कि भारतीय सैनिक जटिल राष्ट्रीय विवादों में पूरी तरह निष्पक्ष रहकर संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का पालन करवा सकते हैं। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के क्षेत्र में भी शांति की निगरानी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारत ने एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध की विभीषिका को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 1948 से लेकर समकालीन समय तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में संचालित किए गए 71 ऐतिहासिक शांति मिशनों में से 50 से अधिक मिशनों में सीधे भाग लिया है। इस पूरी अवधि के दौरान भारत ने 2,90,000 से अधिक सैन्य कर्मियों और लगभग 15,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के नीले हेलमेट के तहत युद्ध क्षेत्रों में भेजा, जो कि किसी भी देश द्वारा दिया गया सबसे बड़ा संख्यात्मक योगदान है। वैश्विक स्तर पर शांति मिशनों के बदलते परिदृश्य के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक सैन्य और पुलिस बल प्रदान करने वाले शीर्ष देशों में लगातार बना हुआ है। वर्तमान समय में लगभग 5,300 से अधिक भारतीय शांति रक्षक दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में चल रहे सक्रिय और संवेदनशील मिशनों में अग्रिम मोर्चा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में इस मिशन में भारत के 2,416 से अधिक सैन्य और पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो गृह युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच वहां की नागरिक आबादी को सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। बेल्जियम के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के तत्काल बाद कांगो भीषण गृह युद्ध और कटंगा प्रांत के अलगाववादी उग्रवाद की आग में झुलस गया था। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए वहां अपना सैन्य बल भेजा, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का पहला शांति प्रवर्तन अभियान था। इस अत्यंत खतरनाक मिशन में भारत ने लगभग 12,000 सैनिकों की 2 पूर्ण ब्रिगेड भेजी। भारतीय सैनिकों को केवल आत्मरक्षा में ही नहीं, बल्कि शांति के जनादेश की रक्षा करने और सशस्त्र भाड़े के सैनिकों से निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। इस अभियान में भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया था, जो यूएन के इतिहास में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना थी। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए विद्रोहियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और कांगो देश के भौगोलिक विघटन को सफलतापूर्वक रोका। सोमालिया में भीषण अकाल, अराजकता और कबीलाई सरदारों के आपसी युद्धों के बीच भारतीय ब्रिगेड को तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने वहां न केवल सुरक्षा घेरा तैयार किया, बल्कि मानवीय सहायता के तहत हजारों टन खाद्य सामग्री का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित किया, कुओं का निर्माण कराया और स्कूलों को दोबारा शुरू किया।
भारतीय डॉक्टरों ने वहां हजारों स्थानीय नागरिकों और लाखों मवेशियों का मुफ्त इलाज किया, जिससे भारतीय सेना को स्थानीय आबादी का अभूतपूर्व समर्थन मिला। वैश्विक

0: स्तर पर शांति स्थापना के अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सुरक्षा अभियानों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक रहा है। शांति वार्ताओं और संघर्ष के बाद समाज में महिलाओं की उपस्थिति, स्थानीय आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा और विश्वास की भावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। वर्ष 2007 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक महान मिसाइल कायम की जब उसने लाइबेरिया में दुनिया की पहली पूर्ण महिला पुलिस इकाई को तैनात किया। 105 भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों की इस टुकड़ी ने लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में रात के समय सशस्त्र गश्त, दंगों पर नियंत्रण और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। इस तैनाती का सबसे बड़ा और स्थायी प्रभाव यह हुआ कि लाइबेरिया की स्थानीय महिलाओं में सुरक्षा बलों में शामिल होने का आत्मविश्वास जगा, जिससे वहां की राष्ट्रीय पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 6% से बढ़कर अल्प समय में ही 12% से अधिक हो गई। भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों की व्यावसायिकता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगातार सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है। मेजर राधिका सेन और हाल ही में मेजर अभिलाषा बराक उनको उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत लैंगिक कूटनीति के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। वर्तमान में विभिन्न सक्रिय यूएन मिशनों में 150 से अधिक भारतीय महिला अधिकारी और सैन्य अग्रिम मोर्चों पर सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारतीय शांति रक्षकों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि वे केवल एक बंदूकधारी सैनिक के रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि वे संकटग्रस्त देशों में सद्भावना के दूत बनकर जाते हैं। भारतीय सेना के पेशेवर चरित्र में मानवीय संवेदना गहराई से रची बसी है, जिसे सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन गतिविधियों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाता है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने युद्ध से तबाह हुए देशों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया, पुलों की मरम्मत की, हवाई पट्टियों को सुधारा है और स्कूलों तथा सामुदायिक केंद्रों का जीर्णोद्धार किया है। दक्षिण सूडान में भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सड़कें आज वहां की अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता के परिवहन की जीवन रेखा बन चुकी है। नई दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग वर्ष 2000 से ही भारतीय और विदेशी सैनिकों को मिशन विशिष्ट कड़ा प्रशिक्षण दे रहा है। यह केंद्र अब तक 10,000 से अधिक भारतीय और दुनिया के 98 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक विदेशी अधिकारियों को शांति स्थापना के सिद्धांतों, आधुनिक तकनीकों और मानवाधिकारों की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दे चुका है, जो इसे वैश्विक शांति प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना के इस महान मानवीय उद्देश्य के लिए भारत ने जो मानवीय कीमत चुकाई वह किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे कर्तव्य निभाते हुए 178 से अधिक भारतीय वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जो किसी भी सैनिक योगदानकर्ता देश के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत के इस सर्वोच्च बलिदान का सबसे गौरवशाली और अमर प्रतीक कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया हैं। वर्ष 1961 में गोरखा राइफल्स के इस युवा अधिकारी ने केवल 16 सैनिकों की अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ मिलकर भारी अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैकड़ों उग्रवादी विरोधियों के अचानक हुए हमले के को नाकाम कर दिया था। अदम्य साहस और अद्वितीय युद्ध कौशल दिखाते उन्होंने आमने सामने की लड़ाई लड़ी और विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र के मिशन में दिए गए इस अद्भुत और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के संपूर्ण इतिहास में परमवीर चक्र पाने वाले दुनिया के एकमात्र सैनिक हैं। इस सर्वोच्च बलिदान की स्मृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी बनाने और दुनिया भर के शहीद शांति रक्षकों को उचित सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मेमोरियल वॉल के निर्माण का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड संख्या में सदस्य देशों का सह प्रयोजन और समर्थन प्राप्त हुआ और इसे संयुक्त राष्ट्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो वैश्विक मंच पर भारत की नैतिक साख और उसके सर्वोच्च बलिदान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को प्रदर्शित करता है। भारत का योगदान केवल मैदानी स्तर पर सैनिकों को भेजने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र के नीति निर्धारण, सैन्य रणनीति और रणनीतिक नेतृत्व में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय सेना के कई शीर्ष जनरलों और रणनीतिकारों को उनकी व्यावसायिकता के कारण संयुक्त राष्ट्र के सबसे कठिन और राजनीतिक रूप से संवेदनशील अभियानों में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत की कूटनीतिक विशेषज्ञता और विश्वसनीयता के कारण ही देश को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए बार बार चुना जाता है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि संघर्षों को सुलझाने और युद्ध के बाद देशों को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत के नीतिगत दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्व दिया जाता है। 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और यह पहले से कहीं अधिक खतरनाक और जटिल हो चुका है। आज के समय में शांति रक्षकों का सामना पारंपरिक सेनाओं से नहीं बल्कि अत्याधुनिक हथियारों IED और साइबर उपकरणों से लैस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी गुटों और सोशल मीडिया पर चलने वाले दुष्प्रचार अभियानों से होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संपूर्ण इतिहास का व्यापक अवलोकन करने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की भूमिका एक साधारण भागीदार देश से कहीं बढ़कर वैश्विक शांति के मुख्य संरक्षक की रही है। कोरिया की बर्फीली वादियों से लेकर कांगो के घने और अशांत जंगलों तक, सोमालिया के मरुस्थलों से लेकर लेबनान की अत्यधिक संवेदनशील पहाड़ियों तक भारतीय सैनिकों ने अपनी अनुकरणीय व्यावसायिकता, अनुशासन, पूर्ण निष्पक्षता और मानवीय संवेदना से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का मस्तक हमेशा ऊंचा किया है। यह ऐतिहासिक योगदान और निरंतर भागीदारी केवल सेना की टुकड़ियों को भेजने का कार्य नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की निस्थिरता, मानवाधिकारों की रक्षा और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत का एक दीर्घकालिक निरंतर और ठोस निवेश है। जब तक दुनिया के किसी भी कोने में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता रहेगी, नीले हेलमेट पहने भारतीय सैनिक मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे और शांति के मिसाल को प्रज्वलित रखेंगे।
1: खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, शांति में भारत का निवेश, UN पीस कीपिंग में हमारा ऐतिहासिक योगदान। वार्ताकार थे संतोष कुमार। ये कार्यक्रम अभी यही संपन्न होता है।

श्रोताओ, हम आपसे एक जानकारी साझा करना चाहेंगे कि आज जो है वो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को ये दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस भी घोषित किया गया था। साइकिल दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव अमेरिका के मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्चिक सिबिल्सकी ने किया था और इसके बाद सिबिल्सकी और उनके साथियों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बाद से इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। इससे पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण दृष्टि से भी सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए ये बेस्ट है और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और वैसे भी आजकल पेट्रोल इतना महंगा है और हम जो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक हैं, तो इस ऐसे समय में साइकिल बहुत बेस्ट है, तो इस दिन का खास महत्व ये है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल
0: सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस

0: वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों

0: को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए का ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और

0: जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move

0: सशक्तिकरण और महिला हितैषी पल के लिए किया गया है। पंचायत को सम्मान के साथ 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। ये उपलब्धि राज्य की पंचायतों के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की सुविधा के लिए नए दाल भात केन्द्र खोलने तथा मॉडल दाल भात केन्द्र विकसित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में राशन कार्ड वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, पीवीटीजी, डाकिया योजना, धान अधिप्राप्ति और खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने रांची स्थित रिम्स का दौरा किया। रिम्स की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिम्स का दौरा करने की अपील की।
1: कहीं देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खामियां का उजागर होते ही रहता है, तो इसको सुधार की जरूरत है। इसलिए इसको मुख्यमंत्री जी को कभी कभी समय मिलता है तो रिम्स है उसका व्यवस्था को देखने के लिए आना चाहिए। आज लोग हड़ताल में है, अगर स्वास्थ्य जैसे विभाग हड़ताल में चले जाएंगे तो मरीज को कौन देखेगा।
0: रांची नगर निगम ने मॉनसून से पहले शहर में अतिक्रमण, अवैध जल कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने हिंदपीढ़ी क्षेत्र में हरमू नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से गाद निकालने का कार्य तेज करने तथा नदी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।
2: जो नदी के किनारे है अलग अलग तरीकों से उसका अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली अगर कहें तो कंस्ट्रक्शन दिखता है, बट उस पर जो गंदगी फेंकने के अलग अलग तरीकों से लोग अपना फेंक रहे हैं और वो जो अवैध कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो रहा है, हर एक चीज वो भी एक तरह का अतिक्रमण है या एक तरह का वो नदी का जो है डिस्टर्बेंस का आयाम है।
0: IIM रांची में आज से 2 दिवसीय टीचिंग विद केसेस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलिस एम एमंस शिक्षकों को केस आधारित शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण देंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में केस आधारित और प्रतिभागी केंद्रित शिक्षण पद्धति को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से कक्षाओं में संवाद, चर्चा और व्यावहारिक सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभुक सेवती साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सेवती साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है।
3: सेवोति साहू हूँ। मैं वार्ड नंबर 9 तेली साई सारे कला की निवासी हूँ। मुझे

0: उज्ज्वला गैस मिला है, जिससे मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें धुएं से राहत दिला के आज उज्ज्वला गैस का उपयोग कर रहे हैं।
1: राजस्थान के दौसा जिले की पुलिस ने नकली नोट छापने और उनकी सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से गढ़वा जिले की खरौंदी निवासी विशाल उपाध्याय और अलीगढ़ निवासी संतोष सिंह वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से प्रिंटिंग मशीनों के साथ 24,84,000 रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात ने अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक के दुकानदारों के साथ बैठक कर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क किनारे दुकान लगाने के मुद्दों पर चर्चा की। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: मार्केट और ये मेन रोड के जितने भी दुकान के दुकानदार हैं और जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं, उन सभी के साथ मीटिंग किया और सभी को समझाया गया है कि जो सड़क पे अपना सामान वो सड़क पे फैला के रख देते हैं और वहाँ उसकी वजह से जो जाम की समस्या होने लगती है, कि समझाया गया है कि आपके अपना घर समझ के इसको व्यवस्थित करें।
1: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। 4 और 5 जून को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जेएसएसपीएस के तैराकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव के हटाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची के सार्थक ने बताई ओएसएम की 15 कमियां, चेयरमैन और सचिव हटाए गए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, एक्सएलआरआई निजी प्रबंधन संस्थान देश में दूसरे स्थान पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लचर एम्बुलेंस सेवा की शिकायतों पर सीएम नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झिकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएसपीएस के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मैं हूँ रचना और आगे का सफर आप मेरे साथ तय करेंगे।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रचना। यह इस कार्यक्रम में हम आपको गीत भी सुनाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे, और बातें करेंगे हम रिश्तों के बारे में। दोस्तों आजकल छोटी छोटी बातों पर रिश्ते बिखर जाते हैं, ऐसे में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल हमें रखना होता है, जिससे कि आप जो है अपने अपनों के साथ खुश रह सके। रिश्तों में बातचीत सबसे ज़रूरी कड़ी होती है। बातें करना, अपनी भावनाएं बांटना और एक दूसरे से मन की बात कहना, ये सब रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका साथी कुछ नहीं कहता, बस चुप हो जाता है, और अक्सर उस चुप्पी में भी बहुत कुछ छिपा होता है। चुप्पी को समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को गहराई देना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उस खामोशी के पीछे छिपे एहसासों को भी महसूस करें, क्योंकि कभी कभी वो अनकहे लफ्ज़ ही सबसे गहरी बातें कहते हैं।

दोस्तों, आज की इस भागदौर भरी जिंदगी में हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो वो है वक्त। जी हाँ, वक्त की कमी हम सभी के पास है, क्योंकि हम अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम जिंदगी को जीना या यूं कहें कि जिंदगी को अहमियत देना ही भूल गए हैं, और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। आपकी नौकरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी बात है और ये सभी समझते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हर बात में अपने काम और उससे जुड़ी बातों का जिक्र करें। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और जब भी आप अपने काम के बाद घर लौटते हैं तो आप रिलैक्स करें, अपनी पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और ज़िंदगी को भी काम जितनी ही अहमियत दें।

एक रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, किसी भी अच्छे रिश्ते के लिए जो दो बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो है प्यार और विश्वास। प्यार के साथ साथ विश्वास का होना भी ज़रूरी है। और अगर आपके मन में डर रहेगा या कोई आशंका रहेगी तो रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म होगा, यानी कि आपके रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देगा। और रिश्ते में दूरियां नहीं होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि और डर भी नहीं होना चाहिए कि आप बिना डरे अपने मन की बात अपने साथी के साथ आप शेयर कर सकें। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हो और आपके पास उस समस्या का समाधान ना हो, लेकिन अगर आप वही समस्या अपने साथी के साथ अगर बताते हैं तो हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा हल हो कि वो आपको उस समस्या से बाहर निकाल सकें। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। अपने साथी को ये विश्वास भी दिलाएं कि एक वही है जिस पर आप खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं।

हर समय किसी चीज पर रोक टोक करना भी जो है वो दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकता है, यानी कि हर छोटी चीज पर आप अगर रोक लगाएंगे तो आपका साथी आपसे दूर होता चला जाएगा। कई बार हम सोचते नहीं इस बात को, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर हम रोक लगाते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें आगे चलकर जो है आपसी रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। इसलिए बेवजह की बात पर रोक टोक ना करें और अपने साथी के साथ उनके खुशी में खुश होकर शामिल हों।

रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें इज्जत और सम्मान ज़रूर होना चाहिए। रिश्ते चाहे आपके माता पिता से हो या दोस्तों से हो, उनकी मर्यादा को हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी रिश्ता जो है बिना सम्मान के ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। जिस तरह से आप अपने माता पिता को, दोस्तों को इज्जत देते हैं, उसी तरह से आप भी एक दूसरे को जो है वो इज्जत दें, सम्मान दें। और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की इज्जत करना बेहद ज़रूरी है। तभी तो आप हम सफर बनकर एक दूसरे के साथ चल पाएंगे और हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे।

अब चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते आपके अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अब अपनी दोस्त रचना को दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।

0: तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित मोर मुकुट केड़िया से सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थी और तबले पर संगति थी सुजीत चटर्जी ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन की ओर एक प्रेरक यात्रा। भेंट वार्ताकार हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लेकी लाभुक श्रीमती मीरा देवी और इनसे बातचीत की है कमलेश कुमार मिश्र ने। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम।
1: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। बढ़ते कदम कार्यक्रम हमेशा एक उद्देश्य के साथ आपके बीच होता है। उद्देश्य होता है कि हम सरकार के उन तमाम योजनाओं की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं, जिनका लाभ लेकर हम और आप अपने जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। और सरकार का भी प्रयास यही होता है कि वो अपने महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से समाज के एक अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए, वैसे कमजोर वर्ग को वो साथ में लाए जिन्हें विकास की जरूरत है, जिन्हें योजनाओं की जरूरत है, उन लोगों को आगे बढ़ाए। आज कार्यक्रम में हम एक प्रेरक कहानी को हमने शामिल किया है। प्रेरक इसलिए कि हमें ये समझना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि जब जिंदगी में हम और आप एक बदलाव सोच लेंगे तो बदलाव तभी संभव होगा। एक सकारात्मक बदलाव, एक ऐसी पहचान जो आप अपनी मेहनत से बनाते हैं और उसमें योगदान सरकार के योजनाओं का होता है। आज कार्यक्रम में हम सिल्ली से मीरा देवी को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। मीरा देवी जिन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लिया, आज भी उन्हें वो लाभ मिल रहा है, लेकिन जो पैसे उन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से मिले उसका उन्होंने अपने जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल किया। उन पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई कहानी की तलाश की। उन पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता अख्तियार किया और आज सिल्ली की रहने वाली मीरा देवी उन्हीं पैसों के माध्यम से आज स्वावलंबी हैं। घर पर ही रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है, अपने बच्चों को मजबूत बनाने का काम किया है। हम मीरा देवी को जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो

0: पर है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन तक का ये यात्रा उन्होंने कैसे तय किया। मीरा देवी जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीरा जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जोहार सर।
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: कितना अच्छा लगता है आज जब गांव में लोग कहते हैं कि जब घर में बनना है तो मीरा देवी के जैसा बनो, वो जिस तरह से मेहनत करके बड़ी, गांव वाले जब आपका उदाहरण देते हैं, लोगों को समझाते हैं, कितना अच्छा लगता है।
1: सर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुनने में भी लगता है सर।
0: आज उसी कहानी को हम लोग समझना चाहते हैं मीरा जी,
1: हाँ सर।
0: और किस तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेकर आपने अपनी जिंदगी को बदला, आज हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि वो भी इस बात को समझे कि कैसे हम सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो जब आपको मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा था, उस वक्त आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी मीरा जी?
1: सर मैया योजना जब नहीं मिल रहा था उस टाइम मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब था सर। जैसे कि हम उसमें इतना ही खराब था कि मेरा बाल बच्चा को हम ट्यूशन नहीं करा पाते थे, पढ़ा नहीं पाते थे। घर में भी कुछ ऐसे काम आता था कि उसमें हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते थे। जब मैया योजना आना शुरू हो गया तो फिर हम घर में बातचीत किए कि मैया योजना जो मिल रहा है हम लोग को, ये पैसा हम लोग बचत करें। उसके बाद फिर बचत करने लगे तो फिर वो पैसा हम लोग जमा किए, और जमा करके मतलब 2-4 महीना रखे, नहीं निकाले वो पैसा बैंक अकाउंट से, और एक ही बार निकाले। निकालने के बाद सबसे पहले हम घर में बात किए कि पहले तो हम लोग बतख पालन करेंगे। ठीक है बोले, बतख पालन करेंगे। बतख पालन जब करने लगे तो फिर बतख में हम लोग का अंडा आने लगा। अंडा फिर हम लोग बेचे, अंडा बेच के कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। वो पैसा से फिर हम लोग मुर्गी पालन करने लगे। मुर्गी पालन जब करने लगे तो फिर मुर्गी पालन में भी उसमें भी अंडा बेचते थे, मुर्गा बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, उसमें भी कुछ पैसा हम लोग इकट्ठा किए। उसके बाद फिर मतलब फिर और पैसा आने लगा 2500 रुपया करके, तो फिर वो पैसा भी निकाले। और जो बतख पालन में जो अंडा बेचे थे, मुर्गी में भी जो मुर्गी उर्गी बेचे थे, मुर्गी का अंडा भी बेचे थे, वो पैसा भी हम इकट्ठा करके रखे थे। और उसके बाद फिर हम बकरी पालन करेंगे बोल के बोले, फिर हम बकरी पालन करने शुरू किए। बकरी पालन करने लगे, उसके बाद बकरी को तो नहीं बेचते थे, वो बकरी को मतलब बड़ा करके खस्सी करके मीट का हिसाब से बेचते हैं, उसमें ज्यादा हम लोग का इनकम आता है।
0: पहले तो आप अब थोड़ा एक एक करके हमें आराम से समझाएं। एक तो बहुत बड़ी बात है कि आपने ये सोचा कि क्यों नहीं पैसा सेव किया जाए। शुरुआत कब हुई, कब से आपको मैया सम्मान का पैसा आना शुरू हुआ?
1: सर पहला तो सबसे पहले मैया योजना जुलाई महीना 2024 से मिलना है, तो सबसे पहले तो 1000 रुपया करके मिल रहा था, 4 महीना 1000 करके मिला, उसके बाद फिर 2500 रुपया करके मिलने लगा।
0: तो आप वो पैसा
1: 2500
0: निकालती नहीं थी?
1: नहीं सर, हम नहीं निकालते थे पैसा को, इकट्ठा किए। उसके बाद फिर हम सोचे कि कुछ मतलब ये बिजनेस करेंगे, उसमें से मेरा पैसा का आय होगा, वो पैसा फिर हम बचत करने लगे।
0: यानी पहले आपको 1000 रुपये जो 3-4 महीने मिले, उसके बाद फिर से 2500 रुपये हो गए। तो
1: हाँ सर,
0: पहली बार आपने कितने बत्तख लिए?
1: पहली बार हम 100 बत्तख लिए थे।
0: 100 बत्तख आपने लिया।
1: हाँ सर।
0: बताए थोड़ा कैसे फिर घर पे मेहनत शुरू हुआ, घर में सपोर्ट लोगों का कैसा रहा?
1: सर मेरा घर में तो हम बोले कि हम जब 1000 रुपया करके जब मिला तो बोले कि हम ये पैसा हम नहीं निकालेंगे, इसमें हम कुछ करेंगे। तो बोले कि घर वाला भी सपोर्ट किए हमको कि ठीक है मत निकालो वो वाला पैसा जो मिल रहा है, हेमंत दादा दे रहे हैं। तो फिर हम नहीं निकाले वो पैसा। जब जमा हुआ 4000 रुपया तो फिर एक दिन जाके हम निकाले। उसके बाद निकालने के बाद फिर हम बतख का चूजा, छोटा छोटा जो मिलता है, वो चूजा हम खरीदे खरीदे। उसके बाद फिर हम घर में रख के उन लोग को 2 महीना उन लोग का खान पान मतलब दिए, उनको बड़ा किए। उसके बाद फिर मेरा अंडा देना शुरू की। अंडा देना जब शुरू की उसके बाद वो अंडा हम सेलिंग करने लगे, अंडा में भी मेरा पैसा आने लगा।
0: तो बत्तख तैयार करने में कितने दिन लग जाते हैं मेरा जी?
1: सर मेरा वो 2 महीना लग गया, 2 महीना में पूरा तैयार हो गया। उसके बाद फिर अंडा देने लगा, अंडा देने लगा तो फिर हम अंडा को बेचने लगे। अंडा बेचे, अंडा बेचने के बाद फिर वो पैसा भी आया। उसके बाद फिर 2500 रुपया करके मिलने लगा, तो वो पैसा भी हम नहीं निकालते थे। 2 महीना 3 महीना जमा करते थे, उसके बाद वो पैसा निकालते थे। निकालने के बाद फिर हम बड़ा प्लानिंग सोचे, मुर्गी पालन किए। मुर्गी पालन के बाद फिर उसमें मुर्गा बड़ा बड़ा जो मुर्गा होता है वो मुर्गा सब भी बेचते थे।
0: तो अब बत्तख भी था आपके पास में और मुर्गा भी था आपके पास में,
1: हाँ सर,
0: तो किस तरीके से, क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, आपको घर भी संभालना था
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: अब ये सारी जिम्मेदारी भी संभालनी थी, कैसे कैसे अब चीजों को मैनेज करते जा रही थी?
1: सर ये मेरा घर में सपोर्ट मिलता था सर, जैसे कि हम सुबह में एक बार बत्तख को खिला देते थे, खिलाने के बाद वो तालाब चल जाता था, फिर उसके बाद मुर्गी ये सब तो खुला रहता है, उसके बाद उन लोग को तो शाम को देखना रहता है, बस घुसाना रहता है, बत्तख को एक बार दोपहर में भी खिलाते हैं, दोपहर में खिलाने के बाद फिर तालाब पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर ये शाम को लाते हैं, फिर उसका घेरावन बनाया हुआ है उसमें घुसा के रख देते हैं।
0: तो इन दोनों के बाद तीसरा स्टेप जो हुआ वो आपने ये डिसाइड किया कि अब आप बकरी पालन भी करेंगी।
1: हाँ सर, जब हम वही 2500 रुपया आने लगा तो फिर वो पैसा हम नहीं निकाले, वो पैसा हम 3-4 महीना से जमा किए, उसके बाद वो पैसा हम एक ही बार निकाले, निकालने के बाद हम बकरी पालन जो शुरू किए थे वो हम 5 बकरी से शुरू किए थे सर, 5 बकरी से शुरू किए थे, उसमें से हम खरीदे थे 4 गो बकरी और ये एक बकरा, 4 बकरी जब खरीदे वो बकरी से अभी मेरा बढ़ गया है,
0: जी
1: 10 मेमना है, 4 बकरी का अभी 10 मेमना है मेरा और ये एक बकरा है, उसमें मेमना और ये दोनों है, मतलब बकरी और बकरा। से पहले हम 5 बकरी से बकरी पालन स्टार्टिंग किए हैं, सुबह में सबसे पहले हम सुबह में उठ के घर में अपना नाश्ता उस्ता बना के बच्चा को स्कूल भेज के हम जंगल जाते हैं, जंगल से पत्ता लेके आते हैं बकरी के लिए, फिर पत्ता खिलाते हैं, या तो फिर कुछ दिन नहीं जाते हैं, कोई कोई दिन जंगल, तो फिर उनको चराने ले जाते हैं, चरा के फिर लाते हैं, लाके घर में बांध देते हैं।
0: तो अभी वर्तमान में अब कुल कितने आपके पास बत्तख हैं, मुर्गा मुर्गी कितने हैं और बकरी कितने हैं मीरा जी?
1: सर मेरे पास तो अभी बत्तख देखिएगा तो वो तो कुछ बत्तख बेच भी दिए हैं, अभी देखा जाए तो ही 20 से 30 होगा बत्तख, और मुर्गी तो होगा, मुर्गी ज्यादा ही है, 20-30 से ज्यादा ही है,
0: और बकरी भी 15-20 से ज्यादा है।
1: बकरी भी 15-20 से ज्यादा ही है, 20 से तो ऊपरे होगा सर अभी।
0: क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो कि आप इतना मेहनत कर रही हैं अपने घर संभालने के साथ साथ, आपने आपने इतनी चीजों को बढ़ाया। मीरा जी, आज बहुत
1: हाँ
0: सारी
1: सर,
0: महिला भी आपको सुन रही हैं,
1: हाँ
0: क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग आज घर पे रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं?
1: सर, हम यही कहना चाहते हैं जो मैया योजना का जो पैसा मिल रहा है वो पैसा बर्बादी नो करे, वो पैसा से कुछ उन लोग मतलब करे, जैसे कि अभी हम जैसे कर रहे हैं बतख पालन करे या मुर्गी पालन करे या बकरी पालन करे, ताकि वो पैसा ऐसे ही फिजूल खर्चा ना करे, या तो फिर जैसे कि मेरे कहना है कि कोई कोई पैसा को ऐसे ही बर्बादी करती है, वो बर्बादी ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगाइए वो पैसा, या तो फिर कुछ बिजनेस में लगाइए।
0: यानी आपको एक सकारात्मक सोच रखना है।
1: हाँ सर,
0: कितना आज बदलाव महसूस करती हैं, क्योंकि आप पहले बता रही हैं कि पहले दिक्कत होती थी, सिर्फ सिर्फ पति का कमाई रहता था और उस कमाई से घर ही चलाना मुश्किल होता था, तो बच्चों को पढ़ाने वगैरह में दिक्कत होती थी। कितना
1: हाँ सर,
0: अभी कितना एक बदलाव आ गया?
1: सर अभी मेरा बहुत बदलाव आया, क्योंकि अभी हम अपना बच्चा को पढ़ाई के लिए या तो ट्यूशन के लिए या तो कुछ खरीदने के लिए हमको अपने पति से हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बस हम खुद से निकाल के अपने बच्चों को देते हैं, उसमें हमको खुशी लग रहा है कि ये मैया योजना जो मिल रहा है इसमें हमको पूरा सपोर्टिंग मिल रहा है।
0: अच्छा लगता है कि आज आज जब आप आपके बच्चे कुछ डिमांड करते हैं या आप ही को कुछ मन करता है और आप अपने खुद के पैसे से करती हैं, तब तब मन में खुशी आती है कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है।
1: सर हाँ, हमको बहुत खुशी एहसास आ रहा है, उसमें हम बहुत खुश हैं।
0: थोड़ा बताएं आपके घर में कौन कौन है मीरा जी, कितने बच्चे आपके हैं?
1: सर मेरा घर में मेरा 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, और हम और मेरा हस्बैंड और मेरा सास ससुर।
0: अभी बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आपके?
1: सर मेरे बच्चे अभी एक मेरी बेटी जो है वो 10th में पढ़ाई कर रही है, और मेरा बेटा जो है वो 6th में है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है 6th में, और मेरी बेटी को हम डाले हैं ये कस्तूरबा में और मेरा बेटा को इंडालको में।
0: क्या बात है। तो मीरा जी, बहुत लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक होता है ना कि आप घर बैठे हैं, आप कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी पहले से आप नकारात्मक हो जाते हैं, है ना? तो आपको क्या
1: हाँ
0: लगता
1: सर।
0: है किस तरह की सोच हम सबको अपने जीवन में रखनी चाहिए?
1: सर हम लोगों को तो सच मतलब अभी इसमें जैसे कि हम लोग सकारात्मक रखना चाहिए, हम लोग खुश हैं सर। जैसे कि मैया योजना जो मिल रहा है इसमें हम सब कुछ अभी कर पा रहे हैं। उसमें देखिए पहले तो बस मेरा पति का कमाई था, मतलब वो घर भी चलाते थे, बच्चों को भी देते थे, उसमें हम नहीं कर पाते थे। तो जब हम लोग को मिलने लगा मैया योजना, इसमें हम लोग को आसान हुआ। जैसे कि मेरा पति का कमाई से घर चला लेते हैं, जो मैया योजना मिलता है इसमें हम बच्चा को भी हेल्पिंग कर रहे हैं, घर में भी हेल्पिंग कर रहे हैं।
0: आज क्या क्या बदलाव आ गया आपके घर की ही अगर हम बात करें, आज आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गया?
1: सर मेरा जीवन में बहुत सारा चीज बदलाव आया, क्योंकि पहले तो देखिए पहले सर बस हम घर में गृहिणी मतलब बस खाना उना बनाते थे और घरे में रहते थे, घरे में रहते थे। और अभी तो देखिए सर जैसे कि घर में हम इतना कुछ करके भी, जैसे कि बतख पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इतना सारा चीज करके भी हम घर से बाहर जाके मतलब किसी से बात करने में नहीं हिचकिचाते हैं। कुछ भी चीज रहे, चाहे ना ब्लॉक में जाके या तो कहीं भी, किसी के सामने अपना सिर झुका के नहीं रहते हैं, अपना मतलब ऊंचा बोली से सब कुछ हम लोग कर लेते हैं।
0: यानी अब हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रही हैं,
1: हाँ
0: अब झारखंड की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
1: हाँ सर, जैसे कि अभी हम लोग का नारी शक्ति का एक पहचान बनाइए।
0: आप क्या मानती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इन लोगों को तो मैया सम्मान ऐसे ही मिल जा रहा है। आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं?
1: सर हम यही कहना चाहते हैं, आज ये देखिए आज ये हम लोग का एक पहचान बन गया है सर। आजकल देखिए इसमें कितनी महिलाएं मेरे जैसे बदल चुकी है। जैसे कि अभी हम लोग का ये हो रहा है कि ट्यूशन फीस दे रही है बच्चों के लिए, पढ़ाई बुक उक खरीदने नहीं सक रही थी, बुक उक खरीद दे रही है बच्चों को, या
0: एक
1: फिर
0: ढाई ढाई हजार का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब छोटी छोटी चीजें करने के लिए अब आपको कहीं जाना नहीं है, आपके बच्चों का रिक्वायरमेंट है, कॉपी है, पेन है, ड्रेस है, सब आप लोग कर पा रही हैं।
1: सर कर ले रहे हैं सर।
0: इतना बदल रहा है आपके गांव में, तो और भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। कितना एक बदलाव देख रहे हैं आप अपने गाँव में इस चीज से?
1: सर बहुत बदलाव देखे, जैसे कि पहले पहले बच्चा लोग ऐसे ही मतलब खेल चलता था, खेलता था, मतलब खेल में ज्यादा ही ध्यान देता था। आजकल जब से जब मिलने लगा तो हम लोग जैसे कि अपनी मम्मी पापा तो उतना बच्चों लोग से टाइम नहीं दे पाते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं कि जाओ बेटा ट्यूशन, या बेटी हो हम लोग ट्यूशन भेजते हैं उसके लिए। पहले तो हम लोग के पास पैसा ही नहीं था जो हम ट्यूशन भेज नहीं पाते थे। और अभी जब से आने लगा तो हम लोग का मन में जो एक शक्ति रहता है वो
0: बढ़ गया।
1: बढ़ गया, उसमें हम लोग का कुछ बहुत सारा मतलब अभी आसानी हो रहा है।
0: तो एक बात बताए, जैसे हम सिल्ली की ही बात करेंगे, सिल्ली
1: हाँ
0: में
1: सर।
0: एक उदाहरण आपका हो गया, हम मेरा जिससे मिले, मेरा जिससे हमने बातें की, सिल्ली में और
1: हाँ
0: ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको आपने देखा कि जब से उनको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ तो उनकी जिंदगी में भी एक बदलाव आ गया, पहले से उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया।
1: हाँ सर, बहुत महिलाएं का मतलब ये में बदलाव आ गया है। अभी जितना कोई को अभी मैया योजना मिल रहा है, बहुत बदलाव आया है सर।
0: अब गांव में बात होती है, महिलाएं मिलती हैं, एक एक पहले का सिस्टम कि जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और अब आज की एक महिलाएं
1: पहले की महिलाएं सर, पहले की महिलाएं बस चूल्हा चौकट में ही रहती थी, घर में खाना उना बना के बस घरे में रहती थी, काहे नहीं निकल पाती थी। क्योंकि पहले देखिए सर, अपना हाथ में जब पैसा रहेगा नहीं तो फिर कैसे घर से निकलेगी। ये क्या बोलते हैं, पहले देखिए जैसे कि वही खाना उना बना के घरे में बस रहती थी। और अभी अभी हम लोग अपना चौखट से, अपना दरवाजा से, अपना पांव निकाल के सब कुछ काम कर लेते हैं अपने महिलाएं।
0: आगे क्या सोच रही हैं मीरा जी? आज आपको कार्यक्रम में शामिल करने का हमारा उद्देश्य यही है कि समाज को एक मैसेज पहुंचाएं कि अगर आप मेहनत करेंगे और सरकारी योजना का लाभ लेंगे तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसे सरकार की बहुत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान नहीं बल्कि और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे समूह का काम होता है, JSLPS का काम होता है, उससे महिलाएं जुड़ती हैं, उसमें मेहनत करती हैं, तो आप तो ऐसी बहुत सारी चीजों को देख रही होंगी।
1: हाँ सर, देख रहे हैं, JSLPS से भी हम जुड़े हैं सर, समूह में भी हम जुड़े हैं सर।
0: वाह बहुत अच्छा, क्या जिम्मेवारी उसमें आप निभाती है।
1: सर समूह में जुड़े हैं, समूह में जैसे कि 10 दीदी

0: मिलके हम लोग एक समूह बनाए हैं। समूह में भी ये सब हम लोग चर्चा करते हैं कि मैया सम्मान जो राशि मिल रहा है वो राशि से आप लोग कुछ काम कीजिए, फालतू पैसा बर्बाद न करें, ऐसे चर्चा करते हैं। तो उन लोग भी बोलती है कि हाँ मैया सम्मान राशि जो मिल रहा है उस पैसा से, उन लोग भी बोलने लगती है कि हम भी मुर्गी पालन करेंगे, हम भी बतख पालन करेंगे। कोई बोलती है हम मेरा बच्चा के लिए स्कूल फीस दिए।
1: यानी हर कोई किसी ना किसी जिम्मेदारी को निभा रही है उस पैसे से।
0: हाँ सर,
1: आपने समूह की बात बताई कि 10 महिलाएं मिलकर आप लोगों ने समूह बनाया है,
0: समूह बनाए हैं।
1: तो उसमें भी बहुत सारे काम होते होंगे। उसमें
0: हाँ
1: कैसे
0: सर,
1: आप लोग क्या काम करती हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है, क्या क्या चीजें आप उसमें करती हैं?
0: समूह में हम सचिव हैं, समूह में मेरा जिम्मेवारी है। जैसे कि समूह की सदस्य दीदी अगर किसी का पैसा का जरूरत है, जैसे कि वो बोलेगी कि हमको पैसा का जरूरत है, अगर उसका घर में कोई बीमार पड़ गया तो वो बोलेगी, वो दीदी बोलेगी कि हमको पैसा की जरूरत है, तो हम लोग पैसा की जरूरत है बोलती है तो 10 दीदी मिल के मतलब लिखते हैं बैठक रजिस्टर में, और लिख के वो दीदी को हम लोग बैंक जाते हैं लेके, और बैंक से पैसा निकाल के उसको ऋण का इसे हम लोग पैसा देते हैं उसको भी।
1: अच्छा,
0: उस पैसा से वो मतलब अपना घर में कुछ भी चीज, अगर जैसे कि कोई बीमार है तो वो उस पैसा से वो इलाज करती है।
1: यानी मुश्किल वक्त में जब समूह से जितनी
0: साथ
1: मैं जी,
0: मुश्किल ये में मतलब साथ देते हैं समूह से भी।
1: तो समूह के माध्यम से तो भी रोजगार के बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज आज कोई
0: हाँ
1: बरी
0: सर,
1: बनाना सीख रहा है, कोई पापड़ बनाना सीख रहा है, कोई अचार बनाना सीख रहा है।
0: हाँ सर,
1: कैसे लोगों को जोड़ती महिलाएं कैसे जोड़ती हैं? और क्या आपके सिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पे लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से महिलाएं बदल रही हैं समूह के माध्यम से?
0: सर समूह का माध्यम से हम लोग के यहाँ सब कुछ का अभी रूट सेट जो है, अभी आपको आप सुने होंगे कस्तूरबा स्कूल के सामने है रूट सेट, वहाँ सब चीज का प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कि कोई दीदी बोलती है कि हम सिलाई सीखेंगे तो वो दीदी को हम लोग वहाँ ले जाते हैं रूट सेट में, और रूट सेट में उसका नामांकन करा देते हैं, और उसमें 30 दीदी हो जाती है तो फिर एक बेंच शुरू हो जाता है, 30 दीदी मिलके एक बेंच शुरू हो जाता है। कोई बोलती है कि हम पार्लर का काम करेंगे तो उसको भी हम लोग वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं।
1: यानी कि बहुत सारी विधाएं वहां बताई जा रही हैं, चाहे पार्लर का काम हो, चाहे सिलाई मशीन का काम हो, या अन्य चीजों का काम
0: या
1: हो।
0: कोई पापड़ बनाना चाहती है, कोई साबुन सरफ बनाना चाहती है, कुछ भी चीज का, तो वहां तक पहुंचाने का हम लोग समूह से काम करते हैं।
1: आज क्या क्या चीजें महिलाएं बना रही हैं? अगर सिल्ली की हम बात करें, सिल्ली में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, समूह की महिलाएं मिलकर क्या क्या बना रही हैं मीरा जी?
0: अभी तो सबसे पहले अभी सिलाई मतलब अधिकतर देखा जाए तो सिलाई ही कर रही है, सिलाई के बाद अभी ब्यूटी मतलब पार्लर का भी काम कर रही है, और एक चीज है इसमें खेती बाड़ी, खेती बाड़ी में जैसे कि बागवानी वाला का कृषि का भी वहाँ प्रशिक्षण लिया जाता है। कृषि का वहाँ प्रशिक्षण 10 दिवसीय होता है, 10 दिन देने के बाद आके मतलब घर में अपना बाड़ी में कृषि का काम भी करती है, सब्जी उब्जी लगाती है।
1: यानी आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मीरा देवी सिल्ली से हमारे साथ हैं, और आप देखिए कि एक महिला किस तरीके से, एक ग्रामीण महिला, एक गांव की महिला, जो आज अपने जिंदगी में इतना एक बदलाव लाई है, वो समूह से भी जुड़ी है JSLPS के माध्यम से, उसने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे को अपनी जिंदगी बदलने में लगा दिया। मीरा जी, एक वो कहता
0: हाँ
1: ना
0: सर,
1: कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
0: हाँ
1: बहुत
0: सर,
1: लोगों को लगता है कि क्या हो जाएगा 2,500 रुपया से, लेकिन आपने तो 2,500 2,500 जमा करके आज तो आपने अपनी जिंदगी ही बदल ली।
0: हाँ सर, हम अपना जिंदगी बदल लिए हैं सर JSLPS में, समूह में भी जुड़ के, जैसे कि हम अभी बोल दे रहे हैं। फिर और एक चीज, JSLPS में जुड़ के हम एक ये पशु सखी का भी कार्य कार्यरत है। पशु सखी का कार्यरत में हम क्या काम करते हैं उसमें बता दे रहे हैं। जैसे कि बकरी को दवा खिलाते हैं, या बकरी का इलाज पूरा करते हैं, बकरी का, मुर्गी का, या फिर बतख का, बकरी को वैक्सीन भी हम लोग खुद से डाल लेते हैं सर।
1: अच्छा, पशु सखी के तौर पे भी आप उसमें काम कर रही हैं, मतलब उसमें आपकी
0: काम कर
1: जिम्मेदारी
0: रहे
1: है कि
0: हैं,
1: लोगों के उन जानवरों को देखना है, उनका इलाज करना है,
0: उनका इलाज करते हैं। हाँ
1: और ये जो दवाइयां आती हैं वो आप लोगों को दी जाती हैं?
0: सर, वे दवाई हम लोग खरीदते हैं,
1: ठीक है।
0: खरीद के लाते हैं, वो फिर हम लोग देते हैं किसान को। जैसे कि मेरा समूह में 10 दीदी है, 10 दीदी अगर वो बकरी पालन कर रही है तो उसका घर हम जाएंगे, उसको डॉक्टर नहीं बुलाना पड़ेगा, हमको कॉल कर देगी कि दीदी आइए मेरा घर में आज वैक्सीन डाल दीजिए, तो फिर हम पहुंच जाएंगे वैक्सीन लेके, तो फिर उनका बकरी को हम दवा देंगे, वैक्सीन देंगे, जो भी होगा उसका इलाज हम खुद से कर लेते हैं।
1: वाह, तब तो आज मीरा जी बहुत सारा काम एक साथ कर रही हैं।
0: हाँ सर,
1: कितना अच्छा लगता है मीरा जी, गांव में लोग आपके बारे में बात करते हैं, उदाहरण देते हैं, क्या बोलते हैं।
0: बहुत अच्छा बोलते हैं सर कि ऐसे ही सबको करना चाहिए मेहनत।
1: आप ये बताएं मीरा जी, कभी आपको मौका मिला कि आप शहर आई, शहर में लोगों से मिली, शहर में लोग आपसे पूछे अरे मीरा जी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, या लोगों ने आपके सामने बोला कि देखो ये मीरा जी हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी अपना ऐसे मेहनत करके बदला, ऐसा मौका कब आपके लाइफ में आया।
0: सर मेरा लाइफ में आया है वैसा मौका भी, जैसे कि हम लोग को JSLPS से भेजा जाता था सर प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण में हम लोग 5 दिवसीय या तो फिर 3 दिवसीय के लिए हम लोग अनगढ़ा भी गए हैं, रांची भी गए हैं। वहाँ भी हम लोग का बातचीत हुआ है कि JSLPS में ये होगा कि JSLPS में जैसे कि रह के हम लोग इतना आगे बढ़े, और ये JSLPS से हम लोग जो कार्यरत हैं अभी पशु का देख रेख जो कर रहे हैं उसमें वहाँ बातचीत होता है कि चलिए आप लोग कैसे सीखे, मतलब आप एक गांव की रहने वाली हैं और इतना मतलब क्या बोले उसको
1: अपनी जिंदगी में
0: बदलाव किए, बदलाव हुए इतना, तो स्टार्टिंग आप लोग कैसे कैसे किए, तो हम लोग पूरा सारा चीज बताते हैं शुरू से कि सबसे पहले तो हम लोग ये घर से नहीं निकलते थे, ये समूह क्या चीज है ऐसे बोलते थे। तो फिर मतलब घर में बोले कि ये 10 दीदी मिलके एक समूह बनता है, तो घर में भी हम लोग पूछे तो बोले कि ठीक है बना लो। तो फिर गए हम लोग 10 दीदी बोल के एक समूह बनाए बैठ के, उसके बाद 10 दीदी में जो समूह बना उस समूह से हम लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का चुनाव किए। चुनाव करने के बाद हम लोग अपना जैसे कि गाँव में से एक ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में हमको जैसे कि पशु सखी का रूप में चुनाव किया गया। चुनाव करने के बाद हमको वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया अनगढ़ा। अनगढ़ा गए, अनगढ़ा में 5 दिवसीय का हमको प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण में हम सब कुछ सीखे, मुर्गी को कैसे दवा देना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, बकरी को कैसे दवा खिलाना चाहिए, कैसे वैक्सीन डालते हैं, उसका बद्धाकरण कैसे करते हैं, ये सब का हम लोग को प्रशिक्षण मिला। फिर वो प्रशिक्षण हम लोग अच्छी तरह से सीखे और सीख के आके हम लोग गाँव में जितने जितने दीदी लोग है सबका घर घर जाके हम लोग खुद से इलाज करते हैं।
1: इसका मतलब मीरा जी, हम आज ये कह सकते हैं मीरा जी कि आज झारखंड सरकार में महिलाओं के लिए या गांव में ग्रामीण लोगों के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं कि लोग अगर उसका लाभ ले तो वो अपने आप को बदल सकते हैं।
0: हाँ सर, इसका योजना अगर सबको मिले और सबको लाभ ले तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे।
1: जरूरी है जागरूक रहने का, नहीं
0: हाँ हाँ सर, जागरूक
1: आ?
0: रहेंगे,
1: जागरूक रहना जरूरी है ताकि आप इसका लाभ ले सके।
0: मतलब लाभ मेरा तक पहुंच पाए।
1: मीरा जी, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी कहानी बताई, आपने कैसे अपनी जिंदगी बदली आपने वो बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को जितने भी लोग सुन रहे होंगे वे उन्हें भी खुशी मिली होगी और वो भी आपसे प्रेरणा लेके अपनी जिंदगी में एक बदलाव जरूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी हमसे जुड़ने के
0: धन्यवाद
1: लिए और लोगों से इतनी बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमने एक स्वावलंबी बनने की कहानी को जोड़ा, आज हमने उस यात्रा को शामिल किया कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर हम अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम सकारात्मक सोचकर बेहतर कर सकते हैं। मीरा देवी सिल्ली की रहने वाली हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लाभ उन्हें मिला उन पैसों को उन्होंने जमा किया, बत्तख पालन किया, फिर मुर्गी पालन किया, उसके बाद बकरी पालन और जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, साथ ही JSLPS से जुड़ी, उनमें एक आत्मविश्वास जगा, समूह में जुड़कर बहुत सारी काम कर रही हैं, पशु सखी भी हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं, उन रास्तों में चलने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं आपका इंतजार करती हैं, लेकिन आप उन योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़े। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभुशरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम में आपने आज सुनी भेंट वार्ता मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन की और एक प्रेरक यात्रा। भेंट वार्ताकार थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सिल्ली की लाभुक श्रीमती मीरा देवी और इनसे बातचीत की थी कमलेश कुमार मिश्र ने। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: दोस्तों, जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, बल्कि मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जोहार रांची में। इस कार्यक्रम में आप सबको विनीता का जोहार और नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं,
1: मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रचना। आप सबको भी मेरा नमस्कार जोहार, और विनीता तुमको भी।
0: आपको भी रचना, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ।
0: और वैसे भी जब हम साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो अच्छा तो होना ही है।
1: हाँ बिल्कुल, और वैसे भी आपने अभी शुरुआत में ही कह दिया ना कि मीठा खिलाकर ही नहीं मुंह मीठा कर सकते,
0: तो हम लोग मीठा मीठा ही बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना है ना।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है और आप हैं रचना और विनीता के साथ। तो अब वक्त है एक अच्छे से सुविचार का। कहते हैं ना, किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास पहली अनिवार्यता है। किसी भी कार्य की नींव का मजबूत पत्थर आत्मविश्वास ही है।
1: तो हमें भी आत्मविश्वास के साथ ही किसी भी काम को करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें या डिग्री हासिल कर लें, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि खुद को अंदर से मजबूत बनाएं और हर काम को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ करें। फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम नहीं चूमती है।
0: बिल्कुल।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: और अब कुछ बातें मौसम की। क्या रचना?
6: बिल्कुल, वैसे भी हम देख ही रहे हैं ना, मौसम का मिजाज है फिर से आगे बदलने वाला है।
5: सचमुच। और वैसे भी मौसम के बारे में कुछ भी कहना आज कल सही नहीं है, क्योंकि कब क्या बदलाव हो रहे हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार से, मतलब यानी कि आज से अगले 4 दिनों तक रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आंधी और गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अनुमान लगाया है।
6: और ऐसा भी बोला जा रहा है ना कि अब जो है भारत में ज्यादा दिन बिताने लगा है मानसून, यानी कि जो है मानसून पहले आ जा रहा है अपनी निर्धारित तिथि से।
5: आ भी रहा है पहले और जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। पिछले साल हमने देखा है
6: बहुत बारिश,
5: अक्टूबर तक बारिश रही है, तो इस बार भी वैसे ही कुछ आसार लग रहे हैं और मौसम विभाग का भी यही अनुमान है। इसकी वजह से ही तापमान में गिरावट भी आई है, 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी गई है।
6: और आज का अगर हम तापमान की आज की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री है और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस है।
5: तो कहने का मतलब यही कि अगर बाहर धूप भी है तो मौसम के झांसे में ना आए, क्योंकि कभी भी मौसम बदल सकता है।
6: कभी भी बारिश हो सकती है।
5: तो आप जब भी निकले, ऐसे भी धूप हो या बारिश, छतरी तो जरूर लेकर निकले। और साथ ही ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो गर्मी में कुछ कमी है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और जो जो सावधानियां इस मौसम में हमें लेनी चाहिए वो जरूर लेते रहें। क्यों रचना?
6: बिल्कुल, छतरी होनी चाहिए और पानी की बॉटल भी हमेशा साथ होनी चाहिए। दो चीजें तो हमेशा साथ होनी ही चाहिए।
5: बिल्कुल।

0: जो है रांची कार्यक्रम में अब कुछ बातें आज के दिन की करते हैं। क्यों रचना? आज के दिन यानी कि आज के इतिहास की। इतिहास के पन्नों में 3 जून के नाम कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है और आज का दिन भारत के इतिहास और भूगोल के बदलने वाले दिन के तौर पर जाना जाता है इतिहास में।
1: और 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना के तौर पर भी जाना जाता है।
0: इसलिए आज के दिन को कुछ खास बताया जाता है क्योंकि आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की नींव रखी गई थी, है ना?

0: बातें हो रही आज के दिन की, तो बताएं कि आज ही के दिन यानी कि 3 जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था, और 1918 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना की थी।
1: और अगर बात करें 1969 की, तो 1959 में सिंगापुर के सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था, और 1972 में देश के पहले आधुनिक युद्धक पोत नीलगिरी को देश की पहली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जलावर्तित किया था, और 3 जून 1985 में भारत सरकार ने 5 दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया था।

0: इतिहास की बातें हम कर रहे हैं
1: और अब उनकी भी बातें कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो उन सभी को आकाशवाणी रांची की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए बताते हैं कि आज किनका किनका जन्मदिन है। तो 1941 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रूमा पाल का जन्म हुआ था।
0: और 1867 में हर विलास शारदा, जो कि भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और विद्वान थे, उनका भी जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक रहे बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में आज ही के दिन हुआ था।

0: आज के दिन की बातें हो रही हैं, तो आज के खास दिन की बातें भी हम करते हैं, है ना, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आज है विश्व साइकिल दिवस। और ये दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है परिवहन को एक सरल, किफायती, प्रदूषण मुक्त साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना। और 2026 के लिए थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना।
1: और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि साइकिल के कितने फायदे हैं।
0: बिल्कुल, तो सब जानते हैं। इसलिए तो देखिए आजकल लोग, मतलब बड़े बड़े लोग गाड़ी छोड़कर साइकिल से आना जाना शुरू कर रहे हैं।
1: वैसे भी साइकिल जो है ना, एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि कसरत के लिए बहुत अच्छी,
0: बहुत अच्छी जगह है। जो आप परेशान रहते हैं कि वजन कम कैसे होगा या फिट कैसे रहें, तो बस साइकिल ले आइए अपने डेली रूटीन में, फिर देखिए कैसे हर चीज का निवारण आपको मिल जाएगा, है ना। और पर्यावरण से सुरक्षित तो रहता ही है, और साथ ही ये हमारे, जैसा कि हमने बताया, कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और ईंधन और रख रखाव का खर्च ना होने पर ये बहुत ही सस्ता और किफायती है ना।
1: बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है डीजल पेट्रोल भी कितने महंगे हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है साइकिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भले ही ज्यादा दूरी आप इससे तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नजदीक की दूरी है इससे आप तय कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि विश्व साइकिल दिवस है, तो हम ये भी बता दें कि अपने श्रोताओं को कि नीदरलैंड जो है इस साइकिल दिवस में यानी कि नंबर वन पर है। वहाँ पर जो है रोजाना सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने वाले लोग हैं, और लगभग 58% लोग नियमित रूप से वहाँ पे साइकिल चलाते हैं।
0: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना।
1: हाँ।
0: और अभी आप देखेंगे तो कितनी महंगी महंगी साइकिलें भी आने लग गई है ना।
1: सही में, और जिनको साइकिल का शौक होता है ना, वो महंगी से महंगी साइकिल भी खरीदते
0: हैं और चलाते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि कितने फायदे हैं साइकिल के। तो अगर आज का दिन मनाना है यानी कि खास बनाना है, तो साइकिल को अपने उपयोग में जरूर लाएं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को ये दिवस मनाने का घोषित किया गया था, और आज ही के दिन यानी कि 3 जून को 1918 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी।
1: और हम ये भी बताते अपने श्रोताओं को कि साइकिल का आविष्कार जो है वो 1817 में जर्मनी के कार्ल वॉन राइस ने किया था, और पहली साइकिल जो बनी थी उसमें पैडल नहीं थे, इसे पैरों से चलाया जाता था।
0: सोचिए, और अभी कितनी, मतलब कितना आगे जा चुका है, गियर वाली साइकिल भी आ गई है, और कितने डिजाइनर साइकिल आ गए ना, देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, तो आप
1: रंग बिरंगी साइकिल।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं जोहार रांची विनीता और रचना के साथ। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नजर या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है।
1: जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं हमारे झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता से तो हर कोई वाकिफ है ही, और यहाँ की प्रकृति हमें पर्यावरण से अलग ही प्रकार से जोड़ कर रखती है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिन्हें देखने और घूमने के बाद ऐसा लगता है मानो सब कुछ छोड़कर यहीं बस जाए।
0: बिल्कुल, तो आज एक ऐसी ही खूबसूरत जगह के बारे में हम आपको बताएंगे जो आजकल काफी फेमस हो रहा है और जिसे लोग ब्लू पॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे लेकिन इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: चलो तुमको लेकर चले। जी हाँ, आपको आज हम ब्लू पॉन्ड की ओर ले जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये क्या है, तो आपको बताएं कि ब्लू पॉन्ड एक मानव निर्मित छोटा सा पत्थर का खदान है जिसका पानी नीला है, जिस कारण से इसे सभी ब्लू पॉन्ड के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, और इस खदान से खनिज पत्थर निकालने के लिए के बाद ही यहाँ का जल का जमाव नीचे पत्थरों पर होता है जो नीले रंग का दिखता है। और यहाँ की पत्थरों की कटाई के कारण चारों ओर दीवार सी बन गई है जो इस जगह को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करती है। इस नीले जल ने ही ब्लू पॉन्ड को जन्म दिया है।
0: बिल्कुल, और ब्लू पॉन्ड का पानी इतना नीला कैसे है, इसी को जानने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये पॉन्ड रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर बालसिंग नामक स्थान है, वहाँ पर है। रिंग रोड से होकर बालसिंग नामक जगह से रोड छोड़कर बाईं ओर कच्ची सड़क पर जाना होता है यहाँ पहुँचने के लिए, और कच्ची सड़क में छोटे बड़े गड्ढों को पार करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं।
1: और स्थानीय लोगों के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, शांत हरियाली सब कुछ है यहाँ पर। और एक बात और कि बाइकर्स और साइकिल राइडर्स के लिए जगह बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहता है, तो एक बार तो यहाँ जाना ज़रूर बनता है। मेघों के साए में, गिरी के बाहों में सुकून बसता है, प्रकृति तेरी पनाहों में।

0: बहुत सारी बातें हमने कर ली, पर खेल के बिना तो हमारा प्रोग्राम अधूरा है ना। तो चलिए आपको बताते हैं खेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो जमशेदपुर में आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जनकल्याण समर्पण संस्थान सिकिदरी की तैराक पिंकी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। पिंकी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रजत अपने नाम किया है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है मेरे लिए। और झारखंड में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर आयोजित झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का शुभारंभ बुधवार को यानी आज जेएससीए स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में होगा। उद्घाटन समारोह सुबह 8 बजे आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला कोल्हान डायनामोज और छोटा नागपुर ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मैच संताल चैलेंजर्स और पलामू वॉरियर्स के बीच दोपहर 12:30 बजे होगा। प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं और प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे।

0: तो रचना, देखिए बातों बातों में अब
1: हम्म,
0: वक्त हो गया है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि किसी को खुश रखने का या करने का मौका मिले तो छोड़िए मत। फरिश्ते होते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं।
1: तो बस आप भी खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। इन बातों के साथ ही जोहार रांची कार्यक्रम में आज का अंक बस इतना ही। अब अपनी दोस्त रचना
0: और विनीता,
1: को दीजिए विदा।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार, जोहार।
0: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सैलाब फिल्म के गीत के साथ। और इस गीत की फरमाइश आई है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की।

अनुपमा देश पांडे की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आपने अभी सुना सैलाब फिल्म से। और अगली फरमाइश आई है दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय की। साथ ही कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय की। और इन्होंने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म का गीत।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और अब अगली फरमाइश हमने ली है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिबा कौर की, साथी बिहारी

कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्ल्यू उल्ला फकीर और परवीन आसमा फकीर की। और इन्होंने सुनना चाहा है साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं घरौंदा फिल्म का गीत रूना लैला की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज रजा की, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ हैं शिल्पी और निधि।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका और आज मेरे साथ है शिल्पी।
1: नमस्कार बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगी और प्रसन्न होंगी।
0: हाँ शिल्पी, और प्रसन्नता के लिए तुम्हें पता है ना कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो बहनों, हम बातें करेंगे आज पर्यावरण के ही बारे में और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसकी देखभाल की जाए। और शिल्पी, यूं तो हम पर्यावरण के बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं, है ना, लेकिन आज हम जानेंगे कि साइकिल का जो प्रयोग है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ पर्यावरण को भी कैसे बचाता है।
1: बिल्कुल निधि, ठीक कहा आपने। और साइकिल की सवारी तो हमारे लिए काफी सुविधाजनक है और इसके लाभ भी कई हैं बहनों। पर्यावरण के संरक्षण के लिए साइकिल परिवहन का सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, जो कार्बन उत्सर्जन को घटाने, हवा की गुणवत्ता सुधारने और ईंधन की बचत करने में मदद भी करती है।
0: सही जानकारी दी तुमने शिल्पी, और बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानते भी हैं। साइकिल में जैसा कि
1: हम सब जानते हैं
0: बिल्कुल, कि पेट्रोल या डीजल की जरूरत तो होती ही नहीं, और इसी कारण से वायु प्रदूषण नहीं होता क्योंकि वाहन से धुआं नहीं निकलता है बिल्कुल साइकिल से। और साइकिल से अन्य वाहनों के मुकाबले ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता
1: बिल्कुल।
0: और साइकिल की सवारी इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इससे सड़कों पर जाम की स्थिति काफी कम हो जाती है ना।
1: और साइकिल को हम निधि कहीं से भी निकाल सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपने जाम की बात कही, तो बड़े बड़े वाहनों की वजह से सड़कों पर काफी भीड़ लग जाती है। हमने कई बार इसे महसूस किया है, झेला भी है, और हम ट्रैफिक जाम की समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। तो साइकिल की बनावट ऐसी होती है बहनों की यह सड़क पर काफी कम जगह लेती है और हम कहीं से भी इसको निकाल सकते हैं।
0: तो अगर ट्रैफिक जाम में आप फंस गए हैं और अगर आप बड़े वाहन में बैठे हैं तो भाई आप तो मुश्किल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर कोई साइकिल लेकर जा रहा है तो वो बड़ी आसानी से।
1: और कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम भी साइकिल की सवारी करते होते तो हम भी यहाँ पे फंसे नहीं होते।
0: सही कहा, हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। और सबसे अच्छी बात है कि जरूरत पड़ने पर हम से पैदल लेकर भी चल सकते हैं। जैसे भीड़ की स्थिति है तो हम साइकिल से उतर गए और हम इसे लेकर चल रहे हैं और जिधर भी रास्ता हमें मिला उधर से हम निकल गए, तो भीड़ भाड़ वाली जगह में हम इसे लेकर आसानी से निकल जाते हैं। और जिस जगह पर हम 6-7 साइकिलें रख सकते हैं वहीं पर सिर्फ एक बड़ा वाहन ही हम रख सकते हैं, है ना, तो इससे फर्क तो बहुत
1: पड़ता है। बिल्कुल बहनों, साइकिल चलाने के और भी कई लाभ हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। साइकिल चलाना एक काफी अच्छा व्यायाम है और इससे हमारा वजन भी कम होता है और साथ साथ हमारे जो पैरों की मजबूती है बढ़ती है। इसलिए हमने अपने बच्चों को, जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं निधि, बहनों से भी कहना चाहूंगी कि एक साइकिल जरूर देना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा होता है ना, इन दिनों की बात है कि बच्चे बैठ कर गेम खेलना चाहते
0: बिल्कुल
1: हैं। तो अगर उनके पास साइकिल होगी तो निश्चित है कि शाम को अपने दोस्तों के साथ वो निकल पड़ेंगे साइकिल की सवारी पे।
0: बहुत खूब, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के

0: लिए भी, और ऐसा कहा जाता है और आजकल तो इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है शिल्पी, कि अगर आप थोड़ी दूर जा रहे हैं स्कूटर से बाइक से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साइकिल पर जाएं, और साइकिल चलाते रहने से हमें संतुलन बनाए रखने की आदत रहती है ना, क्योंकि बाकी जो वाहन है उसमें संतुलन की उतनी जरूरत नहीं होती, और साइकिल में आपको संतुलित रखना है तो आप बिल्कुल इसका अभ्यास रहता है आपको। और आमतौर पर एक उम्र के बाद लोगों को चलने या दौड़ने में संतुलन बिगड़ने की जो समस्या है वो सामने आती है, तो साइकिल की सवारी से हमारा आत्मविश्वास संतुलन के मामले में कायम रहता है।
1: बिल्कुल, और साइकिल चलाने से हृदय भी स्वस्थ रहता है, वजन की जैसे कि हमने कही कि वजन भी हमारा नियंत्रण होने लगता है, यानी कई जब वजन हमारा कम होता है बहनों, तो हम कहीं ना कहीं कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पास नहीं आती,
0: दूसरे बीमारियों से बच जाते हैं,
1: तो हम अन्य और बीमारियां जो आने से पहले हम बच सकते हैं अगर हम साइकिल की सवारी करें। और निधि आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन हमने देखा है कि आजकल हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो भी साइकिल चलाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है देखते हैं जब, है ना,
0: क्योंकि ये जो है ना कि बीते वर्ष में लोग ये समझने लगे थे कि साइकिल तो भाई ये किशोरों के लिए है या छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, और एक उम्र के बाद लोग साइकिल चलाना छोड़ देते थे क्योंकि बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। लेकिन आजकल तो मैं देखती हूँ सड़कों पे कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं, वो भी साइकिल चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है,
1: बिल्कुल,
0: और इसमें इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए,
1: और कहीं ना कहीं इससे आर्थिक मदद भी कहीं हो जाता है,
0: क्योंकि साइकिल कम कीमत में आती है, और दूसरे
1: आपका पेट्रोल डीजल इसकी समस्या भी नहीं होती है, बड़ा ही अच्छा आसान भी तरीका है और शरीर के लिए भी स्वस्थ है,
0: तो दोनों ही तरफ लाभ है, एक तो हमारे लिए खुद, हमारे परिवार के लिए, और साथ साथ पर्यावरण के लिए, तो बहुत ही अच्छी सवारी है, तो हम चाहेंगे कि सभी अपनाएं इसे अपने जीवन में, है ना शिल्पी, तो चलिए अब हम भी साइकिल की सवारी करते हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
8: एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और निधि, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़े।
9: हाँ, तो बहनों, पेश है भेंटवार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण का सरल उपाय, 3R। आज भेंटवार्ताकार हैं प्रीति भारती और इनसे बातें कर रही हैं शिल्पी। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
10: बहनों, बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में हम सभी की छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है। पर्यावरण को बचाने का एक आसान और प्रभावी तरीके हैं 3R, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, यानी जरूरत से कम उपयोग करना, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना। ये तीन सरल कदम न केवल कचरे को कम करते हैं बल्कि ऊर्जा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी करते हैं। तो आइए आज हम इस बातचीत के दौरान जानेंगे कि 3R क्या है, इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है और कैसे हम सभी मिलकर एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और आज हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान हैं। आप हैं प्रीति भारती, आप शिक्षिका हैं। तो प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार।
11: नमस्कार आप सभी को।
10: जी प्रीति जी, सबसे पहला सवाल है कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में हम महिलाएं अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसके बारे में बताइए।
11: जी, बड़ा ही शानदार और सुंदर सा सवाल है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुयामी है। और जैसा कि वे प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण संसाधनों की प्रबंधक भी हैं, जागरूक प्रहरी भी हैं और संरक्षण आंदोलनों की रीढ़ भी रही हैं।
10: जी।
11: अब देखें तो यदि हम बात करते हैं 1970 में अमृता देवी की, तो जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। और वहीं अगर चिपको आंदोलन की बात की जाए जो 1970 में गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ, तो महिलाओं ने किस तरह से पेड़ों से लिपटकर उनकी कटाई को रोका, ये भला कौन भूल सकता है।
10: बिल्कुल
11: जी। और आधुनिक समय में भी हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा ही बदलाव ला रही। अब बात करते हैं तुलसी गौड़ा जैसी महिलाओं का, जिन्होंने जंगल के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। और वहीं वंदना शिवाजी, जो पारिस्थितिकी के विषय में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर को कौन भूल सकता है भला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सभी वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं। तो मेरा मानना है कि महिलाएं ही अपने परिवार की पहली शिक्षिका भी हैं। वे बच्चों में बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम, लगाव, पर्यावरण अनुकूल आदतों को के संस्कार को डालती हैं। जैसे घरों में कचरे का पृथक्करण, प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण, तथा उनकी देखभाल जैसे कार्यों में कैसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनाने की प्रेरणा देती है। तो संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगी कि महिलाएं और प्रकृति तो दोनों ही सृजन करता है।
2: बिल्कुल,
11: महिलाओं की सहभागिता के बिना पर्यावरण संरक्षण को सफल बनाना कहाँ कहाँ से संभव हो पाएगा। से महिलाओं को तो अपनी भूमिका अच्छे से और आगे बढ़कर निभानी है।
2: जी, बहुत अपन से देखा है कि अपने घर में जो हमारी माँ होती हैं, बड़ी बहन या भाभी, सभी लोग घर में तुलसी, आंवला, केला वृक्ष, बट वृक्ष इसकी पूजा करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बात आती है कि इन पौधों को हमें बचाकर रखना है, चाहे तेज धूप हो या बारिश, है ना?
11: जी बिल्कुल।
2: तो महिलाएं भाई शुरू से इसमें अग्रणी रही हैं। और प्रीति ये बताइए कि हमने 3R की बात कही, तो 3R का अर्थ क्या है, इसके बारे में जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे।
11: हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि 3R का अर्थ हुआ, पहला तो है आर, 3R मतलब पहला हुआ रिड्यूस, कम उपयोग करना, दूसरा हुआ रीयूज, फिर से पुनः उपयोग करना, और तीसरा हुआ रिसाइकल, पुनर्चक्रण करना। तो जैसा कि स्पष्ट है कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखाती है। 3R अपनाने से कचरे की मात्रा भी घटती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होता है। देखा जाए तो प्रदूषण में भी बहुत कमी आती है। तो आज के समय में इसका पालन अति आवश्यक है। इसीलिए आवश्यक है कि कचरे के ढेर को कम किया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को भी रोका जा सके।
2: जी, और आपने जो कही अभी रियूज, रिड्यूज और रिसाइकल, इसका मैंने क्यों आवश्यकता पड़ी आखिर, इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे।
11: जी जी बिल्कुल। पहला रिड्यूज जो है उसका अर्थ होता है कम करना, मतलब जैसे अनावश्यक चीजों की खरीदारी कम की जाए और संसाधन जैसे बिजली बचत की जाए, पानी की बचत की जाए, कागज आदि की बर्बादी को न्यूनतम किया जाए। तो ये रिड्यूस हुआ, कम उपयोग करना, अनावश्यक उपयोग नहीं करना। और दूसरा है रीयूज, जिसका अर्थ होता है पुनः उपयोग करना। जैसे किसी भी वस्तु को फेंकने से पहले उसका हम दोबारा उपयोग कर ले। जैसे हम देखते हैं ना कि शीशे के जार आते हैं, तो क्यों ना उन शीशे के जार के डब्बों में मसाला रख लें, पुराने कपड़ों को हम पोछा के रूप में प्रयोग करें और उसका थैले के रूप में प्रयोग करें। तो ये रीयूज इस तरह से करके हम काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोक सकते हैं। और तीसरा रिसाइकल हुआ, अर्थात उसका पुनर्चक्रण, जिसका अर्थ हुआ अनुपयोगी चीजों को कारखानों या केंद्रों में भेजकर उनसे नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जैसे हम देखते हैं ना कि पुराने अखबार हुए, प्लास्टिक की बोतल हुई और कांच के टुकड़े को रिसाइकिल करके नया रूप दिया जा सकता है।
2: जी।
11: तो यह सतत विकास और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा हमारे लिए।
2: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। और प्रीति जी, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से कैसे करें, किस तरह से, ये बताइए।
11: जी, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए।
2: जी,
11: जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे कम करने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे हम कर सकते हैं ना कि कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, थैले लेकर नहीं जाते हैं, तो प्लास्टिक के थैलों में हमें सामान दिया जाता है, तो क्यों ना अपने घर से ही बाहर निकलते वक्त कपड़े या जूट की थैले ले लें, जिससे कि हमेशा थैला साथ में रखेंगे तो प्लास्टिक का उपयोग भी कम होगा। या सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के कप और स्ट्रॉ का बहिष्कार करें, और प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न के बराबर करें। और सबसे बड़ी बात है कि गीला व सूखा कचरा अलग अलग करें, ताकि सूखे प्लास्टिक कचरे को आसानी से रिसाइकल किया जा सके। जहाँ तक कि मतलब इस तरह के अगर कदम हम उठाते हैं तो प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक कदम हमें अवश्य उठाने चाहिए।
2: जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। और आपकी बात से एक बात मुझे याद आई कि भाई अभी नया प्रचलन है कि हम जाते हैं खाली हाथ, और ये सोचते हैं चाहे

0: साग सब्जी खरीदें, फल खरीदें या कोई सामान, तो अच्छा सा कैरी बैग हाथ में लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन
1: जी
0: यही सोच पहले नहीं थी प्रीति जी, जब हम घर से बाहर जाते थे तो हमारे घर में जो माँ होती थी पुराने कपड़ों से बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइनदार झोला
1: हाँ
0: सिलते थे, और
1: जी
0: उसी झोले को लेकर हम बाहर जाते थे। तो वो आदत हमें ऐसा लगता है ना कि फिर से हमें अपनाने की जरूरत आ गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: उम्मीद है कि हमारी बहनें हैं ऐसा अगर करें तो शायद हमारे घर में जो प्लास्टिक कचरे की हमने बात कही तो हमारे यहाँ ऐसा थैला आएगा ही नहीं।
1: जी
0: और
1: जी
0: प्रीति जी, आप एक शिक्षिका हैं, आप बताइए कि बच्चों की पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है, कैसे उन्हें क्या बताएं ताकि बच्चे भी अपने पर्यावरण के बारे में थोड़े से जागरूक बने।
1: जी एक शिक्षिका होने के नाते मेरा मानना है ना कि हमारे बच्चे आने वाले कल के रक्षक हैं,
0: जी
1: और उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। वे वृक्षारोपण को समझें, जल संरक्षण समझें, स्वच्छता अभियान, कचरा पृथककरण तथा प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाकर हमारे मतलब हमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और जब बच्चे स्वयं जागरूक हो जाते हैं तो वे अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करते हैं।
0: जी
1: जैसे बच्चे तो राष्ट्र का भविष्य हैं, और उनके माध्यम से समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव हम बच्चों के माध्यम से ही रख सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि बच्चे अगर उनका जन्मदिन है या कोई विशेष अवसर है तो हम उन्हें बताएं कि अपने विशेष अवसर पे पौधे लगाओ,
0: बिल्कुल
1: लंच बॉक्स में प्लास्टिक के रैपर के बजाय स्टील के डिब्बे का इस्तेमाल करो, और अपने विद्यालय और अगल बगल आस पड़ोस को साफ रखो। इन छोटी छोटी आदतों को बच्चों में विकसित बनाना आवश्यक हो गया।
0: जी, और बहुत अच्छी आपने बात कही कर। तो हम एक उसका मनचाहा हम पौधा भी दे सकते हैं गमले में,
1: जी।
0: है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट हमारे कहीं किसी घर के कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन जब अगर एक पौधा हो तो निश्चित हम उसे अपने बाग में लगा देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर शुरुआत हम घर से करें, बच्चों को सिखाएं ऐसी छोटी छोटी बातें, तो बच्चे अपनी भूमिका तो निभाएंगे बखूबी।
1: जी बिल्कुल
0: प्रीति जी, चलते चलते श्रोता सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि भाई इतनी सुंदर हमारी ये जो प्रकृति है, सुंदर वसुंधरा है, कैसे हम किन उपायों से बचाएं?
1: मैं अपनी श्रोता सखियों से ये कहना चाहूंगी कि यह सुंदर वसुधा केवल हमारी संपत्ति तो नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। तो यदि हम आज प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला समय में सीआर के सिद्धांत याद रखें, पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति का दायित्व तो नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे बचाने के लिए हमें अपनी दैनिक आदतों में थोड़ा बदलाव तो लाना होगा। आज सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे और पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा रखेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी धरती हरी भरी रहेगी तभी हम कहीं घूमने जाएंगे और हम नए नजर से उसे देख पाएंगे। और जब हम घूमने जाते हैं पर्यटन का, तो खैर अभी गर्मी की छुट्टी है तो बच्चे बड़ी सुंदर सुंदर याद को अपने आंख में कैमरे के रूप में बंद करके लौटते हैं घर पे। तो आपने प्रीति जी बहुत अच्छी बात बहुत सरल शब्दों में रखा, और उम्मीद है कि हमारी श्रोता सखियों जो है सुन रही है कार्यक्रम को, उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। और आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम में, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, पर्यावरण संरक्षण का सरल उपाय 3 R। मेहमान थी हमारी प्रीति भारती और इनसे बातें कर रही थी शिल्पी। और शिल्पी, अब
0: हाँ भाई,
1: क्या
0: बहनों
1: इरादा
0: को
1: है?
0: इरादा है इतनी अच्छी जानकारी के
1: साइकिल
0: बाद।
1: का गीत तो हमने सुना दिया।
0: अब चलते हैं, एक और गीत बहनों को सुनवाते हैं।

0: और बहनों हमने साइकिल की सवारी भी कर ली, गीत भी सुन लिया, और अब जब तक गृहलक्ष्मी में रसोई की बात ना हो तो भला सुना सा लगता है निधि, है ना?
1: बिल्कुल शिल्पी। तो रसीली रसोई में आज हम लेकर आए हैं बहनों के लिए गर्मियों के स्वादिष्ट पेय, यानी कि ड्रिंक्स जो घर में हम बनाते हैं ना। तो इन दिनों गर्मी तो काफ़ी पड़ ही रही है और घर से बाहर हमें निकलना भी पड़ता है, ऐसे में हमें स्वादिष्ट, पौष्टिक और तरोताज़ा कर देने वाले पेय की ज़रूरत पड़ती है ना।
0: तो आज हम अपनी बहनों को रसीली रसोई के तहत आपको बताएंगे कि गर्मियों के कुछ स्वादिष्ट पेय के बारे में। और सबसे पहले आइए हम जानते हैं बनाने के लिए मसाला छाछ बनाने की विधि कैसे बनेगी।
1: बहुत ही पसंदीदा है ये लोगों का,
0: ये है लगता है ऐसा चटपटा है कि शायद सबको अच्छा लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, और दही होने की वजह से काफी ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मसाला छाछ बनाने के लिए आपको बहुत ही साधारण विधि है, एक कप दही में ठंडा पानी मिलाएं और इसे इसमें भुना जीरा, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर अगर आप लेना चाहें तो, और पुदीने की जो पत्तियां हैं उसे मिलाकर अच्छी तरह से मिक्सी के जार में ब्लेंड कर लें और तैयार है आपका मसाला छाछ।
0: बिल्कुल, और निधि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दही जितनी भी सामग्री हमने बताई अपनी सखियों को वो सारा चीज़ हमारे घर में ही रहता है, बहुत ही आसान है ना।
1: हाँ बिल्कुल, और अभी तो कच्चे आम मिल रहे हैं, है ना। हाँ, गर्मियों में तो आम पन्ना भी काफ़ी लोकप्रिय है। सामग्री बिल्कुल साधारण है, कच्चे आम और साधारण मसाले जैसे भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, काला और सफ़ेद नमक हमें चाहिए, और विधि भी बहुत साधारण है। शिल्पी बता दो बहनों को।
0: बहनों अगर आप कच्चे आम को उबाल सकती हैं तो उबाल लीजिए, और या उसे आग पे आप पका भी सकती हैं, और इसके छिलके आप अलग कर लें। अब आम को ठंडे पानी में डालकर मसल लें और इसे एक शरबत सा तैयार कर लें, और इसमें मसाला जैसा कि हमने कहा कि पुदीने की पत्तियां मिला सकती हैं, और जितने सामान अभी बताया जैसे भुना जीरा,
1: ये सभी पेय में यही
0: हमारे घर में बिल्कुल रहता है, तो आप उसे डाल करके बना सकती हैं और बहुत शानदार और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है ये आम
1: बिल्कुल
0: पन्ना।
1: और हम कहते हैं ना कि आम पन्ना पीने से लू नहीं लगता। हाँ। और गर्मी में ये काफी उपयोगी है हमारे लिए। और शिल्पी अब बातों बातों में वक्त हो चला है सखियों से विदा लेने का, तो हम बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी

0: गौरव पांडे की। और बहनों अभी के लिए दें विदा अपनी सखियों निधि और
1: शिल्पी को, नमस्कार। गृहलक्ष्मी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात ये

0: हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको, रुको। मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
6: हाँ?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
6: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
6: बढ़िया ही रोकने वाली। वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
9: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
10: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
9: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
11: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
9: आप तो काम करती है ना?
11: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
9: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
12: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
6: किसी भी हाल में जंगल कटने
5: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार।
4: मिट्टी, पानी और बयान।
3: मिट्टी, पानी और बयान।
4: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
5: अरे कहाँ से?
7: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
3: कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो।

0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, एक बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में एक्सएलआरआई देश में दूसरे स्थान पर और आईआईएम रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड की खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े, अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व तो है।
0: केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी खामियों और मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला हितैषी पंचायत के रूप में राष्ट्रीय पहचान मिली है। लगभग 17,500 की आबादी वाली इस पंचायत में झिकरहट्टी पूर्वी समेत 8 गांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग भी की है, ताकि महिलाओं और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि इस पंचायत की तरह ही अन्य पंचायतों को बढ़ाने का काम किया जाएगा।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है, इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे।
0: आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के कई शिक्षण संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। निजी प्रबंधन संस्थानों में जेवर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि आईआईटी धनबाद सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में 11वें स्थान पर रहा। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को प्रबंधन शिक्षा में 18वां, बीआईटी मेसरा को निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में 10वां तथा आईआईटी को अपनी श्रेणी में 18वां स्थान हासिल हुआ। आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज

0: आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU में ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े जंबो सिलेंडर का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ। उपाधीक्षक डॉ. राजकिशोर के निर्देश पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइप को बदलकर ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल कर दी गई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने भी मामले की जानकारी मिलने पर अपने प्रतिनिधि को अस्पताल भेजा और स्थिति की जानकारी ली। खूंटी जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून से सप्ताह भर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला वन पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले के विभिन्न गांवों, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर वन रक्षक GFMC गांव के मुखिया प्रधान जाके वहां पे बैठक करें और विश्व पर्यावरण से संबंधित जो बिंदु है उसके बारे में गांव से विचार विमर्श करें और क्या अपेक्षित है वन विभाग से और किस तरह से हम और एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर एक डिस्कशन है।
0: पाकुड़ के अमरापाड़ा में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान कई पेड़ों की कटाई की गई। DFO सौरभ चंद्रा ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है।
2: अमरापाड़ा रेंज में पकलो के पास एक रोड RU विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इसकी पूर्वानुमति विभाग द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। स्थलीय प्रबंधन के कारण में जो हमारे वहाँ प्रधान वन रक्षक उन्होंने पाया था कि बिना अनुमति के वहाँ पर रोड बनाने के क्रम में कई पेड़ को उखाड़ दिया गया है और वन भूमि का वहाँ पर नष्ट किया गया है।
0: सरायकेला में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य के जनक कुंवर विजय प्रताप सिंह की 130वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कलाकारों और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने छऊ नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में उनके योगदान को याद किया तथा इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जापान में चल रहे अंडर-18 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने लीग चरण में अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड की संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी ने भी 1-1 गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉकी झारखंड और राज्य खेल विभाग ने भारतीय टीम तथा राज्य के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सेमीफाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन पर वेंडरों और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को QR कोड आधारित डिजिटल पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टाटानगर इस व्यवस्था को लागू करने वाला दक्षिण पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। देवघर में आयोजित जनता दरबार में मदद की गुहार लेकर पहुंचे दिव्यांग भवेश को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दानपात्र खोले गए। गिनती के बाद दानपात्रों से कुल करीब 26 लाख रुपए प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह राशि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। IIRF रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में XLRI देश में दूसरे स्थान पर और IIM रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर-18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसमें आज आप सुनेंगे राग देव गंधार, कलाकार हैं गिरिजा देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना राग देव गंधार। कलाकार थी गिरिजा देवी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
5: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे छोटे से अंतराल के बाद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: स्वयं ही कटपड़े
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शंकर महादेवन और शंकर एहसान लॉय की आवाज में स्ट्रीट डांसर फिल्म का गीत।

और आइए अब सुनते हैं आर्टिकल 15 फिल्म का गीत यसीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज में। संगीत पीयूष शंकर का है और इस गीत को लिखा है रश्मि विराग ने।

0: और आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: Ha ha ha ha!

और अब कार्यक्रम के आखिर में कुर्बान फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत सलीम मर्चेंट का है और इस गीत को लिखा है निरंजन एंगर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे जय भारती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय समिति की आज तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हाल ही में विस्तारित की गई इस 7 सदस्यीय कमेटी में 2 नए मंत्रियों शिल्पी नेहा तिर्की और हफिजुल हसन को शामिल किया गया है। इससे पहले हुई 2 बैठकें बेनतीजा रहने के बाद आज होने वाली इस बैठक में सभी वर्गों के भाषाई और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर कोई ठोस फैसला लिए जाने की उम्मीद है। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर अपना फैसला सुनाएगी। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने की याचिका दायर की है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में अब आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में भारी उत्साह है। युवाओं का मानना है कि मोदी सरकार का यह कार्यकाल देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। स्थानीय युवा राम शांडिल्य के अनुसार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़कर उनमें नया आत्मविश्वास जगाया है।
2: मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए नए नए योजनाओं से स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो मिशन है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
1: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मरांगबुरु से प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में समय पर न आने वाले कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने लेट लतीफ कर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। देर से पहुंचे कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अध्यक्ष ने कहा कि 2 महीने से मिल रही लापरवाही की शिकायतों के बाद आम जनता के काम बाधित होने से रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
3: 2 महीना से देखा जा रहा है कि भाई समय पर ऑफिस में कोई आते नहीं, कार्य बाधित हो रहा है। कई बार लिखित में भी इनके ऊपर चेतावनी दिया गया, लिखित में भी आदेश जारी किया गया, इनके बावजूद भी ये लोग पर किसी तरह का कोई काम पे जू नहीं देगा कि भाई समय से जाए समय से आए। तो आज हम अभी जाकर देखे तो लोग 12:30 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 1:30 बजे आते हैं। तो ऑफिस का जो गरिमा है वो धूमिल हो रहा था। तो आज हम ताला बंद कर दे जो बाहर उबारे रहेंगे।
1: रांची में असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर एसडीओ कुमार रजत के नेतृत्व में अरगोड़ा और हरमू क्षेत्रों में देर रात सघन जांच चलाई गई। सार्वजनिक स्थलों पर नशापान और अड्डाबाजी करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में कल रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दलांचल खरी गांव में सोते समय हुए इस हमले में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी परनी देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के समय पास सो रही 1.5 वर्षीय बच्ची सुरक्षित है। एसडीपीओ आवेद खान ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रांची में झारखंड महिला टी20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनेमोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हरा दिया। छोटा नागपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए, जिसके जवाब में कोल्हान ने दुर्गा मुर्मू के नाबाद 56 रनों की बदौलत लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम नॉनस्टॉप अंताक्षरी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: தலைமை கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: दोस्तों कितने अजीब होते हैं कुछ बंधन, कुछ रिश्ते, कोई डोर भी नहीं फिर भी बंध जाते हैं मन से, जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता है ना. तो चलिए ना इन बातों के साथ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं नॉन स्टॉप अंताक्षरी. तो पहला सॉन्ग एम से, क्योंकि वो कहते हैं ना बैठे बैठे क्या करोगे, कुछ करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर अपनी दोस्त विनीता का नाम.

की जिया हुआ तेरे नाम रे, यानी कि अब है र से गाने की बारी। तो ये सॉन्ग आपके लिए, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नॉनस्टॉप अंताक्षरी।

सचमुच प्यार में रहने से दिल की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है ना? समझ में ही नहीं आता। तो चलिए ना, अब बैक टू बैक दो गाने सुनते हैं, दो हिट गाने। आखिर प्रोग्राम जो है नॉन स्टॉप अंताक्षरी का।

इस सॉन्ग के साथ नॉन स्टॉप अंताक्षरी में आज बस इतना ही। लौटूंगी कुछ ही पलों में आपका और हमारा फेवरेट प्रोग्राम रांची मेलोडीज के साथ।

जी हाँ, वक्त है प्रोग्राम रांची मेलोडीज का। इस खूबसूरत से सफर पे चलने को तैयार है ना विनीता के साथ? जी हाँ, खूबसूरत सफर यानी कि खूबसूरत गानों का सफर। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। महक उठते हैं मेरे लफ्ज तुम्हें ख्वाबों में सोचकर, दिल के एहसासों में डूबी हुई एक नज्म हो तुम।

हरिहरन और केसी चित्रा की आवाज़ में गाए इस गाने के बाद अब उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में एक और रोमांटिक सॉन्ग। नहीं होते हो फिर भी होते हो तुम, ना जाने क्यों हर वक्त महसूस होते हो तुम।

और आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फरी फिल्म का गीत। जहां कहीं भी इश्क की बात हो, ऐसा लगे मानो जैसे तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो।

राहत सी मिलती है चंद लफ्ज लिखने के बाद। कोई तो है जो इन बेजुबान अल्फाजों को समझता है, और तभी तो ये एहसास होता है ना कि कोई तो है जो सिर्फ मेरे लिए बना है।

दोस्तों कहते हैं कुछ साथ यकीन दिलाते हैं ना कि प्यार वाकई खूबसूरत होता है, है ना। तो इन बातों के साथ इस खूबसूरत सफर में आज बस इतना ही। तो विनीता को दे इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोडरमा के झुमरी तिलैया में एक महिला ने ई रिक्शा में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। निजी क्लिनिक जाते समय महिला को प्रसव पीड़ा हुई। मौके पर मौजूद एएनएम प्रियंका कुमारी ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित प्रसव कराया। एम्बुलेंस से तीनों को सदर अस्पताल भेजा गया। माँ और दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है। रांची में 6 और 7 जून को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सदर SDO कुमार रजत ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। चक्रधरपुर मंडल के DRM तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांडरा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। DRM ने बताया कि कांडरा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, SP अमित रेणु और CRPF DIG विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
2: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। बढ़ते कदम कार्यक्रम हमेशा एक उद्देश्य के साथ आपके बीच होता है। उद्देश्य होता है कि हम सरकार के उन तमाम

0: योजनाओं की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं, जिनका लाभ लेकर हम और आप अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। और सरकार का भी प्रयास यही होता है कि वो अपने महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से समाज के एक अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए, वैसे कमजोर वर्ग को वो साथ में लाए जिन्हें विकास की जरूरत है, जिन्हें योजनाओं की जरूरत है, उन लोगों को आगे बढ़ाए। आज कार्यक्रम में हम एक प्रेरक कहानी को हमने शामिल किया है। प्रेरक इसलिए कि हमें ये समझना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि जब जिंदगी में हम और आप एक बदलाव सोच लेंगे तो बदलाव तभी संभव होगा। एक सकारात्मक बदलाव, एक ऐसी पहचान जो आप अपनी मेहनत से बनाते हैं और उसमें योगदान सरकार के योजनाओं का होता है। आज कार्यक्रम में हम सिल्ली से मीरा देवी को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। मीरा देवी जिन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लिया, आज भी उन्हें वो लाभ मिल रहा है, लेकिन जो पैसे उन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से मिले उसका उन्होंने अपने जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल किया। उन पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई कहानी की तलाश की। उन पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता अख्तियार किया और आज सिल्ली की रहने वाली मीरा देवी उन्हीं पैसों के माध्यम से आज स्वावलंबी हैं। घर पर ही रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है, अपने बच्चों को मजबूत बनाने का काम किया है। हम मीरा देवी को जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो सफर है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन तक का, ये यात्रा उन्होंने कैसे तय किया। मीरा देवी जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीरा जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जोहार सर,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: कितना अच्छा लगता है आज जब गाँव में लोग कहते हैं कि जब घर में बनना है तो मीरा देवी के जैसा बनो, वो जिस तरह से मेहनत करके बड़ी, गाँव वाले जब आपका उदाहरण देते हैं, लोगों को समझाते हैं, कितना अच्छा लगता है
1: सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुनने में भी लगता है सर।
0: आज उसी कहानी को हम लोग समझना चाहते हैं मीरा जी।
1: हाँ,
0: और किस तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेकर आपने अपनी जिंदगी को बदला, आज हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि वो भी इस बात को समझे कि कैसे हम सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो जब आपको मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा था उस वक्त आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी मीरा जी?
1: सर, मैया योजना जब नहीं मिल रहा था उस टाइम मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब था सर। जैसे कि हम उसमें इतना ही खराब था कि मेरा बाल बच्चा को हम ट्यूशन नहीं करा पाते थे, पढ़ा नहीं पाते थे। घर में भी कुछ ऐसे काम आता था कि उसमें हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते थे। जब मैया योजना आना शुरू हो गया तो फिर हम घर में बातचीत किए कि मैया योजना जो मिल रहा है हम लोग को, ये पैसा हम लोग बचत करें। उसके बाद फिर बचत करने लगे तो फिर वो पैसा हम लोग जमा किए और जमा करके मतलब 2-4 महीना रखे, नहीं निकाले वो पैसा बैंक अकाउंट से, और एक ही बार निकाले। निकालने के बाद सबसे पहले हम घर में बात किए कि पहले तो हम लोग बतख पालन करेंगे। ठीक है, बोले बतख पालन करेंगे। बतख पालन जब करने लगे तो फिर बतख में हम लोग का अंडा आने लगा। अंडा फिर हम लोग बेचे, अंडा बेच के कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। वो पैसा से फिर हम लोग मुर्गी पालन करने लगे। मुर्गी पालन जब करने लगे तो फिर मुर्गी पालन में भी उसमें भी अंडा बेचते थे, मुर्गा बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, उसमें भी कुछ पैसा हम लोग इकट्ठा किए। उसके बाद फिर मतलब फिर और पैसा आने लगा 2500 रुपया करके, तो फिर वो पैसा भी निकाले। और जो बतख पालन में जो अंडा बेचे थे, मुर्गी में भी जो मुर्गी उर्गी बेचे थे, मुर्गी का अंडा भी बेचे थे, वो पैसा भी हम इकट्ठा करके रखे थे। और उसके बाद फिर हम बकरी पालन करेंगे बोल के बोले, फिर हम बकरी पालन करने शुरू किए। बकरी पालन करने लगे, उसके बाद बकरी को तो नहीं बेचते थे, वो बकरी को मतलब बड़ा करके खस्सी करके मीट का हिसाब से बेचते हैं, उसमें ज्यादा हम लोग का इनकम आता है।
0: पहले तो आप अब थोड़ा एक एक करके हमें आराम से समझाएं। एक तो बहुत बड़ी बात है कि आपने ये सोचा कि क्यों नहीं पैसा सेव किया जाए। शुरुआत कब हुई, कब से आपको मैया सम्मान का पैसा आना शुरू हुआ?
1: सर, पहला तो सबसे पहले मैया योजना जुलाई महीना 2024 से मिलना है, तो सबसे पहले तो 1000 रुपया करके मिल रहा था। 4 महीना 1000 करके मिला, उसके बाद फिर 2500 रुपया करके मिलने लगा।
0: तो आप वो पैसा निकालती नहीं थी?
1: नहीं सर, हम नहीं निकालते थे पैसा को, इकट्ठा किए। उसके बाद फिर हम सोचे कि कुछ मतलब ये बिजनेस करेंगे, उसमें से मेरा पैसा का आय होगा, वो पैसा फिर हम बचत करने लगे।
0: यानी पहले आपको 1000 रुपया जो 3-4 महीने मिले, उसके बाद फिर से 2500 रुपया हो गए। तो
1: हाँ सर,
0: पहली बार

0: आपने कितने बत्तख लिए?
1: पहली बार हम 100 बत्तख लिए थे।
0: 100 बत्तख आपने लिया?
1: हाँ सर,
0: बताए थोड़ा कैसे फिर घर पे मेहनत शुरू हुआ, घर में सपोर्ट लोगों का कैसा रहा?
1: सर मेरा घर में तो हम बोले कि हम जब 1,000 रुपया करके जब मिला तो बोले कि हम ये पैसा हम नहीं निकालेंगे, इसमें हम कुछ करेंगे। तो बोले कि घर वाला भी सपोर्ट किए हमको कि ठीक है मत निकालो वो वाला पैसा जो मिल रहा है, हेमंत दादा दे रहे हैं। तो फिर हम नहीं निकाले वो पैसा। जब जमा हुआ 4,000 रुपया तो फिर एक दिन जाके हम निकाले। उसके बाद निकालने के बाद फिर हम बतख का चूजा, छोटा छोटा जो मिलता है वो चूजा हम खरीदे खरीदे। उसके बाद फिर हम घर में रख के उन लोग को 2 महीना उन लोग का खान पान मतलब दिए, उनको बड़ा किए। उसके बाद फिर मेरा अंडा देना शुरू की। अंडा देना जब शुरू की उसके बाद वो अंडा हम सेलिंग करने लगे, अंडा में भी मेरा पैसा आने लगा।
0: तो बत्तख तैयार करने में कितने दिन लग जाते हैं मेरा जी?
1: सर मेरा वो 2 महीना लग गया, 2 महीना में पूरा तैयार हो गया। उसके बाद फिर अंडा देने लगा, अंडा देने लगा तो फिर हम अंडा को बेचने लगे। अंडा बेचे, अंडा बेचने के बाद फिर वो पैसा भी आया। उसके बाद फिर 2,500 रुपया करके मिलने लगा। तो वो पैसा भी हम नहीं निकालते थे, 2 महीना 3 महीना जमा करते थे उसके बाद वो पैसा निकालते थे। निकालने के बाद फिर हम बड़ा प्लानिंग सोचे, मुर्गी पालन किए। मुर्गी पालन के बाद फिर उसमें मुर्गा बड़ा बड़ा जो मुर्गा होता है वो मुर्गा सब भी बेचते थे। हाँ
0: तो अब बत्तख भी था आपके पास में और मुर्गा भी था आपके पास में,
1: सर,
0: तो किस तरीके से, क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, आपको घर भी संभालना था
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: अब ये सारी जिम्मेदारी भी संभालनी थी, कैसे
1: हाँ
0: कैसे अब चीजों को मैनेज करते जा रही थी?
1: सर, ये मेरा घर में सपोर्ट मिलता था सर। जैसे कि हम सुबह में एक बार बतख को खिला देते थे, खिलाने के बाद वो तालाब चल जाता था। फिर उसके बाद मुर्गी ये सब तो खुला रहता है, उसके बाद उन लोग को तो शाम को देखना रहता है, बस घुसाना रहता है। बतख को एक बार दोपहर में भी खिलाते हैं, दोपहर में खिलाने के बाद फिर तालाब पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर ये शाम को लाते हैं, फिर उसका घेरावन बनाया हुआ है उसमें घुसा के रख देते हैं।
0: तो इन दोनों के बाद तीसरा स्टेप जो हुआ वो आपने ये डिसाइड किया कि अब आप बकरी पालन भी करेंगी।
1: हाँ सर, जब हम वही 2,500 रुपया आने लगा तो फिर वो पैसा हम नहीं निकाले, नहीं निकाले वो पैसा हम 3-4 महीना से जमा किए। उसके बाद वो पैसा हम एक ही बार निकाले। निकालने के बाद हम बकरी पालन जो शुरू किए थे वो हम 5 बकरी से शुरू किए थे सर, 5 बकरी से शुरू किए थे। उसमें से हम खरीदे थे 4 गो बकरी और ये एक बकरा। 4 बकरी जब खरीदे वो बकरी से अभी मेरा बढ़ गया है,
0: जी
1: 10 मेमना है। 4 बकरी का अभी 10 मेमना है मेरा और ये एक बकरा है। उसमें मेमना और ये दोनों है, मतलब बकरी और बकरा। से पहले हम 5 बकरी से बकरी पालन स्टार्टिंग किए हैं। सुबह में सबसे पहले हम सुबह में उठ के घर में अपना नाश्ता उस्ता बना के बच्चा को स्कूल भेज के हम जंगल जाते हैं। जंगल से पत्ता लेके आते हैं बकरी के लिए, फिर पत्ता खिलाते हैं। या तो फिर कुछ दिन नहीं जाते हैं, कोई कोई दिन जंगल, तो फिर उनको चराने ले जाते हैं। चरा के फिर लाते हैं, लाके घर में बांध देते हैं।
0: तो अभी वर्तमान में अब कुल कितने आपके पास बत्तख हैं, मुर्गा मुर्गी कितने हैं और बकरी कितने हैं मीरा जी?
1: सर मेरे पास तो अभी बत्तख देखिएगा तो वो तो कुछ बत्तख बेच भी दिए हैं, अभी देखा जाए तो ही 20 से 30 होगा बत्तख। और मुर्गी तो होगा, मुर्गी ज्यादा ही है, 20-30 से ज्यादा ही है।
0: और बकरी भी 15-20 से ज्यादा है।
1: बकरी भी 15-20 से ज्यादा ही है, 20 से तो ऊपरे होगा सर अभी।
0: क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो कि आप इतना मेहनत कर रही हैं, अपने घर संभालने के साथ साथ आपने आपने इतनी चीजों को बढ़ाया। मीरा जी, आज बहुत
1: हाँ
0: सारी
1: सर,
0: महिला भी आपको सुन रही हैं,
1: हाँ
0: क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग आज घर पे रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं?
1: सर, हम यही कहना चाहते हैं जो मैया योजना का जो पैसा मिल रहा है वो पैसा बर्बादी नो करे, वो पैसा से कुछ उन लोग मतलब करे। जैसे कि अभी हम जैसे कर रहे हैं, बतख पालन करे या मुर्गी पालन करे या बकरी पालन करे, ताकि वो पैसा ऐसे ही फिजूल खर्चा ना करे। या तो फिर जैसे कि मेरे कहना है कि कोई कोई पैसा को ऐसे ही बर्बादी करती है, वो बर्बादी ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगाइए वो पैसा। या तो फिर कुछ में लगाइए।
0: यानी आपको एक सकारात्मक सोच

0: है,
1: हाँ सर,
0: कितना बदलाव महसूस करती हैं? क्योंकि आप पहले बता रहे हैं कि पहले दिक्कत होती थी, सिर्फ पति का कमाई रहता था और उस कमाई से घर ही चलाना मुश्किल होता था, तो बच्चों को पढ़ाने वगैरह में दिक्कत होती थी। कितना
1: हाँ सर,
0: अभी कितना एक बदलाव आ गया?
1: सर अभी मेरा बहुत बदलाव आया, क्योंकि अभी हम अपना बच्चा को पढ़ाई के लिए या तो ट्यूशन के लिए या तो कुछ खरीदने के लिए हमको अपने पति से हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बस हम खुद से निकाल के अपने बच्चों को देते हैं। उसमें हमको खुशी लग रहा है कि ये मैया योजना जो मिल रहा है इसमें हमको पूरा सपोर्टिंग मिल रहा है।
0: अच्छा लगता है कि आज आज जब आप आपके बच्चे कुछ डिमांड करते हैं या आप ही को कुछ मन करता है और आप अपने खुद के पैसे से करती हैं, तब तब मन में खुशी आती है कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है।
1: सर हाँ, हमको बहुत खुशी एहसास आ रहा है, उसमें हम बहुत खुश हैं।
0: थोड़ा बताएं आपके घर में कौन कौन है मीरा जी, कितने बच्चे आपके हैं?
1: सर मेरा घर में मेरा दो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, और हम और मेरा हस्बैंड और मेरा सास ससुर।
0: अभी बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आपके?
1: सर मेरे बच्चे अभी, एक मेरी बेटी जो है वो 10th में पढ़ाई कर रही है, और मेरा बेटा जो है वो 6th में है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है 6th में। और मेरी बेटी को हम डाले हैं ये कस्तूरबा में, और मेरा बेटा को इंडालको में।
0: क्या बात है। तो मीरा जी, बहुत लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक होता है ना कि आप घर बैठे हैं, आप कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यानी पहले से आप नकारात्मक हो जाते हैं, है ना? तो आपको क्या
1: हाँ
0: लगता
1: सर,
0: है किस तरह की सोच हम सबको अपने जीवन में रखनी चाहिए?
1: सर हम लोगों को तो सच मतलब अभी इसमें जैसे कि हम लोग सकारात्मक रखना चाहिए, हम लोग खुश हैं सर। जैसे कि मैया योजना जो मिल रहा है इसमें हम सब कुछ अभी कर पा रहे हैं। उसमें देखिए, पहले तो बस मेरा पति का कमाई था, मतलब वो घर भी चलाते थे, बच्चों को भी देते थे, उसमें हम नहीं कर पाते थे। तो जब हम लोग को मिलने लगा मैया योजना, इसमें हम लोग को आसान हुआ, जैसे कि मेरा पति का कमाई से घर चला लेते हैं, जो मैया योजना मिलता है इसमें हम बच्चा को भी हेल्पिंग कर रहे हैं, घर में भी हेल्पिंग कर रहे हैं।
0: आज क्या क्या बदलाव आ गया आपके घर की ही अगर हम बात करें, आज आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गया?
1: सर मेरा जीवन में बहुत सारा चीज बदलाव आया, क्योंकि पहले तो देखिए, पहले सर बस हम घर में गृहिणी मतलब बस खाना उना बनाते थे और घरे में रहते थे, घरे में रहते थे। और अभी तो देखिए सर, जैसे कि घर में हम इतना कुछ करके भी, जैसे कि बतख पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इतना सारा चीज करके भी हम घर से बाहर जाके मतलब किसी से बात करने में नहीं हिचकिचाते हैं। कुछ भी चीज रहे, चाहे ना ब्लॉक में जाके या तो कहीं भी, किसी के सामने अपना सिर झुका के नहीं रहते हैं, अपना मतलब ऊंचा बोली से सब कुछ हम लोग कर लेते हैं।
0: यानी अब हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रही हैं,
1: हाँ
0: अब झारखंड की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
1: हाँ सर, जैसे कि अभी हम लोग का नारी शक्ति का एक पहचान बनाइए।
0: आप क्या मानती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इन लोगों को तो मैया सम्मान ऐसे ही मिल जा रहा है, आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं?
1: सर हम यही कहना चाहते हैं, आज ये देखिए, आज ये हम लोग का एक पहचान बन गया है सर। आजकल देखिए इसमें कितनी महिलाएं मेरे जैसे बदल चुकी है। जैसे कि अभी हम लोग का ये हो रहा है कि ट्यूशन फीस दे रही है बच्चों के लिए, पढ़ाई बुक उक खरीदने नहीं सक रही थी, बुक उक खरीद दे रही है बच्चों को, या
0: एक
1: फिर
0: ढाई ढाई हजार का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब छोटी छोटी चीजें करने के लिए अब आपको कहीं जाना नहीं है, आपके बच्चों का रिक्वायरमेंट है, कॉपी है, पेन है, ड्रेस है, सब आप लोग कर पा रही हैं।
1: सर कर ले रहे हैं सर।
0: कितना बदल रहा है आपके गांव में, तो और भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, कितना एक बदलाव देख रहे हैं आप अपने गाँव में इस चीज से?
1: सर बहुत बदलाव देखे, जैसे कि पहले पहले बच्चा लोग ऐसे ही मतलब खेल चलता था, खेलता था, मतलब खेल में ज्यादा ही ध्यान देता था। आजकल जब से जब मिलने लगा तो हम लोग जैसे कि अपनी मम्मी पापा तो उतना बच्चों लोग से टाइम नहीं दे पाते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं कि जाओ बेटा ट्यूशन, या बेटी हो हम लोग ट्यूशन भेजते हैं उसके लिए। पहले तो हम लोग के पास पैसा ही नहीं था जो हम ट्यूशन भेज नहीं पाते थे। और अभी जब से आने लगा तो हम लोग का मन में जो एक शक्ति रहता है वो
0: बढ़ गया।
1: बढ़ गया, उसमें हम लोग का कुछ बहुत सारा मतलब अभी आसानी हो रहा है।
0: एक बात बताएं, जैसे हम सिल्ली की ही बात करेंगे, सिल्ली में एक उदाहरण आपका हो गया, हम मीरा जी से मिले, मीरा जी से हमने बातें की, सिल्ली में और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको आपने देखा कि जब से उनको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ तो उनकी जिंदगी में भी एक बदलाव आ गया, पहले से उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया।
1: हाँ सर, बहुत महिलाएं का मतलब ये में बदलाव आ गया है। अभी जितना कोई को अभी मैया योजना मिल रहा है, बहुत बदलाव आया है सर।
0: अब गांव में बात होती है, महिलाएं मिलती हैं, एक एक पहले का सिस्टम कि जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और अब आज की एक महिलाएं,
1: पहले की महिलाएं सर, पहले की महिलाएं बस चूल्हा चौखट में ही रहती थी, घर में खाना उना बना के बस घरे में रहती थी, काहे नहीं निकल पाती थी। क्योंकि पहले देखिए सर, अपना हाथ में जब पैसा रहेगा नहीं तो फिर कैसे घर से निकलेगी। ये क्या बोलते हैं, पहले देखिए जैसे कि वही खाना उना बना के घरे में बस रहती थी, और अभी अभी हम लोग अपना चौखट से, अपना दरवाजा से, अपना पांव निकाल के सब कुछ काम कर लेते हैं अपने महिलाएं।
0: आगे क्या सोच रही हैं मीरा जी? आज आपको कार्यक्रम में शामिल करने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि समाज को एक मैसेज पहुंचाएं कि अगर आप मेहनत करेंगे और सरकारी योजना का लाभ लेंगे तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान नहीं बल्कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे समूह का काम होता है, JSLPS का काम होता है, उससे महिलाएं जुड़ती हैं, उसमें मेहनत करती हैं। तो आप तो ऐसी बहुत सारी चीजों को देख रही होंगी।
1: हाँ सर, देख रहे हैं, JSLPS से भी हम जुड़े हैं सर, समूह में भी हम जुड़े हैं सर।
0: वाह बहुत अच्छा, क्या जिम्मेवारी उसमें आप निभाती है।
1: सर समूह में जुड़े हैं, समूह में जैसे कि 10 दीदी बन मिल के हम लोग एक समूह बनाए हैं। समूह में भी ये सब हम लोग चर्चा करते हैं कि मैया सम्मान जो राशि मिल रहा है वो राशि से आप लोग कुछ काम कीजिए, फालतू पैसा बर्बाद न करें, ऐसे चर्चा करते हैं। तो उन लोग भी बोलती है कि हाँ, मैया सम्मान राशि जो मिल रहा है उस पैसा से उन लोग भी बोलने लगती है कि हम भी मुर्गी पालन करेंगे, हम भी बतख पालन करेंगे। कोई बोलती है हम मेरा बच्चा के लिए स्कूल फीस दिए।
0: यानी हर कोई किसी ना किसी जिम्मेदारी को निभा रही है उस पैसे से।
1: हाँ सर,
0: आपने समूह की बात बताई कि 10 महिलाएं मिलकर आप लोगों ने समूह बनाया है,
1: समूह बनाए हैं।
0: तो उसमें भी बहुत सारे काम होते होंगे। उसमें
1: हाँ
0: कैसे
1: सर,
0: आप लोग
1: समूह
0: क्या काम करती हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है, क्या क्या चीजें आप उसमें करती हैं?
1: सर समूह में हम सचिव हैं, समूह में मेरा जिम्मेवारी है। जैसे कि समूह की सदस्य दीदी अगर किसी का पैसा का जरूरत है, जैसे कि वो बोलेगी कि हमको पैसा का जरूरत है, अगर उसका घर में कोई बीमार पड़ गया तो वो बोलेगी, वो दीदी बोलेगी कि हमको पैसा की जरूरत है, तो हम लोग पैसा की जरूरत है बोलती है तो 10 दीदी मिल के मतलब लिखते हैं बैठक रजिस्टर में, और लिख के वो दीदी को हम लोग बैंक जाते हैं लेके, और बैंक से पैसा निकाल के उसको ऋण का इसे हम लोग पैसा देते हैं उसको भी।
0: अच्छा
1: उस पैसा से वो मतलब अपना घर में कुछ भी चीज, अगर जैसे कि कोई बीमार है तो वो उस पैसा से वो इलाज करती है।
0: यानी मुश्किल वक्त में जब समूह से जितनी
1: साथ
0: मैं जी,
1: मुश्किल ये में मतलब साथ देते हैं समूह से भी।
0: तो समूह के माध्यम से तो भी रोजगार के बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज आज कोई
1: हाँ
0: बरी
1: सर,
0: बनाना सीख रहा है, कोई पापड़ बनाना सीख रहा है, कोई अचार बनाना सीख रहा है।
1: हाँ सर,
0: कैसे लोगों को जोड़ती है, महिलाएं कैसे जोड़ती हैं? और क्या आपके सिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पे लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से महिलाएं बदल रही हैं समूह के माध्यम से?
1: सर समूह का माध्यम से हम लोग के यहाँ सब कुछ का अभी रूट सेट जो है, अभी आपको आप सुने होंगे कस्तूरबा स्कूल के सामने है रूट सेट, वहाँ सब चीज का प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कि कोई दीदी बोलती है कि हम सिलाई सीखेंगे, तो वो दीदी को हम लोग वहाँ ले जाते हैं रूट सेट में, और रूट सेट में उसका नामांकन करा देते हैं, और उसमें 30 दीदी हो जाती है तो फिर एक बेंच शुरू हो जाता है, 30 दीदी मिलके एक बेंच शुरू हो जाता है। कोई बोलती है कि हम पार्लर का काम करेंगे तो उसको भी हम लोग वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं।
0: यानी कि बहुत सारी विधाएं वहां बताई जा रही हैं, चाहे पार्लर का काम हो, चाहे सिलाई मशीन का काम हो, या अन्य चीजों का काम
1: या
0: हो।
1: कोई पापड़ बनाना चाहती है, या कोई साबुन सरफ बनाना चाहती है, कुछ भी चीज का, तो वहां तक पहुंचाने का हम लोग समूह से काम करते हैं।
0: आज क्या क्या चीजें महिलाएं बना रही हैं, अगर सिल्ली की हम बात करें, सिल्ली में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, समूह की महिलाएं मिलकर क्या क्या बना रही हैं मीरा जी?
1: अभी तो सबसे पहले अभी सिलाई मतलब अधिकतर देखा जाए तो सिलाई ही कर रही है, सिलाई के बाद अभी ब्यूटी मतलब पार्लर का भी काम कर रही है, और एक चीज है इसमें खेती बाड़ी, खेती बाड़ी में जैसे कि बागवानी वाला का, कृषि का भी वहाँ प्रशिक्षण लिया जाता है। कृषि का वहाँ प्रशिक्षण 10 दिवसीय होता है, 10 दिन देने के बाद आके मतलब घर में अपना बाड़ी में कृषि का काम भी करती है। सब्जी उब्जी लगाती है।
0: यानी आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मीरा देवी सिल्ली से हमारे साथ हैं, और आप देखें कि एक महिला किस तरीके से, एक ग्रामीण महिला

0: गांव की महिला जो आज अपने जिंदगी में इतना एक बदलाव लाई है, वो समूह से भी जुड़ी है JSLPS के माध्यम से, उसने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे को अपनी जिंदगी बदलने में लगा दिया। मीरा जी, एक वो कहता है ना
1: हाँ
0: कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
1: हाँ
0: बहुत
1: सर,
0: लोगों को लगता है कि क्या हो जाएगा 2,500 रुपया से, लेकिन आपने तो 2,500 2,500 जमा करके आज तो आपने अपनी जिंदगी ही बदल ली।
1: हाँ सर, हम अपना जिंदगी बदल लिए हैं सर JSLPS में, समूह में भी जुड़ के, जैसे कि हम अभी बोल दे रहे हैं। फिर और एक चीज, JSLPS में जुड़ के हम एक ये पशु सखी का भी कार्य कार्यरत है। पशु सखी का कार्यरत में हम क्या काम करते हैं उसमें बता दे रहे हैं। जैसे कि बकरी को दवा खिलाते हैं, या बकरी का इलाज पूरा करते हैं, बकरी का, मुर्गी का, या फिर बतख का, बकरी को वैक्सीन भी हम लोग खुद से डाल लेते हैं सर।
0: अच्छा, पशु सखी के तौर पे भी आप उसमें काम कर रही हैं, मतलब उसमें आपकी
1: काम कर
0: जिम्मेदारी
1: रहे
0: है कि
1: हैं,
0: लोगों के उन जानवरों को देखना है, उनका इलाज करना है,
1: उनका इलाज करते हैं। हाँ
0: और ये जो दवाइयां आती हैं वो आप लोगों को दी जाती हैं,
1: सर, वे दवाई हम लोग खरीदते हैं,
0: ठीक है।
1: खरीद के लाते हैं, वो फिर हम लोग देते हैं किसान को। जैसे कि मेरा समूह में 10 दीदी है, 10 दीदी अगर वो बकरी पालन कर रही है, तो उसका घर हम जाएंगे, उसको डॉक्टर नहीं बुलाना पड़ेगा, हमको कॉल कर देगी कि दीदी आइए मेरा घर में आज वैक्सीन डाल दीजिए। तो फिर हम पहुंच जाएंगे वैक्सीन लेके, तो फिर उनका बकरी को हम दवा देंगे, वैक्सीन देंगे, जो भी होगा उसका इलाज हम खुद से कर लेते हैं।
0: वाह, तब तो आज मीरा जी बहुत सारा काम एक साथ कर रही हैं,
1: हाँ सर,
0: कितना अच्छा लगता है मीरा जी। गांव में लोग आपके बारे में बात करते हैं, उदाहरण देते हैं, क्या बोलते हैं?
1: बहुत अच्छा बोलते हैं सर कि ऐसे ही सबको करना चाहिए मेहनत।
0: आप ये बताएं मीरा जी, कभी आपको मौका मिला कि आप शहर आई, शहर में लोगों से मिली, शहर में लोग आपसे पूछे, अरे मीरा जी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, या लोगों ने आपके सामने बोला कि देखो ये मीरा जी हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी अपना ऐसे मेहनत करके बदला, ऐसा मौका कब आपके लाइफ में आया?
1: सर मेरा लाइफ में आया है वैसा मौका भी, जैसे कि हम लोग को JSLPS से भेजा जाता था सर प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण में हम लोग 5 दिवसीय या तो फिर 3 दिवसीय के लिए हम लोग अनगड़ा भी गए हैं, रांची भी गए हैं, वहाँ भी हम लोग का बातचीत हुआ है कि JSLPS में ये होगा कि JSLPS में जैसे कि रह के हम लोग इतना आगे बढ़े, और ये JSLPS से हम लोग जो कार्यरत हैं अभी पशु का देख रेख जो कर रहे हैं, उसमें वहाँ बातचीत होता है कि चलिए आप लोग कैसे सीखे, मतलब आप एक गांव की रहने वाली हैं और इतना, मतलब क्या बोले उसको,
0: अपनी जिंदगी में
1: बदलाव
0: बदल
1: किए, बदलाव हुए इतना, तो स्टार्टिंग आप लोग कैसे कैसे किए। तो हम लोग पूरा सारा चीज बताते हैं शुरू से, कि सबसे पहले तो हम लोग ये घर से नहीं निकलते थे, ये समूह क्या चीज है ऐसे बोलते थे। तो फिर मतलब घर में बोले कि ये 10 दीदी मिलके एक समूह बनता है, तो घर में भी हम लोग पूछे तो बोले कि ठीक है बना लो। तो फिर गए हम लोग 10 दीदी बोल के एक समूह बनाए बैठ के, उसके बाद 10 दीदी में जो समूह बना, उस समूह से हम लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का चुनाव किए। चुनाव करने के बाद हम लोग अपना जैसे कि गाँव में से एक ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में हमको जैसे कि पशु सखी का रूप में चुनाव किया गया। चुनाव करने के बाद हमको वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया अनगढ़ा। अनगढ़ा गए, अनगढ़ा में 5 दिवसीय का हमको प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण में हम सब कुछ सीखे, मुर्गी को कैसे दवा देना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, बकरी को कैसे दवा खिलाना चाहिए, कैसे वैक्सीन डालते हैं, उसका बद्धाकरण कैसे करते हैं, ये सब का हम लोग का प्रशिक्षण मिला। फिर वो प्रशिक्षण हम लोग अच्छी तरह से सीखे, और सीख के आके हम लोग गाँव में जितने जितने दीदी लोग है सबका घर घर जाके हम लोग खुद से इलाज करते हैं।
0: इसका मतलब मीरा जी, हम आज ये कह सकते हैं मीरा जी कि आज झारखंड सरकार में महिलाओं के लिए या गांव में ग्रामीण लोगों के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं कि लोग अगर उसका लाभ ले तो वो अपने आप को बदल सकते हैं।
1: हाँ सर, इसका योजना अगर सबको मिले और सबको लाभ ले तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे।
0: जरूरी है जागरूक रहने का, नहीं
1: हाँ हाँ सर, जागरूक
0: आ,
1: रहेंगे,
0: जागरूक रहना जरूरी है ताकि आप इसका लाभ ले सके।
1: मतलब लाभ मेरा तक पहुंच पाए।
0: मीरा जी, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी कहानी बताई, आपने कैसे अपनी जिंदगी बदली आपने वो बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को जितने भी लोग सुन रहे होंगे वे उन्हें भी खुशी मिली होगी और वो भी आपसे प्रेरणा लेके अपनी जिंदगी में एक बदलाव जरूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी हमसे जुड़ने के
1: धन्यवाद।
0: लिए और लोगों से इतनी बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमने एक स्वावलंबी बनने की कहानी को जोड़ा। आज

0: हमने उस यात्रा को शामिल किया कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर हम अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम सकारात्मक सोचकर बेहतर कर सकते हैं। मीरा देवी सिल्ली की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लाभ उन्हें मिला, उन पैसों को उन्होंने जमा किया, बत्तख पालन किया, फिर मुर्गी पालन किया, उसके बाद बकरी पालन, और जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव। साथ ही JSLPS से जुड़ी, उनमें एक आत्मविश्वास जगा, समूह में जुड़कर बहुत सारे काम कर रही है, पशु सखी भी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं, उन रास्तों में चलने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं आपका इंतजार करती हैं, लेकिन आप उन योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़े। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभुशरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करा दें। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सांझ सरगम। पांच बजे का वक्त है प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक भाई बहनों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। 6 का वक्त है प्रादेशिक मुख्य समाचारों का और 6:02 पर आप सुनेंगे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती बारी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 का वक्त है प्रादेशिक समाचार का। सात पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आठ बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए इस पर आधारित। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 न्यू

10 बजे सुनेंगे नाटक, 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज कलाकार होंगे वीजी जोग। ग्यारह बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सांझ सरगम। अब शुरू होता है फिल्मी गीतों का मधुर सफर। दिन भर की भागदौड़ के बाद इस सुहानी शाम में कुछ ऐसे गीत आप सुनेंगे जो दिल को सुकून दे, कुछ यादों को ताजा कर दे और होठों पर मुस्कान बिखेर दे।

0: वाह क्या बात है दोस्तों, पता है ऐसे गीतों की खूबसूरती कभी कम नहीं होती। समय कितना भी बदल जाए, हम कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन इन गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं अगली प्रस्तुति।
1: प्रीत

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रांची, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। जैसे जैसे शाम अपने रंग बिखेर रही है, हमारी सरगम भी आगे बढ़ रही है। और दोस्तों कहते हैं ना, संगीत वह भाषा होती है जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं, सुर सीधे दिल से संवाद करते हैं।

दोस्तों कहते हैं कि फिल्म संगीत जो होता है वो मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन वो सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, रिश्तों और यादों का आईना भी होते हैं।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

0: उम्मीद है आपको सांस सरगम की यह संगीत यात्रा जरूर पसंद आई होगी। अब हमें दीजिए सांस सरगम में इजाजत।
1: टुडे
2: हाँ?

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में खान एवं भूतत्व विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने को कहा। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित एएनएम स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। पाकुड़ के पूर्व भाजपा विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का आज 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोपहर अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक है। विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्यभर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिमडेगा में मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। रैली में युवाओं ने शहर का भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण और सेहत के लिए साइकिल अपनाने का संदेश दिया। रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची के शिव कुमार रमन ने भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित एथलेटिक्स मीट मैनेजर कोर्स की परीक्षा पास कर राज्य का मान बढ़ाया है। पंजाब के पटियाला में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में देश भर के 21 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इसमें खेल प्रतियोगिताओं के आधुनिक और तकनीकी संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम यू वाणी।

0: हेलो दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त आद्या
1: और मैं हूं आपकी दोस्त निकिता।
0: हम करते हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने युवाणी कार्यक्रम में। आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, आज हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे और साथ ही सुनेंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत।
1: दोस्तों, आज 3 जून है और आज है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस। साइकिल की बात सुनते ही अक्सर लोग लंबी चौड़ी बातें शुरू कर देते हैं कि पॉल्यूशन कम करो, बाइक छोड़ दो, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की भाग दौड़ वाली लाइफ में हर जगह बाइक छोड़कर साइकिल से जाना पॉसिबल नहीं है। टाइम और डिस्टेंस दोनों मायने रखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बात बाइक या कार गैरेज में लॉक करने की नहीं है, बल्कि एक शुरुआत की है, एक हेल्दी चॉइस की है, जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी लाइफ में आसानी से फिट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हम अक्सर जिम जाने का प्लान बनाते हैं, महंगे वर्कआउट सेशंस ढूंढते हैं, जबकि फिटनेस का एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल ऑप्शन हमारे पास हमेशा से है।
0: दोस्तों, अगर हम रोज नहीं तो सिर्फ वीकेंड्स पर या अपनी सहूलियत के हिसाब से आधे घंटे के लिए भी साइकिलिंग करें तो यह हमारी फिटनेस और मेंटल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज बन सकती है।
1: और एक और प्रैक्टिकल तरीका है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स। हमारे घर के आसपास कई ऐसे काम होते हैं, जैसे किसी पास की दुकान से ग्रोसरी लाना या शाम को वॉक की जगह थोड़ी दूर साइकिल से चले जाना।
0: बिल्कुल, ये छोटे कामों के लिए जहां हम बिना सोचे बाइक या स्कूटी की चाबी उठा लेते हैं, वहां साइकिल बहुत ही इको फ्रेंडली और आसान चॉइस बन सकती है।
1: इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारा स्क्रीन टाइम कम होगा, हम थोड़ा एक्टिव होंगे, और दूसरा आजकल पेट्रोल के जो दाम हैं उसमें छोटी छोटी दूरी पर बाइक ना इस्तेमाल करके हम अपने बजट को भी थोड़ा सेविंग्स मोड पर डाल सकते हैं।
0: और दोस्तों, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आज का यूथ अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर है, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण वर्कआउट मिस हो जाता है। साइकिलिंग एक ऐसा जरिया है जिसे हम बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
1: सही कहा, एक एक्टिव और स्वस्थ युवा ही अपनी लाइफ में और अपने करियर में बेहतर फोकस कर पाता है। साइकिल चलाने से न सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि मेंटल फोकस भी इम्प्रूव होता है, और यह खुद को एक्टिव रखने का सबसे आसान और सीधा तरीका है।
0: तो दोस्तों, इस वर्ल्ड साइकिल दिवस पर कोई बहुत बड़ा या इम्पॉसिबल वादा खुद से नहीं करते, बस एक छोटा सा और प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं। हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन अपनी पसंद और वक्त के हिसाब से साइकिलिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर देखते हैं।
1: शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन यह आपकी हेल्थ के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। दोस्तों, बातें और भी करेंगे, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: दोस्तों, हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ खास यादें और घटनाएं छिपी होती हैं। कभी किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ तो कभी ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को बदल दिया। तो आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ था। आज ही के दिन यानी 3 जून 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिंदी को राजभाषा मानने का प्रस्ताव पारित किया गया।
2: साथ ही दोस्तों, 3 जून 1947 को अंतिम ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान

0: के विभाजन की माउंटबेटन योजना का ऐलान किया था, जिसने हमेशा के लिए देश का नक्शा बदल दिया।
1: 3 जून 1965 को जेमिनी 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड वाइट अंतरिक्ष में चलने वाले पहले अमेरिकी बने।
0: 3 जून 1867 को भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और समाज सुधारक हरिविलास शारदा का जन्म हुआ था, जिनके प्रयासों से बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बना।
1: मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि और देश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप का जन्म 3 जून 1901 को हुआ था।
0: आज ही के दिन यानी 3 जून 2006 को मोंटेनेग्रो ने सर्बिया के साथ अपने 88 साल पुराने संघ को समाप्त कर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया।
1: संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर लगातार एक बहुत हल्की रोशनी छोड़ता है, लेकिन वो इतनी धीमी होती है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। इसे ह्यूमन बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं।
0: दोस्तों, यह प्रकाश हमारी कोशिकाओं में होने वाले मेटाबॉलिज्म और फ्री रेडिकल्स के कारण निकलता है, जो दोपहर में सबसे तेज और रात में सबसे कम होती है, जिसे लोग ऑरा भी कहते हैं।
1: आज हमारे स्मार्टफोन में इतनी एडवांस कैमरे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1975 में कोडक के एक इंजीनियर स्टीवन सैसन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, तो उसका वजन लगभग 3.6 kg था।
0: और ट्विस्ट ये है दोस्तों कि उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करने में पूरे 23 सेकंड लगते थे।
1: स्मार्टफोन से 128 GB या 256 GB स्टोरेज हम अक्सर ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा दिमाग लगभग 2.5 PB यानी कि 2.5 million GB डेटा स्टोर कर सकता है।
0: साथ ही दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियां स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। माचिस की डिब्बी जितने साइज का एक बोन ब्लॉक लगभग 8,600 kg का वजन सह सकता है, जो कि कंक्रीट से भी 4 गुना ज्यादा मजबूत है।
1: हमारे शरीर के अंदर जो नसें यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, वो दिखने में बहुत बारीक हैं। लेकिन अगर एक एडल्ट इंसान की इन सभी नसों को बाहर निकालकर एक सीधी लाइन में जोड़ दिया जाए, तो उनकी लंबाई लगभग 1,00,000 किलोमीटर होगी।
0: हम सब कांच को एक ठोस यानी सॉलिड चीज मानते हैं, लेकिन साइंस की नज़र में कांच कोई परमानेंट सॉलिड नहीं है। इसे एक सुपर कूल लिक्विड माना जाता है। कांच के मॉलिक्यूल्स बहुत ही धीमी रफ्तार से नीचे की तरफ बहते हैं। अगर आप सैकड़ों साल पुरानी इमारतों की खिड़कियों को देखेंगे, तो वे अक्सर ऊपर से पतले और नीचे से थोड़े मोटे हो चुके होते हैं। दोस्तों, हमारी बातें तो आपसे और भी होंगी, पर उससे पहले ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स पर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायु सेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत करेगा।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह यानी कि कल्चरल वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 4 और 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की जाएगी।
0: वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 100% पोडियम फिनिश हासिल किया। टीम ने 2 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।
1: तमिलनाडु के पोलाची के एक जैविक किसान वल्लुवन को उनकी पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा आधिकारिक तौर पर सॉयल फार्मर हीरो के रूप से सम्मानित किया गया।
0: सरकार ने 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs को आधुनिक और उद्योग नेतृत्व वाले केंद्रों में बदलने के लिए PM सेतु परियोजना के तहत पहली रणनीतिक योजना को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA पूरी तरह से लागू हो गया है। इसके तहत ओमान में प्रवेश करने वाले 99.38% भारतीय उत्पादों को ड्यूटी फ्री यानी कि कर मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
0: मिजोरम में मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात साझा करना चाहूंगी।
1: आजकल हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए भी बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। बाजार जाना हो, स्कूल जाना हो या आसपास कोई छोटा काम हो, हम तुरंत वाहन निकाल लेते हैं।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ 15 मिनट की दूरी हम साइकिल से तय करें तो इससे हमें और हमारे पर्यावरण को कितना फायदा हो सकता है?
1: दोस्तों, साइकिल चलाना सिर्फ एक साधारण सफर नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और बेहतर जीवन की ओर एक कदम है। साइकिल चलाने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, यह एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है। रोज थोड़ी देर साइकिल चलाने से शरीर फिट रहता है, मोटापा कम होता है और मन भी ताजा महसूस करता है।
0: आजकल लोग घंटों मोबाइल और स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, जिससे शरीर में आलस और थकान बढ़ने लगती है। ऐसे में साइकिल चलाना हमें ऊर्जा और ताजगी देता है। सुबह या शाम थोड़ी देर साइकिल चलाने से मन भी खुश रहता है और तनाव भी कम होता है।
1: दोस्तों, आज पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने की बात कर रही है, ऐसे में छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं और साइकिल चलाना उन्हीं अच्छी आदतों में से एक है।
0: रोज 15 मिनट की दूरी साइकिल से तय करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, इस वर्ल्ड साइकिल दिवस पर कोई बहुत बड़ा या इम्पॉसिबल वादा खुद से नहीं करते, बस एक छोटा सा और प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं। हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन अपनी पसंद और वक्त के हिसाब से साइकिलिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर देखते हैं,
1: क्योंकि दोस्तों, छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव लाती है। साइकिल सिर्फ सफर नहीं, स्वस्थ जीवन की पहचान है।

0: बिल्कुल आद्या, और साथ ही दोस्तों जैसे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं जिम जाने का प्लान बनाते हैं, तो इन महंगे वर्कआउट सेशंस को इग्नोर कर हम कोशिश करें साइकिल चलाने की, ताकि हम खुद के साथ खुद को फिट रख सकें। तो दोस्तों बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर अब वक्त हो चला है, तो दीजिए आपकी दोस्त निकिता
1: और आत्या,
0: को इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुतकर्ता थे गौरव पांडे। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात प्रस्तुत होगा श्रमिक भाई बहनों का कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार, श्रमिक लोक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी दोस्त दीपा और आज हमारे साथ है जया। जया आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार दीपा और तमाम श्रमिक साथियों को भी जया का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों हर दिन की तरह आज भी हम ढेर सारी जानकारियाँ लेकर उपस्थित हैं दीपा।
0: बिल्कुल जया, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में। आज 3 जून है और आज का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है।
1: हाँ दीपा, सन 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत की बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर भी जाना जाता है।
0: और साथियों इस ऐतिहासिक फैसले ने हमेशा के लिए भारत का नक्शा बदल दिया और ब्रिटिश भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। यह योजना बढ़ते तनाव और स्वतंत्रता की तीव्र मांग को देखकर तैयार की गई।
1: जी हाँ, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं और जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलकर बातचीत करके यह प्लान को तैयार किया था दीपा।
0: माउंटबेटन प्लान के मुताबिक भारत को हिस्सों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनना था और पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान सभा का गठन किया जाना था।
1: इसी प्लान में देसी रियासतों को छूट भी दी गई थी, वह चाहे तो भारत में रहे या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, फैसला उन पर छोड़ दिया गया था। इसी प्लान का सबसे अहम हिस्सा सेना का बंटवारा भी था और यह योजना के तहत लगभग 565 रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वे चाहे स्वतंत्र रहे या फिर भारत या पाकिस्तान में किसी भी एक में शामिल हो जाए।
0: इस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली।
1: बहुत खुशी की बात थी दीपा। और साथियों यह योजना ब्रिटिश शासन के अंत और सत्ता हस्तांतरण का अंतिम चरण थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता तो मिली लेकिन विभाजन की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी।
0: सच कहा जाए जया, जिस तरह विभाजन की भारी कीमत पर हम सभी को चुकानी पड़ी ना, उस तरह से अगर हम पर्यावरण के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले भविष्य में हम सबको इसके लिए भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चुकानी पड़ेगी क्या, इसके असर हम आज भी देख सकते हैं। आज भी कुछ ऐसी हमारे सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जो पर्यावरण से जुड़ी होती हैं, साथ में बहुत सी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जल प्रदूषण और इस तरह के जो समस्याएं हैं वो इन सब का कारण है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है दीपा। और दीपा मैं तुम्हारे सारा भी समझ रही हूँ कि तुम आज ये बताना भी चाह रही हो ना कि आज 3 जून को हम हर साल मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस और यह दिन साइकिल चलाने को सेहत, पर्यावरण और किफायती परिवहन के रूप में बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
0: हाँ जया, यह परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन है जो कार्बन उत्सर्जन कम करता है और महंगे पेट्रोल डीजल और ट्रैफिक जाम से बचने का भी सबसे उत्तम और सस्ता विकल्प है।
1: साथियों इसे सेहत की सवारी भी कहा जाता है। अगर आप सभी नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं ना तो संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है और कई गंभीर बीमारियां दूर भी रहती है।
0: हाँ जया, साइकिल चलाना एक बेहतरीन एरोबिक व्यायाम है जो दिल को स्वस्थ रखता है और संचार को बेहतर बनाता है। और इसके लिए लोग बहुत महंगे जिम जाते हैं और तरह तरह के जो महंगे व्यायाम से जुड़े मशीन है उनकी खरीदारी करते हैं, उन पर व्यायाम करते हैं। लेकिन इन सब से हटकर अगर घर में आपके पास एक साइकिल है तो वो बहुत अच्छा विकल्प है कि आप व्यायाम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
1: और जैसा कि कहा कि अगर आप आधा घंटा साइकिल पे चलाते हैं तो लगभग 200-300 कैलोरी को भी आप बर्न कर सकते हैं, जिससे मोटापा कम करने में मदद मिलेगी।
0: इसे चलाने से जांघों, कूल्हों और पेट की मांसपेशियों की अच्छी कसरत होती है, जोड़ों पर भारी वजन भी नहीं पड़ता। और एक बात है जया, साइकिल चलाने से शरीर में एंडोर्फिन खुशी का हार्मोन निकलता है जिससे मानसिक शांति और तनाव दूर होता है।
1: अगर मानसिक शांति और तनाव दूर होता तो बहुत बड़ी बात है, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। और दीपा पता है ना, इसलिए मैं अपने सभी साथियों को ये कहना चाहूंगी, अगर छोटे मोटे कामों के लिए घर से निकलते हैं ना, तो मोटर वाहन की जगह साइकिल का उपयोग करके आप पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस दोनों में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: और जया, अब हमें अपने साथियों के भी सेहत का ख्याल रखना है और खास करके उनके मानसिक सेहत का हमें ख्याल रखना है, और एक खूबसूरत सा गीत सुनना होगा, तो आइए।
1: तो चलिए भाई, हम देर नहीं करते हैं और दीपा अपने श्रमिक साथियों को एक खूबसूरत सा गीत सुनाकर उनकी थकान को दूर करते हैं।

0: तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत दीपा हमने अपने श्रमिक साथियों को सुनवाया, और सही में जिंदगी बहुत ही खूबसूरत सा और हमें इसे बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत है। तो हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते और एक बार फिर से सेहत की जानकारी देते हैं। तो इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, आप देख ही रही हैं, तेज धूप और बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, और ऐसे मौसम में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और सही जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है।
1: सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेशन की। गर्मी में पसीने के माध्यम से शरीर से पानी और जरूरी खनिज लवण बाहर निकल जाते हैं। यदि उनकी पूर्ति ना हो तो डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती है। इससे बचने के लिए पानी पीना जरूरी है।
0: बहुत सही बात आपने कहा कि पानी पीना बेहद जरूरी है, और एक व्यक्ति को दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और यह मात्रा उम्र, स्वास्थ्य और गतिविधियों के अनुसार बदल सकती है। प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल ना करें और समय समय पर पानी पीते रहें। केवल पानी ही नहीं, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, बेल का शरबत, सत्तू का घोल और ताजे फलों का रस शरीर को तरोताजा रखने के साथ पोषक तत्व भी प्रदान करता है। दीपा
1: बिल्कुल बहुत सही बात कही जया आपने कि पानी की जो मात्रा है वो उम्र और स्वास्थ्य और गतिविधियों के अनुसार बदल सकती है। तो अगर हम अपने श्रमिक साथियों की बात करें तो वो दिन भर खुले में काम करते हैं, तेज धूप हो रहती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, तरल पदार्थ जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करें, जिससे कि उनका शरीर डिहाइड्रेट होने से बचा रह सके।
0: और ये सत्तू का घोल तो अपने साथ हमेशा रख सकते हैं और पी सकते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। और जैसा कि ताजा हमने फलों का बात की, तो थोड़ा सा कटा हुआ फल तो बहुत लंबे टाइम तक
1: जैसे
0: नहीं खा
1: खीरा
0: सकता
1: है, वो रख सकते हैं, तरबूज है, तो ये सब खाया जा सकता है। पानी पीने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना भी जरूरी है। गर्मियों में सही खान पान भी जरूरी है, जो हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण भाग है।
0: और ऐसे मौसम में हल्का, ताजा, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, खीरा, ककड़ी, संतरा और मौसमी फल सब्जियों को अपने खाने में जरूर शामिल करें, और बहुत अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन का मतलब सेहत को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि बाहर की चीजों को तो आप बिल्कुल ना खाएं, या घर का ही बना हुआ ताजा खाना खाने की कोशिश करें।
1: गर्मी के मौसम में सुबह या शाम को ही बाहर निकले, अगर जरूरी ना हो तो दोपहर में बाहर कम निकले, और बाहर जाए तब छाता, टोपी या सूती कपड़े से सिर को ढक कर निकले। सूती कपड़े पहने
0: क्योंकि सूती कपड़े में ना आप पसीना को एब्जॉर्ब कर आसानी से कर लेते हैं, इसलिए हम सभी को गर्मी में सूती कपड़े जरूर पहनने चाहिए, और शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें।

0: रखने के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत ही जरूरी है। अच्छी नींद शरीर के थकान को कम करती है, साथ ही नियमित योग और हल्का व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा माना जाता है।
1: जिया, ये बातें तो सभी उम्र के लोगों के लिए है, पर बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है इस मौसम में। उन्हें डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक होता है, उन्हें तेज धूप से बचना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो पर्याप्त पानी, संतुलित आहार और स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है कि कहीं कहीं पर इस तरह की बात आती है कि गर्मी में पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए पेय के रूप में बहुत लोग नशा करते हैं, जो कि क्षणिक तौर पे भले वो ठंडक दे, लेकिन वो उसके दूरगामी जो दुष्परिणाम होते हैं वो सेहत पर पड़ता है।
0: तो हमें तो हमेशा ही, हम अपने श्रमिक साथियों से हमेशा कहते हैं कि आप नशा पान से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये तो सेहत के लिए आपके लिए नुकसान है ही, साथ ही साथ आप अपने परिवार से भी हमेशा कटते चले जाएंगे और साथ ही साथ पैसा की तो बर्बादी होती ही है। तो क्यों हम नशा पान करें भाई, नशा पान से हमेशा दूर रहने की कोशिश हम सभी को करने की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। तो श्रमिक साथियों, आज हमारे साथ है नीतू सिंह और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी दोस्त दीपा घोष, और विषय है नशा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो आइए सुनते हैं।
2: दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि नशा पान की समस्या हमारे श्रमिक भालियों के लिए कितनी हानिकारक है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं नीतू सिंह जी, जो स्वयं नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार नीतू जी।
3: नमस्कार।
2: नीतू जी, नशा पान एक बुरी समस्या है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
3: जी बिल्कुल, नशा एक अभिशाप है हमारे जीवन के लिए। यह एक सामाजिक बुराई है जिसे लोग शौक के तौर पे करते तो हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में जाकर के धीरे धीरे ये उनकी लत बन जाती है और ये उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर दोनों पे हानि पहुंचाती है। ये सिर्फ नशा करने वाले को ही नहीं, उससे जुड़े हुए लोग, जैसे कि उसके परिवार के लोग, उसके आसपास रहने वाले लोग, ये उन सभी पे असर डालती है और एक बुरा असर डालती है। यह एक कुसंस्कार है जो व्यक्ति का जीवन बुरी तरह से तबाह कर देती है और उसके परिवार को भी हानि पहुंचाती है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि नशा पान करने वाले व्यक्ति का परिवार कभी सुख चैन से नहीं रह पाता है। नीतू जी, नशा पान के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं?
3: वैसे तो नशा पान करने के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं, परंतु मेरा मानना है कि जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे उसे कोई नशे का आदि नहीं बना सकता। पर मेरे मुताबिक बहुत से कारक जैसे कि अशिक्षा, बेरोजगारी, पश्चिमी सभ्यता, दोस्तों की नकल, कुसंगति, सिनेमा, टीवी आदि का प्रभाव जो है, ये सभी मुख्य कारक हैं नशा पान के। इसमें अशिक्षा को मैं सबसे बड़ा कारण मानती हूँ, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इससे जुड़े हुए दुष्परिणामों को नहीं जान पाते हैं। और इसके अलावा आज की युवा पीढ़ी जो है वो स्वयं को मॉडर्न दिखाने के लिए, दोस्तों के बीच अपना वर्चस्व और रौब बनाए रखने के लिए भी नशा पान करते हैं। शुरुआत में तो वो इसे फैशन के तौर पर करते हैं, पर धीरे धीरे वो इसके आदि बनते चले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग सिनेमा, टीवी आदि में भी इसका उपयोग देख करके प्रभावित हो जाते हैं और नशा की दलदल में फंसते चले जाते हैं।
2: जी बिल्कुल, चाहे जिस कारण से भी नशा पान किया जाए, इसके परिणाम हमेशा घातक ही होते हैं। दुष्परिणामों के बारे में कुछ बताइए।
3: नशा पान जो है वो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से हानि पहुंचाता है, साथ ही साथ वो इससे सामाजिक वातावरण को भी प्रदूषित करता है, वो स्वयं ही नहीं परिवार की सामाजिक स्थिति को भी हानि पहुंचाता है। नशे के आदि व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में हेय की दृष्टि से देखे जाते हैं, वो अपने परिवार के लिए धीरे धीरे बोझ स्वरूप हो जाते हैं, उसकी समाज एवं राष्ट्र

0: हैं, जिससे परिवार में अशांति का माहौल बन पाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं उनके परिवार में, और स्वयं नशा करने वाला व्यक्ति भी आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है। इसका असर उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, लोग नशेड़ी व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। नशापान करने वाला व्यक्ति स्वयं और उसका परिवार भी साथ साथ सामाजिक अवहेलना का दंड झेलने के लिए मजबूर हो जाता है।
1: ये बात तो आपने बहुत सही कही नीतू जी। नशापान करना श्रमिक भाइयों के लिए कितना हानिकारक है?
0: ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जहाँ तक बात श्रमिक साथियों की है, तो नशा इसका हर प्रकार से उनके लिए हानिकारक है। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनके कार्य करने की क्षमता और कुशलता भी प्रभावित होती है, घट जाती है जिसे हम कहते हैं, जो उनके लिए और परेशानियां पैदा करती हैं और उनका जीवन दुखों से भर जाएगा धीरे धीरे अगर वो नशापान को नहीं छोड़ते हैं। श्रमिकों के लिए यह एक अभिशाप जैसा है। यदि श्रमिक अपनी आय को नशीले पदार्थों के सेवन में खर्च करेंगे तो उन्हें आर्थिक परेशानियों से घिर जाना पड़ेगा, उनके परिवार में भी कलेश होगा और नशे के आदि व्यक्ति को कोई भी काम नहीं देना चाहता है। इससे उनके आय के साधन में भी कमी आएगी, उनकी आय जो है वो कम हो जाएगी और इसके बिना वो रह नहीं सकते। उनकी आय का जरिया उनका श्रम ही है और अगर वो नशापान की तरफ झुकते हैं तो इसमें कमी होएगी।
1: जी बिल्कुल, श्रमिक भाइयों के लिए नशापान बहुत ही हानिकारक होता है। नीतू जी, मेरा अगला आपसे प्रश्न है कि हम इसे क्षेत्रीय तौर पर किस रूप में देखते हैं?
0: जहाँ तक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बात है तो यहाँ स्थानीय समाज में नशापान संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ लोग पर्व, त्यौहार, खुशी या कोई विशेष अनुष्ठान हो, गम हो, तो नशीले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। वैसे तो नशा करना हर दृष्टिकोण से गलत है, परंतु बात जब संस्कृति की आती है तो सीमित मात्रा में यह स्वीकार्य है, परंतु कुछ लोग इसे प्रतिदिन का नियम बना लेते हैं, वो इसके आदि हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो गलत है। नशे की हालत में लोग अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं पाते, वो अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और कभी कभी तो लोग हिंसा करके अपराधी तक बन जाते हैं। नशे के आदि होने के कारण घरेलू हिंसा में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। हम अक्सर अपने आसपास नशे में होने वाले इस तरह के कई आपराधिक व घरेलू हिंसा की घटनाओं को देखते व सुनते हैं। नशा करना परिवार और समाज और देश के लिए भी हानिकारक है। नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी उपाध्यायता खो देता है, इससे देश व समाज का विकास भी प्रभावित होता है तथा उसके परिवार का विकास भी प्रभावित होता है। लोग इस बुरी आदत से डर कर रहे, यही उनके लिए अच्छा है तथा दूरी बनाए रहे।
1: जी नीतू जी, नीतू जी आप स्वयं नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ी हुई हैं, तो आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो लोग नशे के आदि होकर आते हैं और बाद में वो अपनी इस लत से छुटकारा पा लेते हैं। नीतू जी, आप हमारे श्रमिक भाइयों को इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं श्रमिक भाइयों से बस ये कहना चाहती हूँ कि साथियों, नशा करना जीवन की बहुत बड़ी भूल है। किसी भी स्थिति में आप इस बुरी लत के शिकार मत बनिए। यह केवल क्षणिक कुछ देर की खुशी देता है, वह भी सिर्फ भ्रम होता है। यह आपको स्वास्थ्य के तौर पे तथा मानसिक तौर पे दोनों प्रकार से हानि पहुंचाता है। यह केवल दुख का कारण है, नशा नाश है। अतः साथियों, मैं आपसे पुनः यह कहना चाहती हूँ कि इससे डर कर ही रहे और यदि भूलवश कोई भी इस नशे का आदि हो गया है तो वह स्वयं में दृढ़ निश्चय कर ले और इस बुरी आदत को जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। नशा मुक्ति के बहुत से संस्थान हैं हमारे इस शहर में भी, जहां इसकी समुचित व्यवस्था की गई है और आपको सही सलाह दी जाती है ताकि आप इस नशा जैसे दानव से दूर रह सके। और अगर आपके आसपास में भी कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे उचित सलाह दें तथा किसी नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं जहां वो स्वयं की सहायता कर सके इस नशे से दूरी बनाने।
1: जी नीतू जी, नशा पान के बारे में आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सचमुच बहुत अच्छी जानकारी नीतू सिंह जी ने दी है, जो नशा मुक्ति केंद्र में कार्यरत भी है। और नशा, उन्होंने बताया भी कि नशा पान करना क्षणिक हमें खुशी मिलती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो हमें नशा पान से हमेशा दूर रहने की ज़रूरत है। और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी दोस्त दीपा। और दीपा, आगे अब क्या ख्याल है?
3: आगे तो हम अपने श्रमिक साथियों से और भी बातें करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय है एक और संगीतमय विराम का,
2: तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत संगीत।

0: और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्रमिक लोक में। और कार्यक्रम में अब हम दीपा एक ऐसी योजना का चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें देश के पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को नई पहचान दी गई और वो है स्फूर्ति योजना।
1: इस योजना का उद्देश्य खादी, हस्तशिल्प, बांस उद्योग, मधुमक्खी पालन, कुम्हार शिल्प और दूसरे ग्रामीण उद्योगों के कारीगरों को क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
0: जब छोटे छोटे कारीगर मिलकर बड़े स्तर पर काम करते हैं तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है और लागत भी कम होता है और उसकी जो उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।
1: और यह योजना महिलाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। बहुत से क्लस्टरों में महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। वे उत्पादन प्रबंधन और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है।
0: और यह योजना स्थानीय प्रतिभा को एक वैश्विक मंच प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वे इस योजना से जुड़ सकते हैं और अपने लिए बेहतर अवसर पा सकते हैं।
1: और इसके साथ ही जया कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो चला है, तो आज के लिए हम अपने श्रमिक साथियों से इजाजत लेते हैं। अपनी दोस्त दीपा
0: और जया को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल देर रात बिजली गुल रहने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में डीजल की कमी के कारण जनरेटर नहीं चल सका, जिससे डॉक्टरों और नर्सों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज व सुई देनी पड़ी। जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की। लोहरदगा में झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त और डीडीसी को ज्ञापन सौंपकर दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद से समाधान की अपील की है। मनरेगा कर्मी ग्रेड पे आधारित मानदेय और स्थायीकरण जैसी मांगों को लेकर पिछले 76 दिनों से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। शहीद नीलांबर पीताम्बर उत्तरी कोयला परियोजना के विस्थापित परिवार के पुनर्वास कार्य में तेजी लाई गई है। अपर समाहर्ता विकास कुमार राय ने मंडल डैम निर्माण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थलों पर बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भावुनिया ने आज मोहनपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और खराब चापाकलों की मरम्मत में तेजी लाने को कहा। हजारीबाग के कटकम दाग में दो नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर दोनों की गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती बारी।

0: गच लगाओ गच बचाओ कार्यक्रम सुनवाया सो भाई बहन मन के खेती बाड़ी में मोनिका पाटले जोहार और पायल बहन रौर कहो जोहार
1: जोहार जोहार
0: और कहो बहन का हाल खबर है
1: बहुत नगद
0: नगदे हो एक चाहिए है ना बार दिन बाद भेटा थी और देखो बढ़िया से हमरे के रह चाहिए है नी
1: से तो है और संगे संगे गर्मी भी लागत है
0: हाँ बढ़िया कह लिया अभी तो गर्मी कर दिन है के बहन तो गर्मी तो लग भी करत है और ठंडा गर्म मौसम भी है लेकिन मौसम कर मुताबिक अपने आप के ढाले है और सब कोई के बढ़िया से रहकर कोशिश कर के और गर्मी से भी बातचीत है नहीं
1: देखो ने नहा थी एकदम लागत है कि नहा ले जैसे सूख जाती
0: सही बात कह ली चूंकि गर्मी अति बग रहे है
1: तो है तो गच्छ वृक्ष भी सूख जाते
0: और तो देखो इतना गर्मी भी है बहन लेकिन समय समय पे बरखा भी हुआ थे तो गांव घर में तो काम धंधा चल रहे करे थे और हमने कर किसान भाई बहन मन है जे मन खेती बाड़ी कर काम में जुड़ल रहती थे और दिन भर कोनो ना कोनो काम में जुड़ले रहती है नी
1: सही बात है मैं देखो हमने मन के नहीं इतने गर्मी में गाज ब्रिज है पशु पक्षी सब के देखे है
0: सही बात है बहन काली की हमीर आदमी जाए तो कोनो तरी अपन जिंदगी के बेस से गुजरा थी लेकिन हमरे कर बीच जे हमरे कर सुंदरता कर चीज है के पशु पक्षी होलक जानवर होलक हमारे कर वातावरण कर चारों बटे कर सब मन के बढ़िया से रखे के है खाली की उमन भी खुश रह तो हम नहो खुश रह है नी
1: ओहे तरी लागत है रोले और कौन बताए चाहते
0: खाली की देखो हाँ अभी गर्मी का दिन भी है कि और देखो हमरे कर किसान भाई बहन मन खेती में जुड़ल रहती ला दिन भर कोनो कोनो के पटवन करते रहती ला बिहान के पटवन कर लेते तो सांझ सूख जाए सांझ के कर लेते तो बिहान ले सूख जाए है नी
1: तो
0: सिंचाई कर बारे में एक हम टपक सिंचाई कर बारे में बताए खोजो थी तो हमरे कर बीच में जे कृषि किसान भाई बहन मन काम करते ना से मतलब बहुत नगद जानकारी है तो टपक सिंचाई कर एगो उन्नत विधि है के जेकर में पाइप कर माध्यम से पानी के सीधे हमरे कर फसल और पौधा कर जड़ तक पहुँचाल जाएला बूंद बूंद करके पहुँचाल जाएला है नी और ये विधि कर माध्यम से देखो हमरे कर पानी कर बर्बादी नहीं होवेला
1: एकदम सही बात है
0: और इकर में हमरे कर जे वाष्पीकरण होवेला से के भी रोक के रखेले और फसल कर पैदावार में कम से कम 20-50% तक कर बढ़ोतरी भी होवेला
1: हाँ काले की ऊपर जल में बढ़िया पानी बहता है चले
0: और देखो पानी कर बगरा बचत इकर में तो होवे है करेला बहन है नी और इकर में जैसन के कहले 50-70% तक कर बीच में हमरे कर पानी भी खर्च होवेला और जैसन सीमित ठाव में जे ठाव में पानी नहीं भेटा थे से ठाव में तो बहुत कारगर साबित होवेला
1: एकदम एकदम देखो ने घर में भी हमरे मन पौधा लगा ही तू के का करी एगो डिब्बा ले ले ही और एगो छेद बना दे
0: अरे वाह हाँ। बहुत बढ़िया उपाय के
1: तो सुंदर पानी गिरा थे फूल खिले लगे गमला में तो हमरे मन ने गमला में भी के कर सके
0: और देखो बहन कर माध्यम से जे टपक सिंचाई कर माध्यम से हो जब पटवन कर थी तो ये बूंद बूंद जे पानी गिरा थे ये हमरे कर फसल और पेड़ पौधा में ही गिरा थे बूंदे में गिरा थे
1: हाँ।
0: तब बूंदे में गिरी तो बढ़िया के जड़ तक पानी तो भेटावे हाँ। करते है नी
1: हाँ। आस पास में घास भी नहीं उगी
0: हाँ यानी कि अगल बगल ठाव में पटवन नहीं हुआ थे तो घास कुछ भी नहीं होगी जेकर से हमरे कर फसल के बढ़िया
1: पानी भेटा है हाँ, पानी भेटा है
0: पानी भी भेटा थी और देखो जैसन कि अगर हम खाद भी डाला थी तो कर बूदे में डाला थी और अगर ट्यूब ट्यूब से पानी गिरा थे तो खाद भी बहुत बढ़िया से कर जड़ तक पहुंचा थे है नी और जड़ तक पहुंचा थे तो पौधा कर बढ़ोतरी तो बढ़िया से होबे करी है नी और देखो इकर माध्यम से हमरे कर जब फसल है से नाना बरन कर रोग से भी बच सकेला कीटाणु मन से भी बच सके कीट मन से भी बच सकेला है नी और देखो
1: बंजर जमीन में भी अच्छा है
0: हाँ और बहुत नगद बात कह ली कि टपक सिंचाई कर माध्यम से हमरे कर जब बंजर भूमि है और जो ऊंच नीच उबड़ खाबड़ वाला ठाव है से ठाव में
1: पानी नहीं छाने ला
0: से ठाव में हमरे मन बहुत बढ़िया से इकर प्रयोग कर सकेला है नी और बहुत आसान भी होवे ना और देखो बहन टपक सिंचाई कर माध्यम से हमरे कर जे खेती होवे ना तो उकर में पैदावार भी बहुत बगरा होवे ना
1: अच्छा हुए
0: और हमरे कर किसान भाई बहन मन के मुनाफा भी बगरा हो और देखो मुनाफा बगरा हुआ थे तो जाहिर सी बात है कि पोषक तत्व और के बढ़िया से खाद पानी भेटा थे तो बढ़ोतरी होबे करी फसल में है ना।
1: ये तो बात है
0: और जेकर माध्यम से हमरे कर किसान भाई बहन मन भी खुश हुआ था उनके भी बगरा आमदनी भेटा थे और हम रहो खुश हुआ थे
1: मेहनत
0: तो बहन हमरे दियो तो बातचीत करते है रब लेकिन समय से रे कार्यक्रम के भी आगे बढ़ा तो बहुत बढ़िया रही है नी तो चलो हमरे मन एगो जानकारी करे ला कि काल की हमरे का किसान भाई बहन मन तो खेती बाड़ी करते रह तो आज हमरे मन रागी के बारे में जानकारी करवाई ला रागी जैसे कि मड़ुआ भी कहा जाए और हमरे का शरीर लिए बहुत लाभप्रद भी है कि तो रागी प्रसंस्करण द्वारा स्वस्थ और लाभ और इकर उद्यमिता विकास का तरी हुए ला तो इके बताते हैं डॉक्टर विशाखा सिंह और इनकर से बतिया है संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों मोटे अनाज की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी का भी आह्वान है कि मोटे अनाज का हम अधिक से अधिक उपयोग करें और इस मोटे अनाज में जो सबसे अमूल्य है वो है रागी या जिसे हम लोग मड़ुआ भी कहते हैं। इसमें पौष्टिक अनाज है और इसमें काफ़ी पोषक तत्व हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा ही इसको माना जाता है। तो इस रागी से हम बहुत तरह की खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं और बहुत सारे छोटा छोटा हम इसके लिए उद्यमिता विकास करके अपना आय भी हम बढ़ा सकते हैं। तो रागी का प्रसंस्करण कैसे करें, कौन कौन सी खाद्य पदार्थें बनाएं जैसे बिस्कुट लड्डू ये भी बना सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाखा सिंह। डॉक्टर विशाखा सिंह जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद
2: विशाखा सिंह जी। रागी हमारे लिए कितना आजकल उपयोगी हो गया है?
3: वैसे तो सभी मोटे अनाज बहुत उपयोगी हैं, पोषण की दृष्टि से सभी में बहुत अच्छा मूल्य है, सबका पोषक मूल्य बहुत अच्छा है अन्य अनाजों के तुलना में, परंतु उसके अंदर भी रागी को ज़्यादा महत्व दिया गया है और झारखंड में तो रागी का प्रोडक्शन ज़्यादा है और यहाँ जैसे कि कोई भी मोटा अनाज के लिए उपज के लिए कोई ड्रॉट टॉलरेंस है, ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस हिसाब से झारखंड में भी बहुत सारे मोटा अनाज का प्रोडक्शन होता है, रागी उसमें एक इम्पॉर्टेंट है। और रागी का प्रसंस्करण आवश्यक इसलिए है क्योंकि नेचर की तरफ से प्रकृति की देन है कि रागी के छिलके में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कीड़े मकोड़े से उनको बचाए, क्योंकि उनको रफ होता है, उसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्रकृति उसको उसके बॉडी में ऐसी चीज़ होती है कि उसको बाकी डैमेज नहीं होने दे, इसलिए उनके छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं उनको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं, जिससे कि उसको कोई कीड़ा या कोई फ्लाइज उसको ज़्यादा हार्म नहीं करे और वो इजीली ग्रो कर पाए। इसके लिए जब हम उसको अपनी डाइट में लेते हैं तो हमें प्रसंस्करण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो हमारे लिए भी दिक्कत करता है, मतलब हमें भी कुछ पोषक तत्व जो रागी के अंदर में अवेलेबल है लेकिन वो हमारे शरीर को मिलने से रोकता है, तो उसके लिए हमें उसके छिलके को हटाना पड़ता है या उसको सबसे बेहतर तरीका है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए रागी का हम ज़्यादातर पाउडर बना के ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी रूप में अगर करें तो रागी को जब हम खाने में इस्तेमाल करने के पहले उसको ग्रेन को 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगा के रखें और उसके बाद उसको सुखाएं, उसको फिर उसके बाद उसका मिलिंग कराएं या पिसाएं, उसको जो भी उत्पाद बनाना है वो बनाएं, लेकिन पहला प्रोसेस है कि उसको 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखें। ये गर्मियों में है, सर्दियों में आप पूरी रात भी भिगा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसको भिगाए बिना रागी या कोई भी मोटा अनाज को अगर भिगाए बिना हम उपयोग में ला रहे हैं मतलब कि उस 100% जो उसका पोषक मूल्य है उसका फ़ायदा हमको नहीं मिल पा रहा है, तो पहला प्रसंस्करण तो हमें यही स्टेप हो गया कि हमें पहले उसको भिगा के ही इस्तेमाल करना है। इसका यही पर्पज़ है कि उसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाता है भिगाने के बाद, उसका बहुत सारी उसकी जो हमें पोषक तत्व मिलने से रोकता है वो भिगाने की वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है, फिर अगर हम उसको भूनते हैं या कुछ और बनाते हैं, फ्राई करते हैं, कोई भी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो और इनएक्टिवेट हो जाता है, तो इतना ही इनफ है इस ना करने से हो जाएगा
2: जी। इस प्रसंस्करण के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं मैडम, तो यदि कोई चाहता है हमारे साथ ही कोई

0: महिला साथी चाहती है कि इसका एक प्रसंस्करण का हम इकाई लगा लें, छोटे स्तर पर लगा लें, उद्योग स्थापित कर लें, तो किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता हो जाती है, लागत कितना है, ताकि मांग तो बढ़ती जा रही है इसकी, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है।
1: तो जैसा अगर उनको किन्हीं को लगाना है तो पहले, सबसे पहले तो उनके पास ये होना चाहिए कि उनके पास रॉ मटेरियल हो पर्याप्त और वो सही सोर्स से मिले। अगर हमारा जो की कच्चा जो माल है, जैसे कि वही अगर हमें सही नहीं होगा तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी दिक्कत होगी, और एक वो इंश्योर करना है। दूसरी चीज़ है कि उनको सही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किन्हीं को भी, क्योंकि देखिए आता भी है फिर भी ट्रेनिंग अगर रहेगी तो वो जस्टिफाइड रहेगा कि इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है और इसलिए वो बिजनेस में जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग लेने के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट का, जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर फिक्सी करके फूड मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है जिसमें मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो मोटे अनाज पर ही ट्रेनिंग देते, बहुत प्रकार की चीज़ों पर ट्रेनिंग देते हैं और वो हर शहर में मास्टर ट्रेनर होते हैं, तो ऑनलाइन में करा के अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ भी उस वेन्यू में भी जाके कर सकते हैं। दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का जो ICR का है हैदराबाद में, उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग हमेशा होता रहता है, तो उनके पोर्टल पे विजिट करने से भी ऑनलाइन में भी जो दीदी लोग कर सकते हैं वो ऑनलाइन से भी जुड़ के कर सकते हैं, और आगे भी बहुत प्रकार के झारखंड गवर्नमेंट से भी बहुत प्रकार का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होता है, उसके लिए ATM BTM के संपर्क में रहे जहाँ कहीं भी होता है JSLPS के थ्रू, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल सकती है। तो ये ट्रेनिंग होना जरूरी है, माल कहाँ से आएगा उसकी जानकारी होना जरूरी है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग होने से हमें मार्केटिंग का, पैकेजिंग कैसी करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन से मशीनों को इस्तेमाल करना है, हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है उसका जानकारी हो जाता है। फिर उससे अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट लाते हैं तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स
0: अपने घर में भी एक छोटी इकाई लगा सकते हैं।
1: जी जी जी, जी
0: कि हम हमारी महिलाएं और माताएं और बहनें वो चाहती है कि जहाँ है वो अपने घर में भी छोटी सी इकाई कम लागत में लगा सकते हैं।
1: जी, शुरुआत इसी से कर सकते हैं, घर से शुरुआत करें, घर के लोग पहले खाएं, उसके बाद आसपास में अगर एक्सेप्ट होता है जरूर होगा, उसके बाद फिर मार्केट में आए। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हम इकट्ठे बहुत सारा उत्पाद नहीं बना के और फेल होने का चांसेस नहीं रहता है। घर से शुरू करें, उसमें घर की चीजें इस्तेमाल, जैसे मिक्सर ग्राइंडर या चक्की पीसने वाली, जो घर की चीजों से बना के और लोग एकदम बेसिक लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह या FPO के में भी समूह बना के FPO के लोग भी मिलके भी कर सकते हैं, और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स भी हैं झारखंड गवर्नमेंट की, जो अगर उसमें अगर प्रोसेसिंग में जाना चाहें मड़ुआ का, खासकर मड़ुआ के लिए ही बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो उसके थ्रू भी उनको बहुत फायदा मिलता है।
0: मतलब घर में भी, आपके हर घरों में मिक्सी होता है, ग्राइंडर होता है, वहाँ भी छोटे स्तर पर आप ये कर सकते हैं,
1: कुछ बहुत अलग चीज नहीं,
0: आसपास के इलाकों में भी इसका आप सप्लाई कर सकते हैं।
1: जी, आप कुकर में बिस्किट बना सकते हैं, आप फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में, तो घर की चीजों से भी बना सकते हैं। जब आपका मार्केट थोड़ा पकड़ में आ जाए फिर आप ओवन खरीदिए या कोई आगे की चीजें लीजिए।
0: शुरुआती स्तर पर हम ये काम शुरू कर सकते हैं, यदि हम अचानक सोचेंगे कि बड़े स्तर पर कर लें, पहले थोड़े थोड़े शनि शनि रुपए घर पे ही एक छोटे से पैसे लगा कर कम खर्च पे ही हम ये कार्य शुरू कर सकते हैं। मैडम, ये किस मौसम में, किस समय इस पर हम ज्यादा ध्यान दें रागी के लिए, कि उस समय हम इस तरह की जो उसके प्रसंस्करण है, चाहे बिस्कुट है, चाहे लड्डू है या अन्य खाद्य पदार्थ है, वो हम बना सकते हैं।
1: मौसम में तो जैसे हर मोटे अनाज में हर अनाज का सीजन होता है, लेकिन रागी, मतलब हर अनाज का एक प्रकृति है कि वो गर्म करती है, ठंडी करती है। तो जैसे हम लोग भी तिल वगैरह खाते हैं तो ठंडी में खाते हैं और गर्मी में सत्तू पीते हैं, तो उसी तरीके से मोटे अनाज में भी ज्वार खाते हैं तो उसको हम ठंडी में खाते हैं और गर्मी में जौ खाते हैं, जौ का सत्तू लेते हैं। लेकिन रागी ऐसी चीज़ है कि उसको हम 12 महीने खा सकते हैं, वो न्यूट्रल है, उसका तासीर कोई ना गर्म है ना ठंडा है, और पचने में भी बाकी मोटे अनाज की तुलना में ये थोड़ी सॉफ्ट है तो ये जल्दी पच भी जाती है, तो इसका हम 12 महीने में कर सकते हैं। और अगर घर में इस वक्त करना चाहें तो जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया बताते हैं कि आमली के रूप में इसको खा सकते हैं, इसका दो फायदा है, एक तो वो ठंडक देता है आमली जो बनाते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पेट में कुछ अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, कुछ जो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग को तेज करते हैं, शरीर के सारे चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है उनका रहना शरीर में, तो वो उसको बढ़ाता है। जो फायदा हमें दही खाने से होता है वही फायदा मड़ुआ का आमली खाने से होता है। तो इसको बनाने के लिए जितना भी हम, एक कटोरी अगर

0: डुबा ले रहे हैं तो उसका 7 गुना पानी में उसको रात में भिगा दें और पूरी रात भीगा रहे, मिट्टी के बर्तन में हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह में उसको उसी पानी में उबाल लें और थोड़ा सा उबालने के बाद फिर से ढक के रख दें और उसको अगले शाम को खाएं। मतलब 10 घंटा भी गाएं, फिर उबालने के बाद 10 घंटे छोड़ दें और फिर उसको खा लें, या तो सब्जी से खाएं या कुछ चीज़ से, लेकिन वो जो पानी और मड़ुआ डालेंगे उसके में कोई नमक चटनी कुछ नहीं डालना है, वो प्लेन ही उबालें और वो थोड़ा सा मतलब दाल की तरह थोड़ा पानी पानी सा रहेगा, तो उसके साथ अगर हम अचार से खाएं, सब्जी से खाएं, चटनी से खाएं, जो भी, लेकिन ये ठंडक भी देगा और पेट को वो सारे जो दही से जो फायदे होते हैं वो फायदा भी मिलेगा।
1: सरकार की भी बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है रागी प्रसंस्करण से संबंधित, तो कौन कौन सी स्कीम है और कोई व्यक्ति चाहता है कि कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करे तो कैसे करे?
0: कृषि विज्ञान केंद्र में तो अभी मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो चुका है जो पिछले साल 5 मई को हुआ था, तो अभी बहुत सारी मशीनें हैं प्रसंस्करण से संबंधित जो जिसका वहाँ पे एक तो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं किसान भाई बहन, और दूसरी चीज़ है कि अगर उनके पास मोटा अनाज है या रागी है तो रागी लेके आ सकते हैं यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल करके अपना उत्पाद बना के, यहाँ पे उनको मार्केट लिंकेज के बारे में भी बताया जाएगा, वो जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं हमारी मशीनों यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र में उस मशीनों को इस्तेमाल करके, और वो कुछ चार्जेस होंगे जो मशीन का बेसिक चार्जेस होता है वो देना पड़ेगा, उससे उनको ये सुविधा मिलेगी कि वो खुद इकट्ठे बड़ी मशीन ना खरीदें, वो पहले हमारे यहाँ आके मशीन को इस्तेमाल करके ये जान जाएंगे कि किसको कैसे चलाना है और कितना कैपेसिटी का होना जरूरी है, क्या ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगा कि मशीन रन कैसे करना है। तो एक तो वो है, दूसरे गवर्नमेंट कल्टिवेशन के लिए झारखंड गवर्नमेंट मिलेट मिशन प्रोग्राम के अंदर में 1 एकड़ पे 3,000 का प्रोत्साहन मनी एक तरीके से दे रहे हैं, जिसमें से कि मैक्सिमम वो 15,000 दे सकते हैं, मतलब 5 एकड़ अगर किसान लगा रहे हैं मड़ुआ तो उनको 15,000 रुपए का एक तरीके से इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन के लिए दिया जा रहा है। और अगर कोई स्वयं सहायता समूह या FPO के थ्रू उद्यमिता के लिए कोई मतलब उद्योग खोल रहा है छोटे स्तर पे, तो 10 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो लगभग 35% तक जो मशीन है उस पर सब्सिडी मिलेगी। और मार्केटिंग के लिए भी सरकार का बहुत अच्छा पहल है, स्कूलों में मिड डे मील होता है या जो राशन बिकता है उसमें भी मड़ुआ से बने हुए उत्पाद जैसे लड्डू वगैरह दिया जा रहा है, तो मिड डे मील में भी अगर स्वयं सहायता समूह से मैं दीदी लोग मिलके और स्कूल में बात करें तो वहाँ पे मिड डे मील में भी लड्डू दिया जाता है, तो उनको गाँव में ही मार्केट भी मिल जाएगा।
1: तो स्वास्थ्य के लिए रागी काफ़ी अच्छा है और रागी को प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और ये रागी का मांग दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाखा सिंह, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की रागी प्रसंस्करण के बारे में आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बहन एफएल हमारे मन के बहुत निगत जानकारी दे रहे हैं, रागी प्रसंस्करण द्वारा स्वस्थ लाभ और उद्यमिता विकास का तरी करल जाएगा, और इसके बताते रहे हैं डॉक्टर विशाखा सिंह और इनकर से बतिया रहे संजीव कुमार लाल, तो नगर जानकारी रहे
3: बहुत अच्छा।
2: तो बहन चलो आज हम रे मन को सफल महिला किसान से भेटा है नी
3: कोनो अंबा मन के खिया
2: हाँ, अंबा का दिन लेके तो अंबा
3: से तो लागत तो है
2: किसान के मियाजा की आम की बागवानी के पर में बात के बातचीत के रहे शिलप्रिया तोपनो और इनकर से बतिया है अरविंद कुमार मिश्र।
4: चलो भैया सब भाई बहन मन के हमर बटले बहुत बहुत जोहार है। भाई बहन मन देखो आज भूलते टहलते हम एक ठो गांव में आ जा ही और गांव का नाम है के मरचा, जे कि खूंटी जिला में पड़ेला तोरपा कर ठीक बगल में है ये गांव, और ये गांव कर अपने आप में एक खास बात है कि यहाँ कर जो महिला किसान है नी आज गोटा राइज में चर्चा कर विषय बन जा है, हर कोई इनकर नाम के जानत है, इनकर जे काम है से के जानत है, तो ये खास किस्म कर अपन बागवानी में आम कर किस्म है नी से के लगा है, और ये आस पास कर किस्म ना लगे बल्कि ये बहुत दूर देश 7 समुद्र पार करी किस्म है, जेके जापान में मिया जाकी आम कर नाम से जानल जाएला, और अंतरराष्ट्रीय जे बाजार है उकर में इकर कीमत बहुत ज्यादा है, माने 2 से 3 लाख रुपया तक इकर दाम है प्रति किलो कर दाम है, से खास किस्म के ही अपन बागवानी में रोइफ है, तो उसन महिला किसान से चलो हम रोल मन के आज भेंट करवा थी। बहन जोहार
5: जोहार,
4: का नाम होलक दीदी रो
5: शिलप्रिया तो
4: सिल प्रिया टोपनो घर रोर मर्चा होएला
5: हो मर्चा
4: अच्छा तो एखन रोर बागवानी हम आही और देखती कि

0: किसिम किसिम कर रोरे आंबा कर बागवानी कर रही। तो हमार ठीक बगल में है इके मिया जाकी आम का है नी, मिया जाकी आम। तो कितना दिन पहले इके लगाए रही पौधा के?
1: एखन हुआ थे 4 साल।
0: 4 साल।
1: हाँ।
0: अब फरत कितना साल से है?
1: 3 साल बाद फरक शुरू कर रहे।
0: अच्छा।
1: तो पौर साल हो रहे 3 साल, अभी चौथा साल चला थे। 3 साल में फरल कई रहे और होए होला।
0: हाँ हाँ, तो देखा थी छोट ले गच है और इकर में लधरल फर है नहीं।
1: हो।
0: तो कैसन बाजार में इकर कैसन मांग है? चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो इकर ढेर दाम कहे ना, लेकिन लोकल मार्केट में कैसन इकर दाम है?
1: लोकल मार्केट में तो एखान उतना तो नहीं देवा, तो 1500-1500 ऐसे नहीं करके बेचब। अगर 1500 का ज्यादा है कहबा तो 1000 लगा, 1000 का ज्यादा है तो 500 ऐसे नहीं बेचब।
0: तो हिया तो उतना दाम नहीं देवे, 2-3 लाख रुपया के देवी नहीं,
1: उतना तो नहीं देवे खोजे।
0: तो ये कहाँ से मंगाए रही पौधा के?
1: इके कलकत्ता से मंगाए रही।
0: कलकत्ता से।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कैसे मतलब इकर जानकारी रोड के कैसे होलक?
1: एगो हमार भाई साहब उन्हें रहे तो उसके जानकारी दे रहे, तो हम इनके पूछला की लगा फिर ही कहा तो लगा के देखा खाली।
0: हाँ।
1: बोले एगो मंगा दे रही।
0: अच्छा, कितना ले रही एक ठो पौधा का?
1: एगो पौधा का रहे 1500-1600 ले रहे।
0: अच्छा, ये चाहिर बटे आए जो बहुत रोद से कथे।
1: हाँ।
0: नहीं रोद बटे ना खाला रहो, बाबू के भी गोदी कही रही मैया के। अच्छा, तो इकर माने पौधा के जब रोरे लगा ली थी इकर ले कुछ खास तैयारी करे खोला? कारण है कि और आम कर जे किस्म है उकर से तो कुछ अलग है।
1: हाँ, तो है खास तो करे की पड़ी कर में खाद वोद बहुत सारे देवे पड़ेल, सेवा भी करे पड़ेल जब तक एगो बुआर नहीं हुई तब तक।
0: अच्छा, तो रोपे के लिए खास तैयारी कैसे कर रही? कितना गाढ़ा मन रहे काका?
1: गाढ़ा हुए 15 की कितना ऐसा फीट तोड़ रही।
0: अच्छा,
1: कि बगर ही गाढ़ा करे का है के चौड़ा भी कर बाद खाद डाल के उसने छोड़ ले के।
0: अच्छा,
1: उकर बाद रोप ली
0: और बीच बीच में इकर देख रेख करते रहे।
1: हाँ,
0: मंजर जैसे आवेला से बेरा कुछ खास देख रेख करे है?
1: हाँ, उस बेरा भी है दावा फिचका का है। तभी को एगो फल ले।
0: अच्छा, तो एक ठो फल कितना हो जाला लगभग? उकर वेट कितना होत हुई?
1: पाव भर रही 100 ग्राम तक फल जाए।
0: अच्छा,
1: उकर से बगरा भी हो जाए कोई कोई।
0: और खाए के में कुछ अलग जो लोकल आम है उसे कर से कुछ कितना अंतर हो?
1: अंतर तो बहुत है कर।
0: रेसा ही कर में नहीं रहे शायद?
1: नहीं रहे रेसा ही, बस मास कर रहे।
0: खाली गुद्दा रहे ला।
1: गुद्दा। हाँ।
0: और इकर में और का पौष्टिकता पावल जाए ला जे इकर इतना ज्यादा दाम है?
1: इकर में तो पौष्टिक तो आहे ज्यादा ही।
0: आदमी मन देखे के आवे ना इके?
1: आवे दूर दूर से आहे।
0: कहाँ कहाँ से आवे ना आदमी मन?
1: रांची से, पलामू से आहे।
0: अरे बाबा, पलामू से भी आ?
1: पलामू से भी आ रहे,
0: बहुत दूर दूर से आदमी मन आवे ना।
1: तो
0: सही बात है, कुछ अलग जे किस्म है से के देखे के लिए तो दूर से आबे कर में, हम हो तो दूरे से आई है।
1: सही बात है, देखे के लगे तक।
0: तो पिछला धाव जिसे बेच रही तो कहाँ लेके जा रही बेच?
1: कराची ले रहे।
0: आसपास में तो नहीं कीन हो गया?
1: आसपास में खा नहीं कीन है कोई हो।
0: कराची में बचाए गलक पूरा?
1: हाँ, पूरा बचाए रहे।
0: कितना लेके जा रही बेच?
1: वो ले रहे 3-4 पिट्टी ले रहे।
0: अच्छा,
1: सब बेचा के आए रहे।
0: तो आदमी मन खोजत है?
1: अब तो खोजवा है जो
0: जाना है तब।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो जब इके बाजार लेके गेली तो आदमी मन नहीं, जब दाम रोरे कहली 1000-2000 रुपया तो आदमी मन तो सोचा तो मैं खका थी रोरे
1: उसने हो ही रहे। फिर उकर बाद सब के बता ली और तो चलो खाए के देखा कहता है उकर बाद ले गला।
0: अच्छा, तो कैसन खाल पाछे उमन कर कुछ माने प्रतिक्रिया अलग बता ले उमन की ठीक है लागल कैसन लागल से
1: बता लक? अब तो लेगा बोल जुन और तो उमन आदमी।
0: अच्छा, रोरे खा ही की नहीं?
1: हम इन तो खा ही।
0: तो कैसन उकर टेस्ट कैसन है दूसरा आम से?
1: अलग है।
0: खाए के में कैसन लगे?
1: बहुत ही अच्छा लगे।
0: बगरा गुरुआ है की?
1: बगरा तो उतना नखे, लेकिन खाए के में कर थोड़ा आम आम से थोड़ा सा अलग ही है।
0: दूसरा आम से नहीं?
1: हाँ,
0: तो इकर कलर भी देखा थी बैगनी है।
1: हाँ।
0: जे बैगन कल कलर है नी उसने इकर भी कलर दिशा थे।
1: हाँ, पकने शुरू हो जी होलू कर कलर दूसरा चेंज हो जाए।
0: अच्छा, बदल जाए ला?
1: हाँ, बदल
0: कलर हो जाए ला फिर
1: वो है पूरा पिंक हो जाए।
0: अच्छा
1: पिंक और येलो सने हो जाए।
0: मिया जाकी आम कर कैठो पौधा है रो?
1: मिया जाकी चार गो रोई थी, खाने के दुए गो फोर है। वो तो एक छोटे छोटे है।
0: अच्छा दो गो छोट ले है, दो गो फरत है नहीं। और इकर अलावे फिर और कोई विदेशी आम रो बगान में?
1: और तो विदेशी तो नखे बस है।
0: एक तो अमेरिकन रोरे कहत रहे अमेरिका कर कोई फल है से आम कर अमेरिका
1: परमल
0: परमल के नहीं
1: अमेरिका परमल पे दे ही है।
0: अच्छा ये वाला नहीं,
1: ये वाला सात गो है।

0: अच्छा,
1: सातगो रोई
0: इकर साइज इकर से छोट होएला
1: तो नहीं बड़का होएले तो
0: ये भी आधा किलो नियर होई
1: आधा किलो नियर होए जालेगो।
0: और इकर कैसे है बाजार में दाम?
1: इकर बाजार में है पिछले बार तो 500 ऐसे ने बेच रही
0: एक किलो कर दाम।
1: हाँ, एक किलो कर।
0: इकर स्वादी कैसा है खाए में?
1: इकर स्वाद थोड़ा सा अलग है इकर से काम आए।
0: और टोटल आम कर पौधा कितना है रोठीना रो बगान में?
1: टोटल तो
0: लेकिन ढेर दिशत है, बहुत बगरा अलग अलग किस्म का देखा थी आम है, बहुत सारा अलग अलग किस्म का आम देखा थी और सब बड़ा बड़ा प्रजाति कर है नहीं? ढेर बड़ा बड़ा है,
1: एक एक किलो हो जल उतना कर।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो देखा थी एखन आधा किलो से बड़का दिशत
1: सब होने में है, फिर जल होने बड़का बड़का वाला है।
0: तोता फली की क्या कहे से है की नहीं? काजू मन भी रोई फिर रोई
1: काजू रोई थी
0: कैठ हो है काजू कर
1: काजू एक एक रोई थी फिर मैं रोई थी वो तो।
0: नींबू मन भी है?
1: नींबू
0: लीची
1: लीची है और पिस्ता हुआ।
0: अच्छा, पिस्ता मन कर भी है?
1: पिस्ता रोई
0: बहुत बढ़िया। तो लीची तो एखन देखती तैयार हुआ थे फर धरे लेकिन छोट ले है तो कहिया तक ही निकल जाये?
1: ये अब नहीं निकली, इतना ही हुई काकी पौर साल तो फैर रहे।
0: अच्छा,
1: इस बार
0: अब छोटे छोटे में खत्म हुई लगनी?
1: हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा हो जाए।
0: अच्छा, एक तो देखा थी एखन आम कर भरखर आम कर सीजन है, शेकर में कुछ कुछ पौधा में देखा थी कि मंजर लाई है, तो कौन किस्म है कि भाई एक बार फरत है और फिर मंजर भी लाई है?
1: उसके कहे की बारहमासी आम का है,
0: बारहमसिया। अच्छा, बारहमसिया आम कहे ना उसके नी, तो एक बटे फरत है दूसर बटे मंजर भी लागत है, तो सालों भर फरते रहेला?
1: ईगो फरेल। हाँ।
0: अच्छा,
1: एखन दिसंबर में ईगो जो बाद में फारी उगो पूरा पाइक जेल दिसंबर में।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: असी बेरा भी रोड़े बाजार में बेची ला?
1: बेची ला, लेकिन कभी कभी खाए देवे
0: घरे में तो बागवानी का सुरक्षा रोड़े मन कैसे करी ला?
1: सुरक्षा तो ठीक है,
0: घेर ही चारों बटे।
1: हाँ, चारों बटे घेर है, बैल बकरी मन नहीं घुसे घरे में राहिल के पड़ी कर।
0: हाँ।
1: देखे पड़े आजकल बैल बकरी में फिर रहा है तब
2: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: तो बहन अपन हमरे मन जानकारी करत रही, एगो किसान कर करल बातचीत के सुनत रही, मियाँ जाके आम कर बागवानी कर बारे में बतात रहे। शिलप्रिया तो अपनो और इनकर से बतिया रहे अरविंद कुमार मिश्रा, बहुत नगद जानकारी हमके करवा ने बतिया रहे थे नहीं। और एक रहे संगे हमरे कर खेती बाड़ी कर समय से रालक और हमरे मन और करीला हमारी दुनिया कार्यक्रम में घर ने स्वभाव में है नी।
5: हाँ हाँ, और तो सब घर में के जोहार।
4: हाँ है, जोहार जोहार। और जैसन कि आज कर दिन तो हमरे कर घर ने स्वभाव मंडे घर ने बहन मंडे बहुत नगद दिन भी है के। और देखो हमरे मन हमरे कर बहन मंडे नवा नवा ढेर बगरा जानकारी दे के भी आई है नी।
5: हमारे वो बात कही घर नी मन बड़ा बतियान
4: है नी। अब देखो
5: कहियो सियन भात बैठा के बतिया जा मैं, कहियो कोनो काम करके बतिया जा मैं।
4: देखो बहन इकरे माध्यम से देखो हमरे कर बहन मन है अपन दुख सुख के अपन संग जगह प्रकट करती जा है नी।
5: मगर वो बात कही समय के निगमाय के
4: एकदम रोरे नगद बात कह ली बहन काल के। देखो आज कर युग में समय ऐसा कीमती चीज है कि जे एक बार बीत जाने से
5: नहीं आवेला
4: है। और देखो कोनो भी चीज के हमरे मन जैसन कि हमके चाहत हुआ थे तो हमरे कीन के ओके अपन में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन समय ऐसा चीज है कि ढेर बगरा पैसा लगा के भी हमरे मन नहीं कीन सके
5: है।
4: इसलिए हमरे मन के बीच में समय बहुत अनमोल रतन है, अनमोल धन है के। और हम इकर हमरे के सब मन के मिल के बढ़िया से सदुपयोग करे के ही व्यर्थ में हमरे के नी गवा के ही है
5: एकदम। और देखो घर नी मन के अगर घर नी मन अच्छा से समय के उपयोग करबे तो आब छुआ मन घर के आदमी मन बाकी सब मन अच्छा से के देखबे और सीखबे।
4: सही बात कह रही बहन काली की। देखो जे हमरे कर छोट छोट बहन मन भाई मन है से मन हमरे कर

0: माए बाप के देख के सीखती रहे नी
1: हाँ।
0: और बड़ मन अगर समय कर सदुपयोग बढ़िया से करत है तो छुआ मन खाते नहीं नहीं नहीं समय के गंवा के नखे
1: हाँ।
0: कि समय एक बार बीत जाला तो आबो नहीं करेला इसलिए हमरे के समय सिर्फ पढ़े छे लिखे छे सब काम के समय सिर करे छे और
1: हाँ।
0: कोशिश करे छे बहन कि कोनो काम के अगर हमरे मन करत ही तो पहले हमरे के समय तालिका बना के बहुत जरूरी है और कोशिश करे छे कि उस समय के अंतर्गत हर काम के सिर रखे है नी
1: एकदम
0: अगर समय सिर हमरे मन समय कोनो काम के करत ही तो हमरे मन सब काम में सफलता भी पा सकेला और अपन जीवन में आगे भी बढ़ सकेला।
1: हाँ जैसे कि हमने मन के दम बिहान उठे है अपन अपन काम के करे है बहुत मन ऐसा हुआ ना आंसा है ना अरे उठब
0: उठब उठब 9 बजे उठाते तो का काम कर
1: हाँ
0: है नी
1: अच्छा आजकल हाथ में मोबाइल है
0: टुकुर टुकुर देखा
1: हाँ
0: थी लोभा जाती तो ऐसे में हमरे कर समय सच में बहन
1: समय बहुत बर्बाद हुए ना
0: तो हमरे के कोशिश करे थे कि कोनो काम के करे थी समय कर अंतर्गत ध्यान देवे थे और समय से खत्म करे थे और कोशिश करे थे कि अगर हम कोनो काम के अगर कर थी जैसे बड़ बड़ काम के कर थी तो कि हमके छोटा छोटा भाग में बैठ के काम करे थे
1: हाँ
0: ताकि हमरे कर मन उकर में ध्यान लगा रहे
1: है।
0: और समय से वो काम के हमरे मन बढ़िया से कर सकीला है नी
1: हाँ हाँ
0: और कोशिश करे थे कि समय कर सदुपयोग सब मन के मिल के करे थे और समय कर महत्व के समझे थे बहन तो चलो हमरे मन भी समय से अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई ला है
1: सही
0: नी
1: बात है
0: और चलो रिझरंग बटले आगे बढ़ी ला
1: हाँ।
0: नागपुरी लोकगीत है कि कालिंदी कुमारी और संगी मन गावल गीत
1: चलो
2: ज्ञान हासिल।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: तो बहन हमरे मन नागपुरी में लोकगीत सुनत रही कालिंदी कुमारी और संगे मन गावल गीत बहुत नगद
4: बहुत नगद।
3: अब चलो हमरे मन एगो जानकारी भी करवाई ला काली की आज कर युग में हमरे कर जे छोट छोट भाई बहन मन है से मन नशा पान में बहुत डूब जाते थे।
4: हाँ,
3: हम कर संगति ऐसा हो जाता कि चल घर कर सामने बड़े बुजुर्ग कर सामने तो नहीं खाते लेकिन दूर दरार में जाके अपन दोस्त यारी
4: हाँ, के बीच में नशा पान कर प्रयोग करते थे। हाँ,
3: तो बहुत बड़ी ये समस्या है कि बहन तो एक बारे में जानकारी करवाती हम छोट छोट छुआ मन में नशा पान कर समस्या का तरी हो का तरी हो और एक बारे में ही बताते हैं डॉक्टर अनुराधा।
5: नशा हमेशा सुना जाता है, क्या यह एक अभिशाप है? है तो इसके पीछे इतनी आकर्षण क्यों है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, गुटखा, तंबाकू, चरम और स्मैक जैसी घातक मादक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होती है, साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नशा ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को, हमारे देश को तेजी से निकलते जा रही है। आज शहर और गांव में पढ़ने में खेलने की उम्र में स्कूल और कॉलेज के बच्चों और युवा वर्ग मादक पदार्थों की बहुपाशा में जकड़ते जा रहे हैं। इस बुराई में सर्वप्रथम अगर दोष देंगे तो माता पिता को, जो अपने जीवन में इस कदर व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। देश का भविष्य कहलाने वाले युवा होते किशोर दिनों दिन नशे के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उनके हाथों में अब किताब की जगह अपने ही मौत का सामान होता है। इन किशोरों में करीब 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच होते हैं। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ के मुताबिक यदि बचपन में एक बार नशे की लत लग गई तो उस नशे से छुटकारा पाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। एक देशव्यापी सर्वे के मुताबिक बाल नशेड़ियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अगर हम नशा करने के कारण को देखते हैं तो बच्चे और किशोर दूसरे को देखकर सीखते हैं। इस तरह की घटना ज्यादा देखने को मिलती है जिस घर में पिता या घर के बड़े लोग नशा ले रहे हैं तो वहाँ आसानी से नशे के गिरफ्त में होते जा रहे हैं। बच्चों के सामने लेना भी एक प्रमुख कारण है। किशोरों में अलग अलग तरह का प्रलोभन भी देकर नशे के चुंगल में जा रहे हैं। किशोरों में उत्सुकता नई चीजों को लेना भी एक नशा लेने का कारण है। बच्चे और किशोर अपने घर अपने को इग्नोर महसूस करना, प्यार की कमी और तनाव, फैशन हीन भावना आदि से मुक्ति के लिए इस नशे जैसी चीज को अपना

हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लड़कियों में बढ़ती हुई नशा के पीछे तीन कारण को देखते हैं। पहला, मित्रों का प्रभाव, अपने से बड़ों की नकल व भूख को दबाना। इनमें दोस्तों का प्रभाव में नशा करने वाले लड़कियों की संख्या अधिक है। नशा का हमारे जीवन और शारीरिक पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर असर, मुंह, गले व फेफड़े में कैंसर, साथ ही मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद और क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक भी देखा जाता है। नशे में असामान्य व्यवहार से ग्रस्त होते जा रहे हैं। व्यक्ति की मनोवृत्ति में बदलाव, एक सही मनोवृत्ति का होना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन नशा के सेवन से हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या, अनेक अपराधों को बढ़ावा देता है। समाज में असर, समाज में पनप रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों का एक कारण नशा भी है। नशे की वृद्धि के साथ साथ अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। इन मादक द्रव्यों के से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने के साथ साथ समाज, परिवार और देश भी गंभीर हानि सहन कर रहा है। किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन नशे की बुराई के कारण यदि मानव स्वास्थ्य खराब होगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता है। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो व्यक्ति को तन मन धन से खोखला कर देता है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए शासन के साथ ही समाज के हर तबके को आगे आना होगा। यह चिंतनीय है कि जब से बाजार में गुटखा पाउच का प्रचलन हुआ है, तब से नशे की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। आज बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी गुटखा पाउच के चपेट में हैं। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम सबको मिलकर काम करना है। नशे की बुराई को कुछ हद तक जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम अपने काम धंधों में इतना उलझ गए हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं ये जानने कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अतः इन सबको अपनी पहले जिम्मेवारी को समझना और अच्छे संस्कार देना है। इसे रोकने के लिए फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में सिगरेट, शराब, नशीली वस्तुओं के सेवन वाले अनावश्यक दृश्यों के चित्रण व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगानी चाहिए। टीनेजर्स, युवतियां समाज की अमूल्य धाराएं हैं, पर परिवार और समाज के आदर्श रूप देने में अहम भूमिका निभाने वाली इनका शिक्षित, प्रशिक्षित और आदर्शवान होना जरूरी है। अतः टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों व फिल्मों, उनका आदर्श चित्रण व प्रस्तुतिकरण भी आवश्यक है। सरकार ने जन सामान्य के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्यों में शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार चिकित्सीय प्रयोग के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का उपयोग को निषिद्ध करने के लिए 1985 में नशीली दवाएं व मनोविकारी पदार्थ कानून NDPS एक्ट बनाया। इन कानून को लागू से सख्ती से पेश किया जा रहा है। आइए जाने नशा किस तरह से छोड़ा जा सकता है। शराब नहीं पिएंगे या वचन लेना, ऐसा करने के लिए एक चार्ट बनाना है और उस पर लिखे कि आपके शराब छोड़ने से क्या क्या फायदे होंगे। जैसा आप अपने परिवार के रिश्ते सुधारेंगे, आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे और अपने पास और अधिक ऊर्जा होगी। ऐसा करने से आपका मन जब भी शराब पीने की भटकेगा तो यह चार्ट आपको रोक देगा। दूसरा, शराब बंद करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य में यह निश्चित करें कि मैं आज नहीं पीऊंगा, कल तक मैं अपने आप को रोक लूंगा। तीसरा, चिकित्सीय देखरेख में शराब को छोड़ना, डॉक्टर से संपर्क करना तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। चौथा, परिवार और दोस्तों का सहारा लेना। परिवार और दोस्त यह हमेशा याद कराएंगे कि नशा नहीं करना है, शराब छोड़ना है, तंबाकू नहीं लेना है। पांचवा, भूख लगने पर शराब नहीं पीना है। छः, नशा

0: करने का मन जब भी करे तो गाजर और फलों का रस पीना चाहिए। सातवां, योग का जीवन में करने में आदत डालना। योग अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। योग से आत्मशक्ति और नशे से लड़ने के लिए मनोबल मिलता है। आठवां, नियमित व्यायाम तनाव से दूर रखता है, जिससे अलग से नशा का सहारा लेना की जरूरत नहीं पड़ती है। नौवां, प्रतिदिन 3 से 5 मिनट तक गहरी सांस लेने का अभ्यास करना। नाक से सांस लेकर मुंह से निकालने वाली क्रिया को भी सिगरेट पीने की तलब से छुटकारा मिलता है। हमें यह महसूस स्वयं करना होगा कि नशा छोड़ने की आदत खुद की निर्णायक है, और यदि व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पा रहा है तो स्वयं से वो बेईमानी कर रहा है। अतः अंत में यह कहना चाहूँगी कि प्रमुख समाजशास्त्री इस समस्या के समाधान के लिए लोगों के नजरिए में परिवर्तन तथा विद्यालय महाविद्यालय की भूमिका को अहम मानते हैं। नशे की लत में जकड़े किशोरों को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। साथ ही बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्रेम भाव से सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। किशोरों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए। अतः हमेशा दिमाग में यह याद रखें कि नशा के प्रलोभन से हमें बचना चाहिए, और हमेशा यह कहना है कि हिम्मत नहीं हारना है मुझे और नशा छोड़ना है।
1: तो यखन हमरे मन के नगद जानकारी देने छोट छोट छुआ मन में नशा पान कर समस्या और इके बताते हैं डॉक्टर अनुराधा। तो बहन चलो समय है तो हमरे मन को कुरमाली लोकगीत सुन ले बिला।
2: हाँ हाँ,
1: अजित कुमार महतो और संगे मन गावल गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालूघाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को यह गौरव मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और नीलाम कोल ब्लॉकों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही राज्य में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने, नए खदानों के ऑक्शन में तेजी लाने और जेएसएमडीसी और जेएमईसीएल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
1: जब जब कांग्रेस सपोर्ट से जेएमएम की सरकार बनी है तब तक बालू गायब बालू सोना बन गया। ये दुर्भाग्य है जो कभी बंबई के व्यापारी को बेच दिया, कभी किसी को दे दिया। और कमीशन फिक्स है, इस जो कमीशन खोरी बालू की चल रही है इसमें लाखों नहीं रोजाना करोड़ों रुपए कमीशन में जाते हैं। जांच होनी चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कोष विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर करेगा। इस महत्वपूर्ण फैसले से भारतीय एयरलाइंस को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विमानन क्षेत्र से जुड़े करीब 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
2: 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है।
3: कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए पार्टी को उस पर गर्व है। पंडित नेहरू ने वहां पर भाखड़ा नंगा डैम बनाने की स्थापना करी थी, IIT बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, एम्स बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए थे और ललित कला अकादमी बनाई थी। तमाम तरीके की हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे HES बनी थी, जितने PSUs थे वो सारे के सारे बनाए थे।
0: पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, SP अमित रेणु और CRPF DIG विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप

0: हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा सहित राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत विशेष किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गया है। 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य पंचायत स्तर पर मिट्टी की जांच को बढ़ावा देना और फसलों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। गढ़वा के डुमरो और नारायणपुर गांवों में आयोजित सत्र के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की जल धारण क्षमता और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजोला, नीलहरित शैवाल और PSB के उपयोग की महत्वपूर्ण सलाह दी। चक्रधरपुर मंडल के DRM तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांड्रा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। DRM ने बताया कि कांड्रा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है।
1: लंबे होंगे और वेटिंग हॉल जो है वो ठीक होंगे, टॉयलेट एक्वाटिक होगा, पैसेंजर की अम्यूनिटी बनेगी। तो वही चीज देखने आए थे कि वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन भी आ जाए, पार्किंग भी हो जाए और प्लेटफॉर्म में लिफ्ट भी लग जाए, पैसेंजर का वेटिंग हॉल भी अच्छा हो जाए, वही सब चीज देखने के लिए।
0: धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित ANM स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
2: 100 प्लस और बहाली होना है, 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, तो उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। कुल लगभग 250 से 300 के बीच में NHM में बहाली होनी है और अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच वाली वहां मेरे कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे।
0: विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में करीब 50 साइकिल चालकों ने 35 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए साइकिल चालकों ने स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और साइकिल अनुकूल शहर निर्माण का संदेश दिया। उधर सिमडेगा में भी मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पेट्रोल बचाने का है, जिसमें साइकिल चलाकर हम सब अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
3: आज विश्व साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी यह बताया गया है कि हम लोगों को पेट्रोल की थोड़ी सी बचत करनी है, उसको लेकर के ये आयोजन भी काफी सराहनीय रहा। सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने बताया कि साइकिल का उपयोग यदि किया जाए तो पेट्रोल की बचत तो होगी होगी, साथ ही साथ सेहत का भी अच्छा फायदा मिल पाएगा।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने शानदार हैट्रिक जमाते हुए 3 गोल दागे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड के ही प्रेमचंद सोय ने भी 1 गोल कर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित

0: खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। इस हफ्ते साइको थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध में खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया।
2: साइको थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की था, इनकी हत्या हो गई थी। उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा थी, जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। और 2 लोग और थे जिनका कि रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं।
1: खूंटी जिले में पलायन बड़ी चुनौती बन गई है। रोजगार की तलाश में हजारों महिला पुरुष हर साल दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी में लीड्स संस्था प्रवासी श्रमिक परियोजना के तहत स्थानीय युवतियों को काथा स्टिच का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने में जुटी है। इस संबंध में कोलकाता से आई ट्रेनर मैत्रेयी धर और प्रकाश कुमार ने बताया।
3: काफ्रा स्टिच के अलावा दूसरा स्टिच भी हम सिखाए, तो गांव के जो महिला है जो काम करने के बाद खुले टाइम बैठे रहते हैं, उनको ये चीज सिखा कर अपने रोजगार का कुछ दिशा दिखाए। गांव के लड़कियां सब बैठ के ये सब काम करके अपने घर को चला रही है।
4: जो गांव की लड़कियां हैं जो बेरोजगार हैं या जो पलायन करने की तैयारी कर रही थी, तो उनका पलायन रोकने का भी एक हम लोग का मकसद है कि उनका पलायन रोके और उनका आजीविका कैसे बढ़े, किस तरह से उनका इनकम जनरेट हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो प्रशिक्षण हो रहा है ये हम लोग का माइग्रेंट लेबर प्रोजेक्ट एक चल रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट में, खूंटी सिमडेगा और रामगढ़, तो उसके तहत ये इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: मुरहू के पेरका में काथा स्टिच का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि काथा स्टिच और एप्लिक वर्क की बाजार और मेला में जबरदस्त डिमांड रहती है। प्रशिक्षण ले रही नेहा देवी, सरानी ब्यूटी और अनस्तासिया तीडू ने बताया।
5: मेरा नाम नेहा देवी है और मैं खूंटी से आई हूँ। हम लोग यहाँ काथा स्टिच का सिलाई कर रहे हैं, तो घर बैठने से अच्छा है वहाँ बैठ के ट्रेनिंग कीजिए आप लोग, जो आप लोग स्वरोजगार कर सकते हैं, घर घर अपना चला सकते हैं, अपने पर आश्रित रह सकते हैं।
6: मेरा नाम है सरानी मुंडू, मैं मोरू डूडरी की रहने वाली हूँ। संस्था की ग्रेस दीदी हम लोगों को बताई थी कि यहाँ पे काथा स्टिच का ट्रेनिंग होगा, 18, 19, 20 ऐसे कुछ सिखाई है।
7: मेरा नाम है अनस्तासिया तेडू, मैं खूंटी जिला के छोटा पांडू गांव से हूँ और हम लोग यहाँ 2 महीने से काथा स्टिच सीख रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पर हमारी ट्रेनर 16-17 स्टिचेस सिखाई हैं, जैसे कि हेरिंग बोन, एप्लिक, रन स्टिच, बैक स्टिच और बहुत सारे ऐसे स्टिचेस सिखाई हैं।
1: इस हफ्ते खूंटी में ईद उल अजहा पर भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नमाज के बाद लोगों से मिले और उपस्थित बड़े छोटे सभी लोगों का मुंह भी मीठा कराया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का कार्यक्रम आज आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में।

0: ने संकट को आते चासा बासा तन होड़ो को भारत सरकार टका पैसा लेकाते देंगा मेनते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एट एतदा नेया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 हुलंग भारत सरकारे एट एला
1: निया योजना एटेरा उड़ो दो नेयागे ची चासा तन होड़ो को आ चासा को नुकसान जनरे टाकते को देंगा दाड़ी उका इनालो ते चासा होड़ो को आधुनिक कृषि तकनीकी ते चासा मेंते को उस्कुर उतना प्राकृतिक आपदा कुआते नुकसान जनरे इनर आ भरपाई उड़ो चासा होड़ो को आ आय रे स्थिर ताइन क्या इना उड़ू मिना
0: है फसल हानि रा जांच मेंते ड्रोन सैटेलाइट मोबाइल एप रिमोट सेंसिंग तकनीकी को कामिरे अगुतना आपे सोबेन चासा बासा होड़ो को तेपे आजी ओतना जे संगी ते संगी होड़ो को फसल बीमा योजना रा लाभ बु अगुईका
1: ओड़ो मियन चर्चरे बु आयुम लिया योग करे स्वस्थ रहे स्वास्थ्य गे धन तना नेया कज कनजी तिसिंग रिया समय रे पूरे अगे जरूरान मीना ने जोग रे ताइनो बाइनो तनाव प्रदूषण बेसमय रे जमनु होड़मो पेड़े ते का कमी रिया चलते होड़ को रोकम रिया रोग को नाम जात कोआ इना मेंते योग पूरे अगे जरूर मीना निया व्यायाम बारी कागे मिंदो जी दिन रा मियन कायदा तना नियाते अबुआ होड़मो जीमन ओड़ो जीवन बराबरी के तैना
0: हे तिसिंगरे आ चारचारे इसु गुनुगान जगर को बु आयुम केदा ना दो मियन दुरंग बु आयुम लेया तिसिंगरे आ दुरंग रे को दुरंग तदा भैया राम मुंडा ओड़ो संगे को

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का कार्यक्रम आपने सुना मुंडारी भाषा में। प्रस्तुतकर्ता थे प्रदीप कुमार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: जी हाँ श्रोताओं, वैसे तो प्राचीन काल से ही दुनिया भर में महिलाओं को उनकी शारीरिक रचना के कारण पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता रहा है, परंतु शिक्षा और औद्योगिक विकास के साथ साथ विकसित देशों में

0: महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन आया है और नारी समाज को पुरुष के बराबर मान सम्मान और न्याय प्रदान होने लगा है, परंतु सामाजिक ताने बाने में आज भी नारी का सम्मान दोयम दर्जे का है। हमारा समाज अपनी परंपराओं को तोड़ने को तैयार नहीं है। जो कुछ बदलाव भी आ रहा है उसकी गति बहुत धीमी है। शिक्षित पुरुष भी अपने स्वार्थ के कारण अपनी सोच के बदलने में रुचि नहीं लेते। आज भी माँ बाप अपनी पुत्री का कन्यादान कर संतोष अनुभव करते हैं। तो आइए एक नाटक के द्वारा ऐसी ही एक घटना के बारे में सुनते हैं।
1: सुधा, बेटी सुधा, बेटी जल्दी उठो।
2: माँ थोड़ी देर और सोने दो ना।
1: बेटा जल्दी उठने की आदत डाल लो, क्या ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाओगी। अब जल्दी उठो।
2: माँ अभी मुझे ससुराल थोड़ी जाना है, मुझे तो अभी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है और आपका और पापा का नाम रोशन भी तो करना है।
1: बस रहने दे, तू करेगी हमारा नाम रोशन। जिद करके तूने अपना एडमिशन तो करवा लिया, पर आगे जाकर तुझे चूल्हा ही फूकना है।
2: माँ ये क्या कह रही हो तुम। अच्छा चलो अब देर हो रही है, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे कॉलेज जाना है।
3: बेटी सुधा।
2: हाँ जी पापा जी।
3: बेटा थोड़ा जल्दी उठकर काम में अपनी माँ की मदद करवा दिया करो। अभी काम नहीं सीखोगी तो कब सीखोगी, फिर आगे तुझे ससुराल में भी तो जाना है।
2: ठीक है पापा, कल से कोशिश करूँगी, पर अभी मुझे जल्दी से जल्दी कॉलेज छोड़ दो, नहीं तो आज फिर मैं लेट हो जाऊंगी।
3: ठीक है चल।
4: कैसी हो सुधा, आज फिर से लेट।
2: क्या करूँ रीना, मेरे मम्मी पापा मुझे ससुराल भेजने में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें अभी मना कर दिया है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है।
0: सुधा वेरी गुड, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ती रहो तो तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने कॉलेज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है।
2: थैंक यू मैम, मैं और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ूंगी।
1: आ गई बेटा, अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा, तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
2: माँ मैंने आपको कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे और आगे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, फिर ये सब क्यों?
3: ठीक है बेटा, पढ़ाई भी कर लेना, पर अभी तो तैयार हो जा।
1: अजी सुनते हो, लड़के वाले आ गए, जल्दी आ जाओ।
3: भाग्यवान जल्दी जाओ, चाय नाश्ता लेकर आओ।
5: देखो भाई साहब, हमें सुंदर और सुशील संस्कारी बहू चाहिए।
3: ये लो हमारी बेटी सुधा भी आ गई। जैसे आपको बहू चाहिए वैसे ही सारे गुण हैं इसमें।
5: भाई साहब हमें आपकी बेटी पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए।
3: लो भाई साहब मुंह मीठा कीजिए, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, हमें भी आपका लड़का पसंद है।
5: देखिए भाई साहब हमें आपकी लड़की पसंद तो है, मगर हमारी कुछ मांगे भी हैं। हमें शादी से पहले 10 लाख कैश और एक कार चाहिए। अगर आपको ये मांगे मंजूर हैं तो हमें शादी की डेट फाइनल करें।
3: हमें आपकी मांगे मंजूर हैं, हम इतना अच्छा रिश्ता खोना नहीं चाहते।
5: अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, अब आप शादी की तैयारी करो।
2: पापा मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे आगे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, और ऊपर से ये लोग दहेज मांग रहे हैं।
3: सुधा शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और ये क्या बार बार पढ़ाई की रट लगा रखी है, समझ नहीं आता। लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ की तरह होती है, और मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कर दी है। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, रही दहेज की बात, वो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, इतनी सी बात के लिए मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगा।
2: माँ पापा को समझाइए ना, पापा तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं।
1: सुधा तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी।
2: नहीं मैं नहीं करूँगी।
1: देख सुधा अगर तुमने शादी से मना किया तो तुम्हें अपनी मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा।
2: नहीं माँ ऐसे मत कहो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
1: सुधा बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है।
6: लड़की को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है।
1: ठीक है पंडित जी मैं अभी बुलाती हूँ।

0: भाई साहब हमारी मांगों का क्या हुआ?
1: भाई साहब वो
0: क्या वो?
1: भाई साहब हमने कार का इंतजाम तो कर दिया है, मगर 10 लाख में से हमने 5 लाख का इंतजाम कर दिया है।
0: और बाकी के 5 लाख?
1: वो इंतजाम नहीं हो पाया।
0: रुकिए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती।
1: ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब, इतनी सी बात के लिए आप शादी रोक देंगे?
0: और क्या करूं, हमारी मांगे तो पूरी नहीं की।
1: मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये शादी मत रोकिए। मैं जल्द ही आपकी ये मांगे पूरी कर दूंगा। कृपया आप ये शादी मत रुकवाइए, अगर ऐसा हो गया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी।
0: चलो ठीक है, मगर हमारी ये मांगे जल्दी ही पूरी हो जानी चाहिए।
2: अरे बहू कहाँ मर गई? कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, बहरी हो गई है क्या?
3: आ रही हूँ मम्मी जी।
2: क्या बात है बहू, अभी आए तुझे 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से मेरी बात को अनसुनी कर रही है।
3: नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: अब से तुझे ही घर का सारा काम करना है।
3: ठीक है मम्मी जी।
0: बहू एक कप मेरे लिए चाय लाना।
3: लाई पापा जी।
0: क्या बात है बहू, तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है? तुझे चाय भी बनानी नहीं आती, चाय में चीनी ही नहीं है।
3: नहीं पापा जी, मैंने तो चीनी डाली थी।
0: बदतमीज लड़की, अब तू मुझे बताएगी कि चाय में चीनी है कि नहीं?
4: क्या हुआ पापा?
0: देखो बेटा, तुम्हारी बीवी मेरे साथ जुबान लड़ा रही है।
3: नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे पापा को ठेस लगी हो।
4: तो मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
2: रहने दे बेटा, रहने दे। बहू तू जाकर पोछा लगा, बहुत सारा काम पड़ा।
4: सुधा, तुम्हारे बाप ने अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की, कब आएंगे बाकी के 5 लाख रुपए?
3: मेरे माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरी शादी में उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी है, अब वो रुपया कहाँ से देंगे?
4: मुझे क्या पता कहाँ से देंगे, तब तो तुम्हारे माँ बाप ने भिखारी की तरह हाथ जोड़कर भीख मांगी थी कि बाकी के रुपए हम शादी के बाद देंगे। जब उनकी औकात नहीं थी देने की तो वादा क्यों किया? तो जाओ अपने माँ बाप से बाकी के पैसे लेकर आओ, वरना वापिस कभी मत आना।
3: मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इतने रुपए कहां से लेकर आऊं? अगर मैं घर वापस जाऊंगी तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान मुझे रास्ता दिखा, मैं तो हार चुकी हूँ। जब उड़ने की इच्छा थी तब मेरे माता पिता ने मेरे पर काट दिए, थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जगी थी वो उगने से पहले ही अस्त हो गई। अब मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे तो मर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा।

मैं उस घर की इज्जत हूँ जिसे घर में इज्जत मिलती नहीं। मैं उस रस्म की डोर हूँ जो टूट जाए तो फिर जुड़ती नहीं। घर के बाहर कदम रखने से पहले 100 बार मुझे सुनाया जाता है, घर की इज्जत हो तुम। ये वाक्य अक्सर गुस्से से बताया जाता है। ये सच है कि आज भी बेटी होने के नाम पर मुझे बेचा जाता है। ये सच है कि आज भी बेटी होने के नाम पर मुझे बेचा जाता है। क्यों हुई ना हैरानी सुनकर बेचने के नाम पर? लेकिन बड़ा समझदार है ये समाज, मेरे बेचने पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कन्यादान शब्द लगाया जाता है। अक्सर आंगन में बैठकर ये ख्याल आता है, शायद मैं वो जमीन हूँ। अक्सर आंगन में बैठकर ये ख्याल आता है, शायद मैं वो जमीन हूँ जिस पर कोई हल चलाना तो कोई महल बनाना चाहता है। जैसे जैसे बड़ी हुई मध्यम वर्ग परिवार से शादी का राग सुनाया जाता है, जैसे जैसे बड़ी हुई मध्यम वर्ग परिवार से शादी का राग सुनाया जाता है। आखिर किस समाज के लिए हम नाटक करते हैं? उस समाज के लिए जिस बेटी के पिता की नौकरी नहीं

0: फिर भी समाज द्वारा उससे दहेज दिलवाया जाता है। आज फिर आंगन में बैठी हूँ, लेकिन इस बार सवाल अलग है। कर रहे हैं विदा मेरे पिता घर की ईंटों को बेचकर, ताकि मैं खुश रहूं उस जगह पर पापा मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार सुन तो लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेटी हूँ कोई समान नहीं। हैरानी तो इस बात की होती है, खुश हो रहे हैं मेरे पिता कन्यादान जैसी कुप्रथा को कर कर, और मन ही मन सोच रहे हैं चलो गंगा नहा लिए इस काम को कर कर। जी करता है आज घूंघट उठाकर समझा दूं इस शब्द का अर्थ, जी करता है आज घूंघट उठाकर समझा दूं इस शब्द का अर्थ। आखिर खरीदार और विक्रेता में नहीं होता शादी का बंधन, बख्श दो मुझको क्योंकि दान करने के नाम पर कन्या दान नहीं की जाती। घर की इज्जत हूं मैं तुम्हारी, और इज्जत पापा दान नहीं होती।
1: महिलाएं आज भी अनेक प्रकार के शोषण और भेदभाव का शिकार हो रही हैं। आज भी समाज नारी को दोयम दर्जा ही देना चाहता है। परिवार में पुत्री होने पर परिजन निराश होते हैं और लड़का होने पर उत्साहित। सिर्फ महिला ही विवाह के पश्चात कुमारी से श्रीमती हो जाती है, पुरुष श्री ही रहता है। सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से नारी कल्याण संभव नहीं है। समाज की सोच में बदलाव लाया जाना जरूरी है, ताकि पूरा देश महिला वर्ग को सम्मान और गर्व की दृष्टि से देख सके और देश की आधी आबादी भी देश के विकास में सहायक हो सके।
2: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़िया, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 meter band पर। जी हाँ, 545.45 meter band पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

वाकई संगीत कितना सुकून देता है दिल को। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव है, बहुत परेशान है, लेकिन एक प्यारा सा गीत सुनने के बाद बड़ा ही सुकून सा महसूस होता है, बहुत शांति मिलती है। ज़िंदगी की बातें भी अजीब होती हैं ना, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, और इस तरह से ज़िंदगी हमें रोज़ एक नया सबक सिखाती है। लेकिन उसी बीच ये गीत एक अच्छा सा सुकून और प्यारा सा संदेश दे जाती है।

0: फिल्म संगीत में हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, विराम के बाद हाजिर होते हैं कार्यक्रम के साथ।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में संगीत ही वो साथी होता है जो थके मन को सुकून देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फिल्म संगीत में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज का ये विशेष कार्यक्रम आप

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
4: Thank you.
2: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So yes, if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
2: जी,
4: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत, तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
2: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multi-dimensional poverty and entering the

0: the new middle class. How big an achievement would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
1: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. And look, what happened is that the definition of poverty index changed. You know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition. Ke aapka agar jeevan ka star sudhar raha hai, you know, on nutrition, on health, aapke paas ghar nahi hai, tomorrow you get a house, you don't have a water connection, now you have a water connection. And let's not forget about the toilets, which has been, you know, sanitation has been very close to Prime Minister's heart. You know, jungle mein aur kheton mein jaake, you know, toilet ka istemal karna ya wahan par idhar udhar baith ke mahilaon ke liye khaskar bahut. So I think now there are toilets at, so the multidimensional poverty index needs to be understood, Anubha, from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities, which is everybody's right and which should they should get.
1: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it was thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pachaya, aur middle class to usme aati aati, kyunki isse naukriyan bani hai, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge, ke ab mujhse jab log poochte hain, kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaye ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead, aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha, bhai ye to mera haq hai, wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya hai, which I am sure the listeners of Akashvani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं? तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिला के ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
0: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया, मैं

0: अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव। देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
2: बिल्कुल।
1: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल। सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड एंड लॉट ऑफ यंगस्टर्स। एंड टुडे जस्ट ऑन स्टार्टअप इंडिया देर आर 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, एंड यू नो यू विल नॉट बिलीव दैट द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय दी स्टार्टअप टुडे इज 2.3 million प्लस पीपल हु हैव बीन एम्प्लॉयड। And government has created a startup fund
2: yes.
1: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
2: Right.
1: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
2: yes.
1: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
2: yes.
1: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
2: yeah,
1: a very, very active GDP.
2: In fact,
1: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers...

0: so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar. You also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business. I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean people have opened their arms and embraced it, usse puri ki puri arthvyavastha pe farak pad gaya hai.
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है. बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted

0: 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है। और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन, एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती। बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ, आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है।
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
1: किया, काम किया है, उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
0: अशोक जी आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko banakar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi, akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort mein पहुंच रहे, which is of international level. The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी के पहुंच में. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
0: And you know that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it roads, be it railways, be it you know airports, जो expansion हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं 225 तक, जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं

0: जो एस्पिरेशंस हैं उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू रुपया, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है। उसका 8 अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन यू नो आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har varg ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain, ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेनस्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेनस्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं

0: वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी है, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives.
4: Namaskar. Akashvani se samachar sandhya ke saath main Priyanka Arora. Mukhya samachar. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
5: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
4: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
6: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
4: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
6: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
4: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया।

0: अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to

0: की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग हॉन्ग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने ओडिशा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असम्बली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रीता ब्रता, जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए रीताब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाक़े को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिव कुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर, जिन्होंने सिद्धारमैया काबीना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने DK शिव कुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालवीय नगर के एक होटल में भयानक

0: आग लगने के वाके में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस ने जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाके में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाके की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधु ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। 3 मरहलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और 3 मरहलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और जवानों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी असलाहत के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाख्तियार बनाया है। टैक्स निज़ाम को सहल बनाया, बैंककारी को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निज़ाम ने इस तबके के माली तहफ़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा GST में असलाहत के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50 से 80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
4: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दैरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रोड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रोड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज़ तजारत सरमायाकारी दवासाजी हिफ्जान सेहत नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रूपये की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों मगरबी बंगाल कर्नाटक कोंकण गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता प्रताप बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जी पी एस डबास कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
6: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मानसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मानसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि

0: वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं, और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
1: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जब मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मानसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मानसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
0: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उतनी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि तो फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेढ़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर ISR इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि
0: जी
1: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे।

0: जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घ अवधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पैदी भारत में 94% जो है दीर्घ अवधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, और उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
2: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर जो मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
0: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं, और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी

0: रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो कई फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी की खींच लेती है, और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि के जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है, जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात की, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं, और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है,
1: जी
0: और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: डबास जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं आप
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं। और
1: जी।
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है, ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत के में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं, ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशंस यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की, यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है।

0: यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं, और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा, जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
2: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और
1: डबा
2: साथ
1: जी,
2: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी

0: इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये घटता इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी, डॉक्टर डबास साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो उस सपने में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इसके और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप ही आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है, ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें, जब किसान कई बार मेहनत करता है, चाहे उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है, तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले, और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान बाकी, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं, साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन।

0: मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
0: दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मानसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है नाटक मन का दरवाजा।

0: वामा का प्रणाम स्वीकार करें।
1: सौभाग्यवती रहो। पिछले लगभग 25 वर्षों से हर रोज सवेरे सवेरे तुम मेरे पांच हुआ करती हो और मैं हूं कि तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर अपनी ही दीर्घायु की कामना करता हूं। कितना स्वार्थी हूं मैं।
0: अरे अरे नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहें। पत्नी के लिए उसका पति ही तो सब कुछ होता है। अपने से युक्त रहने का आशीर्वाद देकर आप मुझे सब कुछ ही तो देते रहे हैं, मुझे मुझे और क्या चाहिए।
1: वाह वाह, कितना सुंदर तर्क दिया है तुमने भाई। वाह, अरे मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं और तुम हो कि तुम्हें जैसे सब कुछ मिल गया हो।
0: आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे आप और भी कुछ देना चाहते हैं मुझे।
1: अरे मांग लो मांग लो, मांगी हुई वस्तु अगर सामर्थ्य के परे नहीं हुई तो अवश्य दूंगा। अच्छा बताओ क्या चाहती हो तुम।
0: देखिए, स्त्री में ममता न हुई तो वो स्त्री ही नहीं।
1: ममता की तो तुम साक्षात मूर्ति हो।
0: संतान के बिना ममता का होना किस काम का। मुझे मुझे संतान चाहिए, संतान।
1: अपनी अवस्था का ध्यान है तुम्हें, इस उम्र में संतान की इच्छा रखती हो।
0: अपनी अवस्था का

0: खूब ध्यान है मुझे। समय रहते ही जब दूसरी संतान को जन्म नहीं दे सकी तो अब इस उम्र में दूसरी संतान की इच्छा करके ही क्या लाभ।
1: तब
0: मैं तो उसी एक संतान की बात कर रही हूँ जिसे 25 साल पूर्व हमने जन्म दिया था।
1: कहीं तुम राम की बात तो नहीं कर रही हो?
0: हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, उसी की। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं।
1: क्या वो हमारी आज्ञा से घर छोड़कर गया था?
0: अरे उसने भूल की थी, आप उसकी इस भूल को क्षमा नहीं कर सकते।
1: नहीं, कभी नहीं। मुझे अपनी मर्यादा प्यारी है। क्या तुम नहीं जानती कि मैंने झुकना नहीं सीखा है?
0: क्षमा करना झुकना नहीं होता, फिर किसी दूसरे को नहीं, अपनी ही संतान को।
1: अपनी संतान?
0: हाँ,
1: अपनी संतान, सिर्फ इसलिए कि हमने उसे पैदा किया है?
0: नहीं, इसलिए भी कि हमने अपना अंश देकर पाला पोसा है, उसे लिखाया पढ़ाया है।
1: राम की माँ, तुम नहीं जानती कि सज्ञान होते ही पुत्र मित्र हो जाता है, और मित्र वही हो सकता है जिसके आचार विचार और व्यवहार मिलते हो। मुझे आश्चर्य होता है, 23 वर्षों तक साथ रहने पर भी राम मुझे समझ नहीं सका।
0: आपकी आपकी ये बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि राम राम हमारा पुत्र है, बस।
1: राम हमारा पुत्र है?
0: हाँ।
1: पर वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। देखो, मैं कह देता हूँ, आजन्म वो इस घर में कदम न रखे। पुत्र के लिए पिता की यही आज्ञा है।
0: हाँ, आप पिता नहीं, पत्थर है, पत्थर।
1: काश मैं पत्थर होता, मैं पत्थर ही होता तो अच्छा होता। कम से कम ये अनुभूतियां तो नहीं होती, पर मैं पत्थर नहीं, मैं पत्थर नहीं, एक बाप हूं, एक बाप, एक ऐसा बाप जिसने संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, कौन सा योग साधन नहीं किया, किस देवी देव को नहीं पूजा, अपने ही दान पर पलने वालों के आगे झोली फैलाई, न जाने किन बुरे कर्मों का फल है कि अपने बेटे से अलग होने के बाद भी मैं अब तक जिंदा हूं। हे भगवान, हे भगवान, राम जहां भी रहे सुखी रहे। बस तुमसे यही प्रार्थना करता हूं भगवान, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे न तो घर से निकाला और न उसे वापस बुलाऊंगा। मैं उसे बुला भी तो नहीं सकता, उसको वापस बुला लाना मेरी हार होगी, और मैं हारना नहीं चाहता। मैं हारूंगा नहीं, कभी नहीं हारूंगा, कभी नहीं। भगवान, तुम तो जानते ही हो, यदि राम घर लौट कर आया होता तो मैं उसके सब अपराधों को क्षमा कर देता, पर उसने अपराधी क्या किया था जिसके लिए मैं उसे क्षमा करता?
0: अरे अभी तक आप यहीं खड़े हैं, आइए ना, नाश्ता कर लीजिए।
1: चलो आता हूँ, राम की रक्षा करना भगवान।
2: अरे आता हूँ।
0: अरे आइए ना, नाश्ता निकाल दिया है। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया।
1: नहीं राम की माँ, तुमने ठीक ही कहा है, मुझे पत्थर कहा है तुमने, मैं पत्थर ही हूं। तुम्हें भी तो खुश नहीं रख सका ना?
0: अरे मैं तो खुश ही हूं, पर लगता है आप अभी तक उसी विषय पर सोच रहे हैं। मैं तो, अरे आप खा नहीं रहे हैं, खाइए ना, हाथ क्यों रोक दिया आपने?
1: खाने की इच्छा नहीं रही राम की माँ। तुम भी नहीं खाओगी?

0: सोचकर ग्रास मुंह में डाल लिया।
1: तो क्या अब खा सकूंगी? अरे कम से कम पूरी रोटी तो खा ले।
0: नहीं राम की माँ, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा।
1: अच्छा ठीक है, दूध तो पी लीजिए।
0: अच्छा बाबा लाओ लाओ, दे दो, दे दो।
1: लीजिए लीजिए।

0: आए बेगम आयशा।
1: अरे नहीं जी, बेगम आयशा नहीं, अब तो मैं आशा रानी हूँ।
0: वाह, तो आशा रानी जी नमाज अदा कर रही थी, क्यों?
1: नहीं, मैं तो राजा रहा। अरे रे रे, उफ, तुमने बताया था ना कि बीवी को अपने शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए, पर मेरे मुंह से तो अभी अभी निकलते निकलते बचा।
0: अरे मैंने और भी बहुत सी बातें बताई हैं जाने मन। जैसे ये साड़ी का पल्ला हमेशा माथे पर रखा करो, ऐसे।
1: अच्छा, देखो ऐसे। लेकिन तुम्हारी कुछ बातें बड़ी अटपटी लगती हैं मुझे।
0: अरे इसे गनीमत मानो कि सस्ते में छूट गई हो। माँ बाबूजी के साथ होती तो तुम्हारी मिट्टी ही पलीद हो जाती।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ हाँ, सुबह स्नान करो, 2 घंटे तक पूजा करो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे मत करो।
1: अरे सब कुछ तो तुम यहाँ खुद करते हो और मुझसे भी करवाते हो।
0: हाँ आशा, ये सारे संस्कार बचपन से ही बने हैं ना, इसी से। नहीं करता हूँ तब भी अच्छा नहीं लगता है।
1: तुम्हारी तरह पूजा करना मुझे आता नहीं और तुम हो कि बताते भी नहीं, इसीलिए मैं अपने ही ढंग से इबादत करती हूँ।
0: अरे असल में तो बुराइयों से बचे रहने के लिए इबादत जरूरी है। अब इबादत किस ढंग से की जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी इबादत पूरी हो गई?
1: जी हाँ, नमाज अदा हो गया।
0: अच्छा आशा, पहले तो नमाज के बाद तुम रोज बताया करती थी कि अपने अल्लाह से तुमने क्या दुआ मांगी है, इधर कई दिनों से तुम कुछ बता नहीं रही हो। हाँ अच्छा, ये बताओ तो आज क्या मांगा तुमने?
1: क्या जरूरी है कि सारी बातें तुम्हें बता ही दी जाए? मैं नहीं बताती।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो।
1: क्या है?
0: पास आओ ना, पास आओ।
1: क्या है?
0: अब बोलो, बताती हो कि नहीं कि मैं तुम्हारे गाल पर?
1: नहीं नहीं नहीं बताती, छोड़ो ना।
0: नहीं, तो बताओ।
1: छोड़ो तो बताती हूँ।
0: अच्छा लो, छोड़ दिया।
1: नहीं बताती, जाओ।
0: अरे ठेंगा दिखाओगी? अच्छा ठहरो, रुको रुको, बताती हो कि नहीं? सुनो सुनो, अब कहो, बताओगी कि नहीं?
1: छोड़ो ना, बताती हूँ ना, पहले छोड़ो तो बताती हूँ।
0: नहीं, पहले बताओ तो छोड़ूंगा, नहीं तो फिर।
1: नहीं नहीं, अच्छा बाबा, बताती हूँ। हाँ, बताती हूँ।
0: अब आई हो रास्ते पर, जल्दी कहो।
1: मैंने तुम्हें पुकारने के लिए एक नाम मांगा है, बस अब छोड़ो।
0: अच्छा लो, छोड़ दिया। पर ये तो बताओ, मेरा नाम नहीं है क्या?
1: है तो, पर मेरी पुकारने के लिए नहीं है। मुझे जी अजी कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
0: मैंने कुछ समझा नहीं। अरे अल्लाह मियाँ क्या नाम दे देंगे?
1: नाम अल्लाह मियाँ थोड़े ही देंगे, नाम तो हम आपस में तय करेंगे।
0: तो फिर जब नाम हमें आपस में ही तय करना है तो बीच में अल्लाह मियाँ को लाने की क्या जरूरत है?
1: जरूरत है, तुम नहीं समझोगे।
0: तो समझा दो ना मेरी आशा रानी।
1: देखो, नाम हम खुद तय करेंगे, कुछ भी।
0: ठीक, फिर?
1: फिर मैं तुम्हें उसके अब्बा कहकर पुकारूंगी।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। सुनो।
1: हाँ?
0: जरा फिर से पास आओ तो।
1: ना बाबा ना, मैं नहीं आती।
0: तो मैं बाप बनने वाला हूँ।
1: अरे तुम उदास हो गए, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
0: नहीं आशा, खुश तो मैं बेहद हुआ, पर चिंता भी कम नहीं हुई।
1: क्यों?
0: असल में ऐसी अवस्था में तुम्हारी देखभाल होनी चाहिए, खास तौर पर आराम की भी सख्त जरूरत है। घर का सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। सुनो, अभी तो बहुत दिन है ना, तुम एक काम करो, तुम मुझे अभी से दाल रोटी बनाना सिखा दो, अच्छा? फिर देखा जाएगा।
1: तो तुम दाल रोटी बनाओगे?
0: क्यों नहीं।

0: राम की माँ सुना तुमने?
1: क्या
0: राम की पत्नी माँ बनने वाली
1: है? हाँ, अरे गोपी कह रहा था। अरे वो तो जाता आता रहता है ना वहाँ।
0: पर ऐसी हालत में तो आराम की बड़ी जरूरत होती है ना?
1: अरे सिर्फ आराम की ही नहीं, अच्छे खाने पीने की भी जरूरत पड़ती है। अरे क्या सोचने लगे?
0: मेरे विचार से कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ चली क्यों नहीं जाती?
1: सच? लेकिन लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँ? उसे ही यहाँ बुला लेते हैं।
0: नहीं, वो यहाँ कदम भी नहीं रख सकता।
1: अरे मेरे वहाँ जाने से आपके खाने पीने में कष्ट होगा।
0: अरे मुझे कोई कष्ट वस्त नहीं होगा, गोपी है, दाई है, वैसे मेरा खाना तुम वहाँ भी तो बना सकती हो। गोपी ले आया करेगा।
1: ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी।
0: कल क्यों, आज ही क्यों नहीं?
1: अरे सोचती हूँ बहू के लिए कुछ बना कर लेती जाऊं।
0: अरे उसी की देखभाल के लिए तो तुम वहाँ जा रही हो। सारी चीजें वहीं बना लेना और गोपी को भी साथ लेकर चली जाओ।
1: ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ।
0: अच्छा सुनो, इसे रख लो।
1: ये क्या है?
0: अरे कुछ रुपए हैं, वहाँ काम आएंगे।
1: ठीक है।
2: आशा, आशा,
3: क्या है?
2: जरा बताना तो, रोटियों का आकार कैसा होता है?
3: आमतौर पर रोटियां गोल होती हैं, कुछ तिकोनी और कुछ चौकोनी भी होती हैं।
2: बस ना।
3: बस।
2: इससे अधिक तो तुम्हें भी पता नहीं होगा। और आज मेरी बनाई रोटियां देखना, अरे कोनों का तुम हिसाब ही नहीं कर पाओगी। देखोगी, ये देखो, ये देखो।
3: देखो जी, रसोई बनाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। चलो चलो, छोड़ो छोड़ो तुम ये सब, उठो, तुमसे नहीं बनेगी।
2: अरे बनेगी कैसे नहीं। देखो तो कौन आया है। मैं तब तक हाथ धो लेता हूँ वरना पोल खुल जाएगी।
3: हाँ हाँ जल्दी करो, तुम जल्दी करो।
1: तुम राम की पत्नी हो ना?
3: जी जी हाँ। और आप?
1: राम राम घर पर नहीं है क्या?
3: है है, वो आ ही रहे हैं। आइए ना, आप अंदर आइए ना।
2: अरे माँ, तुम माँ, प्रणाम माँ।
1: खुश रहो, तू तो माँ बाप को भूली क्या है रे?
2: नहीं माँ।
1: तूने एक बार भी माँ बाप की सुध नहीं ली
2: नहीं।
1: है ना? खैर खैर जाने दे।
2: नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ये
3: मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें माँ जी, और मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं।
1: सौभाग्यवती रहो बहू।
2: माँ माँ,
1: हाँ,
2: ये मेरी पत्नी है, आशा, आयशा।
3: आप अंदर चले ना माँ जी।
1: राम, बहू के तो पाँव भारी है ना? घर का कामकाज कौन करता है, और ये दरवाजा खोलने में यही आई थी?
2: माँ, ये वो।
1: देखो राम, तुम भूल पर भूल करते जा रहे हो। पहले तो शादी करके तुमने बहू को यहाँ ला कर रखा, और अब उसकी

0: में भी इससे घर का सारा काम करवाते हो।
1: नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप बैठिए ना माँ जी, आपके लिए कुछ लाऊं?
0: मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहू, तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहिए, आराम।
1: जी
0: ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है बेटा। अरे अरे, ये रोटी जलने की बात आ रही है, तवे पर ही छोड़कर आई हो क्या?
1: माँ जी आप सुनिए तो।
0: अरे बहू, ये रोटियां किसने बनाई?
1: जी माँ जी, वो
0: बहू, क्या तुम रोटी बनाना भी नहीं जानती हो?
2: माँ माँ, ये रोटियां मैंने बनाई हैं। माँ देखो ना, मेरा हाथ भी जल गया है।
0: ठीक हुआ है, करनी का फल तो तुम्हें मिलेगा ही। बहू तुम इधर आओ।
1: जी।
0: और राम, तुम अब बाहर जाओ, मुझे बहू से कुछ बातें करनी है। अरे बाकी रोटियां मैं बना दूंगी। ओफो राम, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, जाओ ना।
2: जाता हूँ।
3: अस्पताल से आ रहे हो गोपी?
4: जी मालिक।
3: बहू कैसी है?
4: मालिक, बहू रानी की हालत अच्छी नहीं है, शायद ऑपरेशन होगा।
3: गोपी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ।
4: अच्छा,
3: तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मालकिन वही है ना?
4: जी मालिक, पहले आप भोजन तो कर लें।
3: नहीं नहीं, हम तुरंत चलेंगे, रक्षा करना भगवान। चलो गोपी,
4: चलिए।

0: राम की बहू आप?
1: बहू कैसी है?
0: उसे ऑपरेशन के लिए ले गए हैं।
1: क्या हुआ बहू को?
0: शायद गर्भ में बच्चा उलट गया है, इसलिए प्रसव में कठिनाई हो रही है।
1: मैंने तुम्हें बहू की देखभाल के लिए वहाँ भेजा था, या सास बनकर बहू की सेवा पाने को?
0: अरे मैंने तो उसे जमीन पर पाँव तक नहीं रखने दिया था, अब संजोग है कि ऐसा हो गया।
1: राम कहाँ है?
0: वो दवाई लाने गया है, आता ही होगा।
2: पिताजी आप? प्रणाम पिताजी।
1: राम, यदि बहू या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसी बेत से पीटूंगा।
2: मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं लज्जित हूं पिताजी।
1: ये बात मेरे समझ में अब तक नहीं आई कि आखिर तुम विवाह करके घर क्यों नहीं लौटे।
2: दरअसल पिताजी, मैंने जिस लड़की से विवाह किया है वो हमारे धर्म को मानने वाली नहीं है।
1: तो क्या तुमने किसी कुलटा से विवाह किया है?
2: पिताजी,
1: क्या उसके आचरण और संस्कार अच्छे नहीं है?
2: ऐसी बात नहीं है पिताजी, वो हर तरह से पाप साफ और अच्छे चाल चलन की है।
1: तब वो विधर्मी कैसे हुई?
2: बस यही पर तो मुझसे भूल हो गई पिताजी। दरअसल अपने यहाँ का नेम धर्म पूजा पाठ ये सब।
1: अफसोस है, मुझे अफसोस है राम, कि तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने स्वयं को नहीं समझा, तुमने धर्म के मर्म को नहीं समझा राम। अरे पूजा और उपासना की पद्धतियों को तुमने धर्म कैसे मान लिया?
2: मेरी इस भूल के लिए क्षमा कर दे पिताजी, और अगर क्षमा नहीं कर सकते तो मुझे दंड दीजिए पिताजी, मैं दंड भोगने को तैयार।
1: दंड मैं किसे दूं? निर्वासन का दंश तुमने नहीं राम, मैंने झेला है मैंने।
3: मालिक मालिक मालिक, लड़का हुआ है।
1: हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है ईश्वर। राम राम जाकर पता करो, जच्चा बच्चा ठीक तो है ना?
3: जी जी पिताजी।
1: गोपी गोपी
3: हाँ,
1: इसे रख ले, इसे रख ले। ये छोटी सी बख्शीश है। तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई गोपी।
0: मेरी उसे भी पोती की बधाई स्वीकार करें।
1: बधाई तो मैं तुम्हें दूंगा राम की माँ।
0: मुझे बधाई नहीं, बख्शीश चाहिए, बख्शीश।
1: अरे मुंह मांगा दूंगा। कहो क्या लोगी बख्शीश?
0: अपने बेटे के लिए क्षमादान।
1: राम की माँ,
0: क्या पोते को भी साथ नहीं रखेंगे?
1: हम पोते के साथ ही रहेंगे राम की माँ।
0: सच?
1: बिल्कुल सच।
0: मैं अभी जाकर राम से कहती हूँ कि अस्पताल से छुट्टी होते ही बहू को लेकर सीधा घर आ जाए।
1: नहीं राम, मेरे घर में कदम भी नहीं रखे, ये मेरी आज्ञा है।
0: तब मुझे आज भी निराशा ही हाथ लगेगी।
1: तुम जाकर राम से पूछो कि उसके घर में हमारे रहने भर की जगह है या नहीं। हम उसके ही घर में रहेंगे।
0: राम की बापू।
1: और राम की माँ, हमने अपने घर के दरवाजे बंद किए हैं, मन का दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहा है।
0: राम की बापू, भगवान करे, भगवान करे आपके मन का दरवाजा ऐसे हमेशा खुला रहे, हमेशा खुला रहे।

अभी आप सुन रहे थे नाटक मन का दरवाजा। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे वीजी जोग द्वारा वायलिन पर प्रस्तुत राग श्याम कल्याण में एक रचना। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल बोस।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आपने वीजी जोग द्वारा वायलिन पर राग श्याम कल्याण में रचना सुना। तबले पर संगत कर रहे थे श्यामल बोस। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार

कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।